सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 सितंबर सन 2026। सुबह के 7 बजने को है। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

90.8 MHz पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। आइए आपको बताते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। कौन कौन से कार्यक्रम आज हमारे केंद्र से आप सुनेंगे अब से दिन में 12 बजे तक। इन्हीं कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे संध्या 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक। अब से कुछ ही देर के बाद होगा कार्यक्रम जीवन सौरभ, आज का शीर्षक दिखावा। 7:10 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें आप सुनेंगे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से सूक्त 24 का वाचन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा 7:20 से। वतन करा कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8 बजे। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा तुषार कांति घोष की जयंती पर। सुनो कहानी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कहानी बड़े भाई साहब, प्रसारण समय सुबह 8:30। सुबह 9 बजे कला कल्लोलिनी कार्यक्रम में आप सुनेंगे विष्णु नारायण भातखंडे पर केंद्रित कार्यक्रम। पर विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हिंदी की महिमा। दिन में 10 बजे होगा कार्यक्रम परिक्रमा और साथ ही साथ आप सुनेंगे रेडियो रिपोर्ट। आजाद हिंद कार्यक्रम का समय होगा 10:30 से। आज का कार्यक्रम केंद्रित रहेगा शेख भिखारी पर। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार, आज का आकर्षण गोपीनाथ मोहंती। युग प्रवर्तक विवेकानंद कार्यक्रम का प्रसारण समय दिन में 11:30 पर। कार्यक्रम का 50वां भाग आज हम प्रसारित करेंगे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, जिन्हें आप सुनेंगे अब से रात्रि 10 बजे तक निरंतर। तो जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। कार्यक्रम जीवन सौरभ अब सुनते हैं।

एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जिसके पास हर समस्या का हल था। राजा अपने इस मंत्री से बिना पूछे कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेता था। इस मंत्री से राज दरबार के अन्य लोग ईर्ष्या करते थे। एक दिन राज दरबार में राजा ने अपने इस मंत्री से कहा कि तुम इतने बुद्धिमान हो लेकिन तुम्हारा बेटा तो बेहद मूर्ख है। राजा की ये बात मंत्री को अच्छी नहीं लगी और मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? तब राजा बोला, मैं रोजाना जब जनता से मिलने जाता हूँ वहाँ पर तुम्हारा बेटा भी होता है और मैं रोज तुम्हारे बेटे से ये पूछता हूँ कि सोने और चांदी में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा मूल्यवान है। अब तुम्हारा बेटा हर बार चांदी ही कहता है। राजा की ये बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग मंत्री पर हंसने लगे और मंत्री को बहुत बुरा लगा। मंत्री बिना कुछ कहे अपने घर वापस आ गया और घर पर आते ही उसने अपने बेटे से पूछा, बताओ सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है? बेटे ने फौरन जवाब दिया, पिताजी सोना। मंत्री ने बेटे से कहा, तुम्हें जब पता है कि सोना कीमती है तो तुम क्यों राजा को गलत जवाब देते हो? बेटे ने कहा, पिताजी राजा रोज सुबह बाजार में आकर प्रजा से मिलते हैं और रोज मुझे बुलाकर मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं जिनमें से एक चांदी का होता है और एक सोने का। सिक्का रखकर राजा मुझसे पूछते हैं कि जो इन दोनों में से अधिक कीमती है वो तुम ले लो और मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। ये देखकर राजा हंसते हैं और चले जाते हैं। मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, तो तुम क्यों रोज चांदी का सिक्का उठा लेते हो? अब पूरा दरबार मेरा मजाक उड़ा रहा है। मंत्री की बात सुनकर बेटा उन्हें अपने कमरे में लेकर गया और वहाँ पर उसने एक पेटी खोली। पेटी चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। इतनी सारी चांदी देखकर मंत्री हैरान हो गया। तब बेटे ने कहा, पिताजी जो सिक्के राजा मुझे देते हैं ये सब वही हैं। जिस दिन मैंने राजा को सही उत्तर दे दिया तब राजा ये सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे रोजाना एक सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। ऐसा होने से मेरी ही हानि होगी। मंत्री अपने बेटे की कुशलता से स्तब्ध था। वास्तव में हमें अपनी योग्यता का दिखावा नहीं करना चाहिए क्योंकि समय आने पर अपने आप ही सबको पता चल जाता है कि आप कितने सुयोग्य हैं।

0: श्रोताओं, ये था कार्यक्रम जीवन सौरभ, जिसमें आप सुन रहे थे दिखावा, एक लघु कथा। अब समय है कार्यक्रम अक्षय निधि का।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 24 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत और भार्गव शौनक, देवता ब्रह्मणस्पति एवं इंद्रा ब्रह्मणस्पति, छंद जगती एवं त्रिष्टुप।
3: सेमा मविड्ढि प्रभृतिम य ईशिषे या विधेम नवया महागिरा यथा नो मीढ्वान् सत्ववते सखा तव बृहस्पते सीषध सोत नो मतिम। हे बृहस्पति देव, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। हम महान स्तुतियों के द्वारा आपका यशोगान करते हैं, उन्हें ग्रहण करें। जो स्तोता आपकी मित्र भाव से स्तुतियां करते हैं, वे हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। यो नन्त्वान्यन मन्नन्योज सोता दर्द मन्युना शंबराणि वि प्राच्या वयदच्युता ब्रह्मणस्पतितिरा चाविशद्व सुमंतम वि पर्वतम। ब्रह्मणस्पति देव ने अपनी सामर्थ्य से दंडित करने योग्य शत्रुओं को दबाया, मन्यु के द्वारा शंबर को विदीर्ण किया, न गिरने वाले जल को गिराया तथा जहां गौएं छिपी थीं उस पर्वत में प्रवेश किया। तद्देवानां देवतमाय कर्तव्य मश्रत्न दृढ़हा वृदंत वीडिता उदद्गा आज दभिनद ब्रह्मणा वल मगुहतमो व्यचक्ष यत्स्वः। देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मणस्पति देव के कर्तृत्व से सुदृढ़ किले भी शिथिल हो जाते हैं तथा बलशाली भी नम्र होकर झुक जाते हैं। ब्रह्मणस्पति देव ने मंत्र शक्ति के द्वारा बलासुर को मारकर गौओं को मुक्त कराया, सूर्य देव को प्रकट करके अंधकार को नष्ट किया। अश्मास्यमवतम ब्रह्मणस्पतिर् मधुधारमसि यमोज सातृणत तमेव विश्वे पपिरे स्वर्दृशो बहुसाकम् सिसिचुरुत समुद्रिणम्। ब्रह्मणस्पति देव ने पत्थर जैसे दृढ़ मुख वाले मधुर धाराओं से युक्त मेघ को बल प्रयोग द्वारा बरसने के लिए प्रेरित किया। वृष्टि के जल का पान सूर्य रश्मियों ने किया तथा प्रचुर जलधारा के रूप में धरती पर बरसाया। सनाता का चिद्भुवना भवित्वा माद्भि शरद्भिर दुरो वरंत वह अयतंता चरतो अन्य दन्य दिद्या चकार वयुना ब्रह्मणस्पति ही। हे ऋत्विजो, ब्रह्मणस्पति देव ने तुम्हारे लिए ही अनादिकाल से प्रत्येक माह और प्रत्येक वर्ष वर्षा के लिए मेघों को प्रेरित किया। इस प्रकार द्यावा पृथ्वी दोनों परस्पर जल का उपभोग करते हैं। अभिनक्षन्तो अभि ये तमानशुर निधिम पणीनाम परमं गुहाहितम् ते विद्वांसः प्रतिचक्ष्यानृता पुनर्यत उ आयन्त दुदीयुरा विषम। पणियों के द्वारा गुहा में छिपाए गए श्रेष्ठ धन को चारों ओर खोजकर देवगणों ने प्राप्त किया। यज्ञीय कार्य में विघ्न पैदा करने वाले राक्षस उस दिव्य ऐश्वर्य को देखकर जिस स्थान से आए थे वापस लौट गए। ऋतावानः प्रतिचक्ष्यानृता पुनरात आतस्थुः कवयो महस्पथः ते बाहुभ्याम धमित मग्नि मश्मनि नकिः शो अस्त्यरणो जुहुर्हितम्। सर्वज्ञाता तथा सत्यवादियों ने माया की शक्तियों को देखा। वे वहां से हटकर विवेक पूर्वक महान कार्यों के पथ पर चल पड़े। यज्ञीय कार्य के निमित्त उत्पन्न की गई अग्नि को वहीं पर्वत में ही छोड़ दिया। ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिर्यत्र वष्टि प्र तदश्नोति धन्वना तस्य साध्वी ऋषवो याभिरस्यति नृचक्षसो दृशये कर्णयोनयः। ब्रह्मणस्पति देव के पास सुगमता से खींचने वाली डोरी वाला बुद्धि रूपी एक उत्तम धनुष है, जिससे वे ज्ञान रूपी बाणों को जहां बुद्धिमान जनों के कानों तक वे चाहते हैं पहुंचा देते हैं। इससे वे मनुष्यों के सभी संकटों और दुष्ट भावों को उखाड़ फेंकते हैं।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 24 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
0: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

यदि कोई सच्चे हृदय से अपना कल्याण चाहता है तो भगवान अवश्य ही उसका कल्याण करते हैं। भगवान के समान हमारा हित करने वाला गुरु दूसरा कोई नहीं।

जैसे भगवान सूर्य उदय होने मात्र से ही समस्त अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही श्रीहरि का नाम एक बार उच्चारण करने मात्र से ही जीव मात्र के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है।

जो व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति को कठिन बताता हो, उसके पास भी बैठना नहीं चाहता हो, उसका संग भक्त को छोड़ देना चाहिए।

जीवन के रथ की डोर जब हम अपने आराध्य के हाथों में सौंप देते हैं तो मार्ग चाहे कितना भी पथरीला क्यों ना हो, लक्ष्य हमेशा मोक्ष और शांति ही होती।

0: और श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रम। अगला कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
2: ये वतन का राग।
1: वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसे कलम के सिपाही की, जिनकी जीवन यात्रा एक दीपक की तरह थी, जिसने आंधियों से रोशनी का अर्थ सीखा, जिनके लिए पत्रकारिता केवल घटनाओं की खबर पहुंचाना भर नहीं था, बल्कि उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ था समय की आंखों में आंखें डालकर सच कहने का साहस। वो महान और प्रखर पत्रकार थे तुषार कांति घोष, जिनकी कलम ने गुलामी की रात में भी स्वतंत्रता का स्वप्न देखा और आजादी के बाद लोकतंत्र की चौकसी को अपना जीवन धर्म बनाया। तुषार कांति घोष का जन्म 21 सितंबर सन 1898 को अविभाजित बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। उनका परिवार बंगाल का एक सम्मानित परिवार था। भारतीय पत्रकारिता और स्वाधीनता संग्राम से इसका गहरा संबंध था। उनके पिता शिशिर कुमार घोष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन पुरोधाओं में से थे जिन्होंने अपने भाइयों मोतीलाल घोष और वसंत कुमार घोष के साथ मिलकर अंग्रेजी दैनिक अमृत बाजार की शुरुआत की थी। अमृत बाजार केवल एक समाचार पत्र भर नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विचारों का एक सशक्त और निर्भीक मंच बन चुका था। इस तरह बचपन से ही तुषार कांति घोष ने देश, समाज और स्वाधीनता की बातें सुनी, अन्याय के विरुद्ध उठती आवाजें सुनी। इसीलिए पत्रकारिता उनके लिए केवल पेशा नहीं, पारिवारिक संस्कार और राष्ट्रीय दायित्व था। उनकी आरंभिक शिक्षा कोलकाता के प्रतिष्ठित हिंदू स्कूल में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी मेधा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध बंगवासी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहां से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अध्ययन के साथ साथ अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य ने उनके भीतर भाषा की शक्ति जगाई तथा देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उनके भीतर प्रश्न करने की बेचैनी पैदा की।

शिक्षा पूर्ण करने के बाद तुषार कांति घोष के समक्ष कई विकल्प थे, लेकिन उन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों और राष्ट्रीय दायित्व को सर्वोपरि मानते हुए पत्रकारिता के कठिन और जोखिम भरे मार्ग को चुना। सन 1930 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका के संपादक का दायित्व संभाला। उस दौर में किसी पत्र का संपादन करना केवल सुंदर और प्रभावकारी लेख लिखना भर नहीं था, ब्रिटिश सरकार की कड़ी निगरानी, क्षेत्रीय सेंसरशिप और वित्तीय अनिश्चितताओं के बीच समाचार पत्र निकालना एक युद्ध की तरह था। प्रेस चलाने के लिए कागज चाहिए, मशीन चाहिए, श्रम चाहिए और वितरण का जाल चाहिए। तुषार कांति घोष ने पत्रकारिता को केवल संपादकीय कक्ष में बैठकर नहीं समझा, वो मुद्रण कक्षों में जाते, तकनीक समझते और संकट के समय स्वयं समाधान ढूंढ निकालते। जब जेसूर क्षेत्र में कागज की कमी हुई तो कागज निर्माण और प्रसंस्करण की तकनीक समझने के लिए वो पांडुआ तक गए। तुषार कांति घोष ने भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में सन 1937 में अमृत बाजार पत्रिका समूह ने बंगाली दैनिक समाचार पत्र जुगांतर का प्रकाशन शुरू किया। कुछ ही समय में जुगांतर बंगाल और पूर्वी भारत का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली बंगाली समाचार पत्र बन गया। ये अरविंद घोष के साप्ताहिक पत्र जुगांतर से अलग पत्र था। इसके माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में निर्भीक पत्रकारिता और राष्ट्रवादी चेतना की एक नई लहर पैदा हुई। तुषार कांति घोष के भीतर ब्रिटिश सत्ता के समक्ष न झुकने का अटूट संकल्प था। यही कारण है कि उनके संपादन काल में अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेज अधिकारियों और औपनिवेशिक न्यायपालिका की आंखों की किरकिरी बनी रही। तुषार कांति घोष के जीवन की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक था सन 1935 का वो प्रसिद्ध अवमानना का मुकदमा, जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। दरअसल 21 मार्च सन 1935 को बंगाल विधान परिषद में एनके बसु ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की आलोचना की थी। इसके बाद अमृत बाजार पत्रिका में कलकत्ता हाई कोर्ट शीर्षक से संपादकीय प्रकाशित हुई। इसमें अदालत के न्यायाधीशों पर कार्यपालिका के साथ निकटता के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होने जैसी गंभीर टिप्पणी की गई थी। इसे अदालत की अवमानना मानते हुए तुषार कांति घोष और तारिक कांति बिस्वास के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अदालत में तुषार कांति घोष ने बताया कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान ये लेख छपा था, लेकिन वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। साथ ही उन्होंने अपने पक्ष में तर्क भी रखा। अदालत ने उन्हें माफी मांगने का अवसर दिया, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं हुए। परिणाम स्वरूप उन्हें 3 माह कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन वो जिंदगी भर न कभी झुके न रुके, वो निर्भीक निडर बस चलते रहे।

तुषार कांति घोष अपनी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और हास्य व्यंग के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। अंग्रेजों के साथ उनकी संवाद शैली अत्यंत रोचक रहा करती थी। इसी तरह का एक किस्सा पत्रकारिता जगत में प्रचलित है। बताया जाता है कि एक बार बंगाल प्रांत के तत्कालीन गवर्नर ने चुटकी लेते हुए कहा, श्रीमान घोष, मैं आपकी अमृत बाजार पत्रिका नियमित रूप से पढ़ता हूँ। अखबार तो अच्छा है, लेकिन इसमें कई बार अंग्रेजी व्याकरण सही नहीं होता है और आपकी पत्रिका अंग्रेजी भाषा के साथ काफी हिंसा करती है। इस पर बिना एक क्षण गंवाए तुषार कांति घोष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महोदय, अंग्रेजी भाषा के साथ हिंसा करना ही तो भारत के स्वाधीनता संग्राम में मेरा और मेरी पत्रिका का सबसे छोटा सा योगदान है। जवाब सुनकर गवर्नर महोदय चुप रह गए। इस तरह तुषार कांति घोष ने कलम के सहारे ऐसा युद्ध घोष किया कि ब्रिटिश सत्ता कभी चैन से नहीं बैठ सकी। अमृत बाजार पत्रिका और जुगांतर, मानो उनकी कलम ने दो भाषाओं में एक ही संदेश लिखा, जनता को जागना होगा। तुषार कांति घोष ने कभी शब्दों से तो कभी अपने मौन से भी जागरण का ये मंत्र फूंका। 16 अगस्त सन 1946 को अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया और कलकत्ता की सड़कों पर भयानक नरसंहार, सांप्रदायिक दंगे और आगजनी के दृश्य थे। पूरा शहर हिंसा की आग में जल रहा था। अनेक समाचार पत्र भड़काऊ खबरें छाप रहे थे, एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे थे। ऐसे समय में अमृत बाजार पत्रिका का संपादकीय कॉलम खाली छोड़ दिया गया। ऐसा 3 दिनों तक किया गया। 3 दिनों का ये मौन संपादकीय ब्रिटिश हुकूमत की विफलता और राजनीतिक उन्माद के विरुद्ध तुषार कांति घोष का तीखा और मौन प्रतिरोध था। स्वाधीनता के बाद भारत में कई बार ऐसी स्थितियां आईं जब केंद्र या राज्य सरकार ने मीडिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रयास किया। तुषार कांति घोष ने सदा इसका कड़ा विरोध किया। वो इस बात के पक्षधर थे कि समाचार पत्रों को किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या कॉरपोरेट घराने का मोहरा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका को एक ऐसा मंच बनाया जहां प्रशासनिक भ्रष्टाचार, नीतिगत कमियों और सत्ता के अहंकार पर बिना किसी डर के कड़ा प्रहार किया जाता था। तुषार कांति घोष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और द इंडियन न्यूज सोसाइटी के सर्वोच्च पदों पर रहे। उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन का पुरजोर समर्थन किया ताकि पत्रकारिता सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहे। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट और कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रकार होने के साथ साथ उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका में भी बच्चों के लिए विशेष कॉलम शुरू किए थे ताकि बच्चों में पढ़ने की आदत और नैतिक मूल्यों का विकास हो। राष्ट्र निर्माण, साहित्य, शिक्षा और स्वतंत्र पत्रकारिता में उनके योगदान को देखते हुए सन 1964 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। एक समृद्ध और प्रेरणादायक जीवन जीते हुए 29 अगस्त सन 1994 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनो कहानी। आइए अब सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते और कभी कभी 3 साल भी लग जाते। मेरी उम्र 9 साल की थी और वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वे स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी के हाशिए पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम या एक शब्द या एक वाक्य 10-20 बार भी लिख डालते। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पड़े तो पहाड़ सा लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकल जाता, मैदान में आ जाता। कभी कागज की तितलियां उड़ाता तो कभी कंकरियां उछालता। अगर कभी कोई साथी मिल जाए तो कहना ही क्या। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल चुप्पी था। न जाने क्यों ये बात मेरे मुंह से निकलती ही नहीं कि जरा बाहर खेल रहा था। मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह से पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये विधा आती है। हाँ, कहने को तो आ जाती है, पर बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। बोलना तो दूर की बात है, तुम कितने घोंगे हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे कभी जाते देखा? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी 1-1 दर्जे में 2-3 साल लग जाते हैं, फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद कर वक्त गवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल ही लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े रहोगे? अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। बाबा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। मुझे अपना अज्ञान रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत मुझे तो चक्कर आ जाते। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता, आगे से खूब जी लगा के पढ़ूंगा। मैं झटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए बिना, कोई स्कीम तैयार किए बिना। टाइम टेबल में खेल कूद की बिल्कुल जगह ना होती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस लौटकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद और 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वे सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो छल कूद, कबड्डी के दाव पेच मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाते। वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। फिर सालाना इम्तहान हुए, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास, प्रथम दर्जा आया। मेरे और उनके बीच अब केवल 2 साल का अंतर रह गया। फिर सालाना इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच अब केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजों से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल आया। लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर ना रहा, आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते भी दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस न होते हुए भी मेरे रंगढंग से ये साफ जाहिर होता कि भाई साहब का वे आतंक मुझ पर अब नहीं, भाई साहब ने भी इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। वे एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय पर लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हारे दिमाग खराब हो गए, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती? इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा होगा ना, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण चक्रवर्ती राजा था, बड़े बड़े देवता उसके गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड। घमंड ने उसका नाम और निशान तक मिटा दिया, कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा होगा ना, उसे ये अभिमान था कि ईश्वर का सबसे बड़ा सच्चा भक्त वही है। अंत में क्या हुआ? स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। जब एलजब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। आखिर कोई इनसे पूछे कि आ बा जा और आ जा बा में क्या फर्क है? व्यर्थ की बात करते हैं और छात्रों का खून चूसते हैं। दाल भात रोटी खाई या भात रोटी दाल, इसमें क्या फर्क है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वे तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर इन बेसिर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा? मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इसीलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, जो कुछ कहता हूँ उसकी गांठ बांध लो। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने आज क्या क्या उपदेश सुनना पड़ते। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर ये तिरस्कार रहा तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे अंदर से भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, बस यही ताज्जुब है। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल। मैंने बहुत मेहनत ना की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, मुझे उन पर दया आने लगी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधान का लिखा कौन बदले। अब भाई साहब और मेरे बीच केवल एक दर्जे का अंतर था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा, फिर वे किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कुटिल विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वो मेरे हित की ही तो बात करते हैं और मुझे डांटते हैं। भाई साहब कुछ नर्म पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वे खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा है तो बहुत कम। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद कर दिया। मुझे कनकौए उड़ाने का एक नया शौक पैदा हुआ और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट हो गया। फिर भी भाई साहब का अदब करता और उनसे बचकर कनकौए उड़ाता। एक दिन शाम का समय था, दूर एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ चला आ रहा था, जहां सब कुछ समतल था, न मोटर कारें थीं, न ट्रम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव में बोले, इन लड़कों के साथ कनकौए के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आठवीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जे नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ अपनी पोजीशन का भी तो ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था जब लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वे जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की रक्षा ना करे। तुम अपने दिल में समझते होगे कि भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, मेरे समकक्ष आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है और तुम क्या उसे खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजुर्बा तुमसे ज्यादा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए भी क्यों ना कर लो। समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने तो कोई दर्जा पास नहीं किया और बाबा भी शायद 5वीं या 6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और बाबा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का तजुर्बा हमसे ज्यादा है। भगवान न करे अगर आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे। बाबा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ और ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर बाबा हों तो किसी को तार ना दें, ना घबराएं, ना बदहवास हों। पहले खुद मर्ज को पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चलता है। जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं ना, उसके आधे में बाबा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी से जिया है और एक कुटुंब का पालन किया जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, एमए हैं, एमए, और एमए भी यहाँ के नहीं ऑक्सफोर्ड के। 1,000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते हुए तुम बेराह ना चल पाओगे। अगर तुम यूं ना माने तो मैं थप्पड़ का प्रयोग करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लगती हैं। मैं इनकी नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, नहीं, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच्चे, आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कनकहुए उड़ाने का मन मेरा भी करता है, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, ये कर्तव्य भी मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकहुआ मेरे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ता चला आ रहा था। भाई साहब लंबे ही हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बड़े भाई साहब। अब हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलनी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में, जिन्होंने संगीत को स्वर से, शास्त्र और परंपरा से पाठशाला तक पहुंचाया। आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिंह।
1: और मैं रत्नेश सोनी।
0: हमारे खास कार्यक्रम कला कल्लोलनी में जहां हम आपको भारतीय कला और संस्कृति की उन विलक्षण विभूतियों से रूबरू कराते हैं, जिनकी साधना ने हमारी विरासत को समृद्ध किया।
1: आज का ये सफर हमें लेकर चलेगा भारतीय शास्त्रीय संगीत की उस दुनिया में, जहां स्वर केवल सुनाई नहीं देते बल्कि परंपरा, साधना और ज्ञान की एक पूरी कहानी कहते हैं।
0: और आज हम आपको परिचित करवाएंगे संगीत की एक ऐसी विलक्षण विभूति से, जिनकी वजह से भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनेक परंपराएं केवल मंचों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि शास्त्र, स्वर लिपि और व्यवस्थित शिक्षा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं।
1: एक ऐसे संगीत मनीषी जिन्होंने संगीत को केवल सुना नहीं, उसे समझा, खोजा, लिखा और व्यवस्थित किया। आज की हमारी कहानी है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की, उस महान संगीत शास्त्री की, जिन्होंने भारतीय संगीत की विशाल और विविध परंपरा को एक व्यवस्थित स्वरूप देने में अपना जीवन समर्पित कर दिया।
0: तो आइए संगीत की इसी ज्ञान यात्रा पर हमारे साथ चलिए और जानिए उस साधक की कहानी, जिसने स्वरों को केवल आवाज नहीं रहने दिया बल्कि उन्हें शास्त्र और आने वाली पीढ़ियों की धरोहर बना दिया।

0: आज हम किसी राग का नाम लेते हैं, उसके आरोह अवरोह की बात करते हैं, किसी बंदिश को स्वर लिपि में देखते हैं, किसी संगीत विद्यालय में व्यवस्थित पाठ्यक्रम के माध्यम से संगीत सीखते हैं, या 10 थाटों के आधार पर रागों की दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं, तो इन सब के पीछे हमें एक ऐसे व्यक्ति की अथक साधना दिखाई देती है जिसने अपना जीवन संगीत को समझने, खोजने, लिखने, व्यवस्थित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने में लगा दिया।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को बंबई के वालकेश्वर में हुआ था। उनका परिवार शिक्षित और संस्कारवान था। उनके पिता स्वयं संगीत के प्रति अनुराग रखते थे और अपने बच्चों को संगीत सीखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। बचपन में संगीत उनके जीवन में आया, लेकिन ये उस समय उनका पेशा नहीं था।
0: उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, कानून की पढ़ाई की और वकालत के क्षेत्र में भी गए। उनके सामने एक सम्मानजनक और सुरक्षित पेशेवर जीवन था, लेकिन मन का रास्ता अक्सर जीवन की तय राह से अलग होता है। भातखंडे जी के भीतर संगीत के लिए जो जिज्ञासा थी, वह धीरे धीरे इतनी गहरी होती गई कि कानून उनके जीवन का केंद्र नहीं रह गया।
1: सन 1884 में वे गायन उत्तेजक मंडली से जुड़े। ये जुड़ाव उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ उन्होंने केवल संगीत सुना नहीं, बल्कि संगीत की शिक्षा, प्रस्तुति और विभिन्न परंपराओं को निकट से समझा। उन्होंने ध्रुपद और खयाल जैसी परंपराओं की बंदिशें सीखी और अलग अलग संगीतज्ञों के संपर्क में आए। यहीं से उनके भीतर एक बड़ा प्रश्न आकार लेने लगा, आखिर भारतीय शास्त्रीय संगीत का इतना विशाल संसार व्यवस्थित रूप में लिखा क्यों नहीं गया? राग इतने हैं, घराने इतने हैं, बंदिशें इतनी हैं, गायकी की इतनी शैलियां हैं, तालों की इतनी विविधता है, लेकिन इन सब का व्यवस्थित दस्तावेज कहाँ है?
0: संगीत का अधिकांश ज्ञान गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप में पहुंचता था। गुरु गाते थे, शिष्य सुनता था। गुरु बजाते थे, शिष्य दोहराता था। गुरु सिखाते थे, शिष्य स्मृति में उसे संजोता था। यह परंपरा अपने आप में अत्यंत समृद्ध थी। उसमें केवल स्वर नहीं, बल्कि अनुभव, भाव, उच्चारण, नींद, गमक, लय और प्रस्तुति की सूक्ष्मता भी पीढ़ी दर पीढ़ी जाती थी। लेकिन इसकी एक सीमा भी थी। यदि किसी बंदिश को जानने वाला अंतिम व्यक्ति उसे आगे ना पहुंचा पाए, तो वह रचना उसके साथ ही समाप्त हो सकती थी। यदि किसी घराने की कोई विशिष्ट परंपरा अगली पीढ़ी तक ना पहुंच पाए, तो उसके साथ संगीत का एक पूरा अंश खो सकता था।
1: भातखंडे ने इसी खतरे को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने तय किया कि भारतीय संगीत को केवल सुना और याद नहीं किया जाना चाहिए, उसे लिखा भी जाना चाहिए। और यही विचार आगे चलकर भारतीय संगीत के इतिहास में एक बड़े परिवर्तन का कारण बना। भातखंडे जी ने भारत की यात्रा की। वे अलग अलग क्षेत्रों में गए, संगीतज्ञों से मिले, घरानों के कलाकारों से मिले, गायकों और वादकों से बंदिशें सुनी, संगीत के पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने केवल एक परंपरा को अंतिम सत्य मानकर काम नहीं किया, वे सुनते थे, प्रश्न करते थे, तुलना करते थे और फिर निष्कर्ष तक पहुंचते थे। उनकी यात्राएं वास्तव में भारत की संगीत यात्राएं थी।
0: वैसे समय में यह काम कर रहे थे जब न रिकॉर्डिंग की आधुनिक सुविधा थी और न आज की तरह किसी रचना को तुरंत ऑडियो या वीडियो में सुरक्षित कर लेने की तकनीक। किसी कलाकार से कोई बंदिश सुनना और उसे उसी समय ध्यानपूर्वक लिख लेना, यह अपने आप में असाधारण धैर्य और स्मरण शक्ति का काम था। उन्होंने अनेक घरानों से प्राप्त पारंपरिक रचनाओं को संकलित किया और अपनी विकसित की हुई स्वरलिपि पद्धति के माध्यम से उन्हें लिखित रूप दिया।
1: यहीं से भातखंडे जी के काम का दूसरा बड़ा पक्ष सामने आता है। उन्होंने संगीत के लिए एक ऐसी स्वरलिपि विकसित की जिसके माध्यम से राग, बंदिश और ताल को लिखित रूप में समझना संभव हुआ। आज किसी विद्यार्थी के सामने जब किसी बंदिश की स्वरलिपि रखी जाती है तो वो उसे देखकर अभ्यास कर सकता है। वो केवल ये नहीं कहता कि मेरे गुरु ने मुझे ये बंदिश सिखाई थी। अब उसके पास उसे देखने, पढ़ने और दोहराने का एक लिखित आधार भी होता है। ये परिवर्तन बहुत बड़ा था क्योंकि स्वर लिपि ने संगीत की स्मृति को कागज पर स्थान दिया। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, स्वर लिपि संगीत का पूरा शरीर नहीं होती।
0: कागज पर स्वर लिखे जा सकते हैं, लेकिन आवाज की पूरी मिठास, स्वर का कंपन, मींड की गहराई, किसी कलाकार की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति या राग के भाव का पूरा अनुभव केवल लिखे हुए अक्षरों से नहीं मिल सकता। भातखंडे जी स्वयं संगीत की जीवंत परंपरा को जानते थे, इसलिए उनकी स्वरलिपि का महत्व इस बात में है कि उसने संगीत को संरक्षित करने और सिखाने का एक मजबूत आधार दिया।
1: इसी के साथ उन्होंने एक और बड़ी समस्या को संबोधित किया, रागों का वर्गीकरण। रागों का वर्गीकरण भारतीय संगीत परंपरा में रागों का संसार अत्यंत विशाल था। अलग अलग कालखंडों और परंपराओं में रागों को समझाने और वर्गीकृत करने के अलग अलग तरीके रहे।
0: भातखंडे जी ने इस जटिलता को सरल बनाने के लिए 10 थाटों की व्यवस्था प्रस्तुत की। बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी, इन 10 थाटों को आधार बनाकर बड़ी संख्या में रागों को समझने का एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया गया।
1: ध्यान देने वाली बात यह है कि हर राग को किसी एक थाट में पूरी तरह बांध देना हमेशा संभव नहीं है। राग केवल स्वरों का गणित नहीं है, राग का अपना चलन है, उसकी अपनी पकड़ है, उसका आरोह अवरोह है, उसकी अपनी प्रकृति है, उसका समय है, उसका भाव है, उसकी विशिष्टता है। लेकिन अध्ययन के लिए एक व्यवस्थित आधार आवश्यक था।
0: भातखंडे जी का थाट प्रणाली का योगदान इसी अर्थ में महत्वपूर्ण है। उन्होंने संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों के सामने एक ऐसा नक्शा रख दिया जिसके सहारे वे रागों की विशाल दुनिया में प्रवेश कर सके। जैसे किसी विशाल शहर को समझने के लिए पहले उसके मुख्य मार्गों का नक्शा चाहिए होता है, वैसे ही रागों की विशाल दुनिया को समझने के लिए थाट एक व्यवस्थित आधार बन गए।
1: लेकिन भातखंडे जी का काम केवल वर्गीकरण तक सीमित नहीं था, उन्होंने संगीत के सिद्धांत और व्यवहार के बीच पुल बनाने का काम किया। भारतीय संगीत के प्राचीन ग्रंथों में संगीत का विशाल शास्त्रीय साहित्य मौजूद था। दूसरी ओर अपने समय के संगीतज्ञ व्यवहार में संगीत की अलग अलग परंपराएं निभा रहे थे। भातखंडे जी ने दोनों संसारों को साथ रख कर देखा।
0: उन्होंने पुराने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया, उन्होंने प्राचीन संगीत परंपराओं को समझने का प्रयास किया, साथ ही उन्होंने जीवित संगीतज्ञों से सीखा कि वास्तव में उनके समय में राग कैसे गाए जा रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि वे केवल पुस्तकालय के विद्वान नहीं बने और न केवल मंच के संगीतज्ञ,
1: वे शोधकर्ता भी थे, संगीत शास्त्री भी थे, शिक्षक भी थे और संगीत के दस्तावेजीकरण के अग्रदूत भी। उनका काम हमें ये बताता है कि परंपरा को बचाने का अर्थ उसे केवल अतीत में रख देना नहीं है, परंपरा को बचाने का अर्थ है उसे समझना, उसके मूल तत्वों को पहचानना और उसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचने योग्य बनाना। भातखंडे जी ने यही किया।
0: उन्होंने अपने अध्ययन और यात्राओं के आधार पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार किए। उनकी प्रमुख कृतियों में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और क्रमिक पुस्तक मालिका का विशेष महत्व है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 खंडों में प्रकाशित हुई, जबकि क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में विस्तृत हुई। इन ग्रंथों में रागों के सिद्धांत के साथ साथ अनेक रचनाओं को स्वरलिपि में दर्ज किया गया।
1: आज भी ये पुस्तकें हिंदुस्तानी संगीत के अध्ययन में महत्वपूर्ण संदर्भ मानी जाती हैं। यहाँ एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ओर गुरु अपने शिष्य को बंदिश सिखा रहा है और दूसरी ओर कोई व्यक्ति उसी परंपरा को ध्यान पूर्वक सुनकर कागज पर दर्ज कर रहा है। एक व्यक्ति संगीत को अगली पीढ़ी तक आवाज के माध्यम से पहुंचा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी संगीत की स्मृति को शब्द और स्वर के माध्यम से स्थायी बना रहा है। भातखंडे जी की भूमिका कुछ ऐसी ही थी।
0: उन्होंने कलाकारों के अनुभव को विद्वानों के अध्ययन से जोड़ा, उन्होंने परंपरा को पुस्तक से जोड़ा, उन्होंने मौखिक ज्ञान को लिखित ज्ञान से जोड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने संगीत को केवल कुछ परिवारों या घरानों तक सीमित रहने के बजाय व्यापक शिक्षा व्यवस्था में पहुंचाने की दिशा में काम किया।
1: यहीं से उनकी दृष्टि का एक और महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है, संगीत शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। उनके समय में शास्त्रीय संगीत सीखना मुख्यतः गुरु शिष्य परंपरा और संगीतज्ञ परिवारों तक सीमित था। ये व्यवस्था अपनी जगह अत्यंत प्रभावशाली थी, लेकिन समाज के हर व्यक्ति को उसमें प्रवेश मिलना आसान नहीं था। भातखंडे जी चाहते थे कि संगीत की शिक्षा व्यवस्थित संस्थानों में उपलब्ध हो। इसी विचार ने संगीत महाविद्यालयों और पाठ्यक्रमों की दिशा को प्रभावित किया।
0: लखनऊ में 1926 में मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना हुई। इसमें राय उमानाथ बली और राय राजेश्वर बली जैसे सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और भातखंडे ने संगीत के पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक व्यवस्था को आकार देने में निर्णायक योगदान दिया। बाद में यही संस्था भातखंडे के नाम से जानी गई और आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो चुकी है।
1: लखनऊ का ये संस्थान केवल एक इमारत नहीं था, ये उस विचार का प्रतीक था कि संगीत को भी गंभीर शैक्षणिक अनुशासन के रूप में पढ़ाया जा सकता है, कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, संगीत अध्ययन का विषय है, संगीत शोध का विषय है, संगीत में व्याकरण है, संगीत में इतिहास है, संगीत में सौंदर्य शास्त्र है और संगीत में ज्ञान की एक पूरी परंपरा है।
0: भातखंडे जी ने इसी सोच को संस्थागत रूप दिया। उन्होंने ग्वालियर और बड़ौदा जैसे केंद्रों में भी व्यवस्थित संगीत शिक्षा के विकास में योगदान दिया। उनकी दृष्टि में विद्यार्थियों को केवल राग गाना नहीं चाहिए, उसे यह भी समझना चाहिए कि राग की संरचना क्या है, ताल क्या है, स्वर का संबंध क्या है, रचना की प्रकृति क्या है, परंपरा का इतिहास क्या है और सबसे महत्वपूर्ण जो वह गा रहा है उसके पीछे का ज्ञान क्या है। यही वह दृष्टि थी जिसने संगीत शिक्षा को एक नए आयाम तक पहुंचाया।
1: भातखंडे का एक और महत्वपूर्ण योगदान था संगीत के अलग अलग प्रवाहों के बीच संवाद। भारत में हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों महान शास्त्रीय संगीत परंपराएं हैं। दोनों की अपनी भाषा है, अपनी संरचना है, अपनी परंपराएं हैं और अपना सौंदर्य है।
0: भातखंडे जी ने इन परंपराओं को एक दूसरे से समझने और संवाद करने की दिशा में भी प्रयास किए। उन्होंने संगीत सम्मेलनों की परंपरा को बढ़ावा दिया जिससे अलग अलग क्षेत्रों और संगीत प्रणालियों के कलाकारों को संवाद का अवसर मिला। ये विचार आज के समय में और भी महत्वपूर्ण लगता है,
1: क्योंकि किसी कला को मजबूत बनाने का एक रास्ता ये नहीं है कि वो स्वयं को बंद कर ले, बल्कि ये है कि वो अपनी पहचान को बनाए रखते हुए दूसरे अनुभवों से संवाद करे। भातखंडे की दृष्टि में शोध का अर्थ केवल पुराने ग्रंथ पढ़ना नहीं था, शोध का अर्थ था सुनना, प्रश्न करना, तुलना करना, यात्रा करना, कलाकारों से मिलना, परंपराओं को समझना और फिर निष्कर्ष निकालना। इस दृष्टि से वे अपने समय से आगे दिखाई देते हैं।
0: आज हम जिस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजीकरण, भातखंडे जी ने उस काम को एक सदी से भी पहले गंभीरता से किया। आज हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, डिजिटल आर्काइव है, क्लाउड स्टोरेज है।
1: लेकिन उस समय कागज, कलम और कान और उनका असाधारण धैर्य ही उनके सबसे बड़े साधन थे। उन्होंने संगीत को सुनकर लिखा, लिखकर व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करके प्रकाशित किया और प्रकाशित करके विद्यार्थियों तक पहुंचाया। ये यात्रा भातखंडे जी की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है।
0: उनकी निजी जिंदगी में भी ऐसे क्षण आए जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। सन 1900 में उनकी पत्नी का निधन हुआ और 1903 में उनकी बेटी भी नहीं रही। इन निजी आघातों के बाद उन्होंने अपने जीवन को लगभग पूरी तरह संगीत अध्ययन और संगीत सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े दुख मनुष्य को उस काम की ओर धकेल देते हैं जिसे वह भीतर से अपना मानता है।
1: अब वो समय आ गया था जब भातखंडे जी के लिए स्वयं के लिए संगीत से इतर कोई दृष्टि नजर नहीं आ रही थी। संगीत और सिर्फ संगीत जीवन का उद्देश्य बन गया और इसके बाद उनके जीवन का बड़ा हिस्सा यात्रा, अध्ययन, लेखन और संगीत के पुनर्गठन में बीता। उन्होंने अनेक बंदिशें एकत्र की, अलग अलग घरानों की परंपराओं को समझा, पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया, तब एक नई चुनौती उनको महसूस हुई।
0: अलग अलग घरानों में एक ही राग के रूप, बंदिश और प्रस्तुति में भी अंतर मिल सकता था। भातखंडे जी को इन विविधताओं के बीच से संगीत का एक व्यवस्थित व्याकरण निकालना था। ये किसी एक दिन का काम नहीं था, ये दशकों की साधना थी और यही कारण है कि उनके योगदान को केवल 10 थाट देने वाले व्यक्ति के रूप में देखना उनके काम को छोटा कर देना होगा।
1: थाट उनकी विरासत का केवल एक हिस्सा है, उनकी असली विरासत है एक विशाल, जीवंत और विविध संगीत परंपरा को व्यवस्थित ढंग से समझने का प्रयास। उनकी असली विरासत है स्वर लिपि, उनकी असली विरासत है रचनाओं का संकलन, उनकी असली विरासत है संगीत शिक्षा की संस्थागत व्यवस्था, उनकी असली विरासत है संगीत शास्त्र को आधुनिक अध्ययन की भाषा देना।
0: और उनकी सबसे बड़ी विरासत शायद यह है कि उन्होंने हमें सिखाया कि किसी परंपरा से प्रेम करना केवल उसकी प्रशंसा करना नहीं है, उसे सहेज कर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने के लिए अथक प्रयास भी जरूरी है।
1: हम अक्सर इतिहास को महान कलाकारों के नाम से याद करते हैं, तानसेन का नाम लेते हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को याद करते हैं, पंडित भीमसेन जोशी को याद करते हैं, पंडित रविशंकर को याद करते हैं, लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व, उस्ताद अमीर खां, ऐसे असंख्य कलाकारों की आवाजें हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा हैं।
0: लेकिन कलाकारों की उपलब्धियों के पीछे एक पूरी ज्ञान परंपरा भी होती है, उसे लिखने वाले लोग होते हैं, उसे संकलित करने वाले लोग होते हैं, उसे पढ़ाने वाले लोग होते हैं, उसे संस्थागत रूप देने वाले लोग होते हैं।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी उसी परंपरा के महान व्यक्तित्व थे। वे मंच पर खड़े होकर अपने नाम की लोकप्रियता के पीछे नहीं भागे, उन्होंने उस संगीत की नींव मजबूत करने का काम किया जिसे आने वाली पीढ़ियां मंच पर प्रस्तुत करेंगी। इसीलिए उन्हें संगीत का वास्तुकार कहना असंगत नहीं होगा।
0: एक वास्तुकार स्वयं हमेशा उस भवन के भीतर दिखाई नहीं देता, लेकिन भवन की संरचना उसके विचारों को व्यक्त करती है। भातखंडे जी भी कुछ ऐसे ही थे।
1: आज यदि संगीत का विद्यार्थी रागों को एक व्यवस्थित प्रणाली में पढ़ता है तो उसमें भातखंडे की छाप है। यदि विद्यार्थी बंदिश को स्वर लिपि में पढ़कर अभ्यास करता है तो उसमें भातखंडे की छाप है। यदि संगीत के पाठ्यक्रम में सिद्धांत और व्यवहार दोनों साथ पढ़ाए जाते हैं तो उसमें भातखंडे की दृष्टि दिखाई देती है।
0: यदि संगीत के पुराने ज्ञान को पुस्तकों में सुरक्षित देखकर हम आज उसका अध्ययन कर पा रहे हैं तो उसमें भातखंडे की तपस्या का अंश है, और शायद इसी कारण उनके योगदान को समझना आज भी जरूरी है। क्योंकि हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं उसमें सूचना को सुरक्षित करना पहले से आसान है, लेकिन ज्ञान को सही रूप में सुरक्षित करना अभी भी उतना ही कठिन है। एक वीडियो बना लेना दस्तावेजीकरण नहीं है, एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना भी पर्याप्त नहीं है।
1: दस्तावेजीकरण का अर्थ है संदर्भ को समझना, कलाकार को समझना, परंपरा को समझना, उसके स्रोत को दर्ज करना, उसकी विविधताओं को सुरक्षित रखना और उसे ऐसी व्यवस्था में रखना कि भविष्य का विद्यार्थी उसे समझ सके। भातखंडे जी का काम हमें इस गंभीर दस्तावेजीकरण की प्रेरणा देता है।
0: अगर आप संगीत के विद्यार्थी नहीं हैं, सिर्फ शौकिया तौर पर भी जब आप भातखंडे जी की लिखी संगीत की किताबें पढ़ते हैं तो आप संगीत को समझने में मुश्किलों का सामना नहीं करते। बस यही समझ आती है भातखंडे जी की अथक लगन और मेहनत।
1: क्या केवल ये कह देना पर्याप्त है कि हमारी संस्कृति महान है? नहीं, महान संस्कृति को महान बनाए रखने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने यही किया।
0: उनकी कहानी हमें एक और बात सिखाती है, कला केवल कलाकार की नहीं होती, कला के पीछे समाज होता है। गुरु होते हैं, शिष्य होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, और वे लोग भी होते हैं जो चुपचाप अपना पूरा जीवन इस बात में लगा देते हैं कि कला का ज्ञान नष्ट ना हो। भातखंडे जी ऐसे ही व्यक्ति थे।
1: उनका जीवन हमें ये बताता है कि किसी विरासत को बचाने के लिए केवल भावुक होना पर्याप्त नहीं, उसके लिए अनुशासन चाहिए, अध्ययन चाहिए, जिज्ञासा चाहिए और सबसे बढ़कर धैर्य चाहिए।
0: यही कारण है कि उनका नाम भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दिखाई देता है जहां परंपरा ने आधुनिक शैक्षणिक संरचना से संवाद शुरू किया। हमें उस विचार को भी याद करना चाहिए जो उनके जीवन के केंद्र में था, ज्ञान को सुरक्षित करना, परंपरा को समझना और उसे सबके लिए उपलब्ध कराना। क्योंकि संगीत केवल सुनने की चीज नहीं है, संगीत एक ज्ञान परंपरा है, संगीत स्मृति है, संगीत इतिहास है, संगीत अनुभव है, संगीत साधना है। और जब कोई व्यक्ति इस पूरी परंपरा को आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यवस्थित करके छोड़ जाता है तो वह केवल अपने समय की सेवा नहीं करता, वह भविष्य की सेवा करता है।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने भविष्य की सेवा की। एक वकील से संगीत शास्त्री बनने की उनकी यात्रा केवल पेशा बदलने की कहानी नहीं है, ये उस आंतरिक पुकार की कहानी है जिसे उन्होंने पहचाना।
0: इसलिए जब अगली बार किसी राग की चर्चा हो, जब कोई विद्यार्थी सारे गामा लिखकर किसी बंदिश को सीखने का प्रयास करे, कोई बच्चा छोटा ख्याल गुनगुनाए या कोई संगीतज्ञ बड़ी तान लगाए, तब मन ही मन पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को प्रणाम जरूर करिएगा।

0: इसी विचार के साथ कला कल्लोलिनी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है।
1: कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना है अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखक है मनीषा चतुर्वेदी, और मैं हूं आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी,
0: और मैं हूं वर्षा सिंह। लेते हैं इजाजत, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: फिर से अनूप भट्ट हास से हनाद होवे, फिर से

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज है 14 सितंबर का दिन, जिसे प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं।

श्रोताओं, हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं है, ये भावना है जन जन की। भारत ही नहीं, आज दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी को समझते हैं, हिंदी को बोलते हैं। शब्द ब्रह्म है और हमारी हिंदी वो ब्रह्म है जो हर भारतीय की वाणी में प्रवाहित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता संस्कृत में कही थी, लेकिन उसे घर घर तक हिंदी ही लेकर आई। भक्त कवियों की प्रार्थनाएं हिंदी में थीं। तो आइए आज हिंदी दिवस पर हम भी हिंदी की महिमा का यशोगान करें। तेरा ही तुझको है अर्पण, हिंदी को हिंदी में समर्पण। हिंदी की महिमा है भारी, सदा अखंड हो कीर्ति तुम्हारी। भारत की परिभाषा हिंदी, ध्वनि स्वरों की आशा हिंदी। इतिहासों का स्वर्णिम हिंदी, नौनिहालों का आगम हिंदी। भारत का यशगान है हिंदी, भारत का अभिमान है हिंदी। आदि सत्य सनातन हिंदी, संस्कृत सुता सात्विक हिंदी। मैं हिंदी की, हिंदी मेरी, जय हो सदा विजय हो हिंदी। भारत के गौरवमय मस्तक पर शोभित अखंड सुहागिनी हिंदी। आइए अब रिश्तों में हम हिंदी का दर्शन करें। भारत का गौरव है हिंदी, जनमानस में सौरभ हिंदी। वत्सलता आमोद सरसमयी, ममता की लोरी में हिंदी। तुतलाती जिह्वा पर आया, प्रथम शब्द मां प्राण है हिंदी। शैशव के नैपथ्य में हिंदी, पल पल प्रतिपल समृद्ध हिंदी। भाई बंधु सखा मित्र, माँ माँ नाना नानी सी हिंदी। रिश्तों को रिश्तों में बुनती, भगनी हिंदी जननी हिंदी। हर रिश्ते का भेद बताती, आपस में सम्मान सिखाती। शिष्य गुरु नर नारायण से ज्ञान का क्षितिज बताती हिंदी। आदर सत्कारों में घुलकर नमस्कार सादर है हिंदी। बाबा दादा बुआ ताऊ, चाची मामी मौसी सी हिंदी। तू के निश्चल प्रेम में हिंदी, तुम के अपने पन में हिंदी। आप शब्द सत्कार का सूचक, श्रद्धा पूजा भाव में हिंदी। श्रीमान और श्रीमती में, चिरंजीव सौभाग्यवती में। पूज्य और सम्माननीय में, अटल प्रतिष्ठित हिंदी हिंदी। नानी की परिकथा में हिंदी, दादी के अधरों पर हिंदी। गुंजित मधुमय मोहक हिंदी, इठलाती मधमाती हिंदी। श्वासों की सरिता में हिंदी, जीवन की ललिता में हिंदी। शैशव यौवन और जरा में, अमर बेल सी चढ़ती हिंदी। आइए अब हम हिंदी की सार्वभौमिकता का दर्शन करें। शब्दों का भावार्थ है हिंदी, भावनाओं को शब्द है हिंदी। संस्कारों में दक्षित हिंदी, गुणियों में परिलक्षित हिंदी। कृतज्ञता का भाव है हिंदी, क्षमा दया सद्भाव है हिंदी। ऋणी रहेंगे सदा तुम्हारे, धन्य धन्य है माता हिंदी। भीनी भोर उजास में हिंदी, प्रणवाक्षर के ध्यान में हिंदी। संध्या की गोधुली में हिंदी, निशा काल रात्रि से हिंदी। उषा रवि शशि भानु हिंदी, अनल अचल गिरी पावक हिंदी। नक्षत्रों नवग्रहों में हिंदी, गौ गीता गायत्री हिंदी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, धरती हिंदी अंबर हिंदी। ईशान से आग्नेय तक, चहुद से सदा सुबासित हिंदी। शीत शिशिर मधुमास में हिंदी, वर्षा ग्रीष्म शरद में हिंदी। प्रकृति के आह्लाद में हिंदी, एकम से पूनम में हिंदी। दसों दिशाएं हिंदी हिंदी, क्षितिज छोर सब हिंदी हिंदी। हर पल हिंदी, हर क्षण हिंदी, सरस सुहानी मधुकर हिंदी। वर्षा की रिमझिम में हिंदी, ऋतुएं तिथियां मौसम हिंदी।
जलवायु परिवर्तन हिंदी, चैत्र आश्विन अगहन हिंदी, वृक्षों की हरियाली हिंदी, पल्लव को पल बल्लर हिंदी, मोती माणिक पन्ना हिंदी, स्वर्ण जड़ित आभूषण हिंदी। आइए अब संगीत और साहित्य में हिंदी का दर्शन करते हैं। सा से षड्ज ऋषभ में हिंदी, ग म प ध नी में हिंदी, न्यास गमक आंदोलन खटका, मुर्की सी लहराती हिंदी, ओमकार आकार में हिंदी, सरगम के अभ्यास में हिंदी, लयकारी तानों में हिंदी, टप्पा ध्रुपद तराना हिंदी, रागों में तालों में तरानों के हर अक्षर में नव हिंदी, दोहे चौपाई छंदों की द्रुत विलंबित लय में हिंदी, छंद समास संधि में हिंदी, नौ रसों के भाव में हिंदी, यत्र तत्र संपूर्ण अपराजित अभिजीत संपूर्ण से हिंदी, अ से अह तक, क से ज्ञ तक, यूं तो है साकार से हिंदी, किंतु ज्ञानी मनीषियों के ज्ञान में निर्विकार से हिंदी, शब्दों से अलंकार है हिंदी, मात्रा से श्रृंगार है हिंदी, लघु से गुरु, गुरु से लघु, आदि से अनंत है हिंदी, जन जन की आस्था में हिंदी, विद्या की पराकाष्ठा हिंदी, कागर में सागर सी हिंदी, सुंदर मधुर परिष्कृत हिंदी, भाषाओं की माता हिंदी, सर्वोत्तम गुरु ज्ञाता हिंदी, लेखों में व्याख्या में हिंदी, पद्यों की सर्वात्मा हिंदी, गद्य में बसी पद्य में रमी, संदर्भ सहित प्रसंग सी हिंदी, उपन्यास जीवनी कथाओं में वैदिक ज्ञान विशारद हिंदी, प्रभु कथा लघु कथा में हिंदी, आयुर्वेद चिकित्सा हिंदी, साहित्य का दर्पण है हिंदी, चिंतन मनन अध्ययन हिंदी, कुशल प्रवक्ता के वाचन में निडर त्वरित तत्पर सी हिंदी, मंझी हुई सी सधी हुई सी मुखर प्रवाहित निर्मल हिंदी, बुंदेली हो या कोई बोली सबको हृदय लगाती हिंदी, पंजाबी उर्दू या सिंधी सबकी सखी सहेली हिंदी, स्वर व्यंजन हर अक्षर हिंदी, नाद ब्रह्म प्रणवाक्षर हिंदी, ज्ञानमयी वेदों की वाणी संस्कृत की हस्ताक्षर हिंदी। श्रोताओं, प्रार्थनाओं से पूजा आरती तक, भक्तों से भगवान तक, नदियों से नगरों तक, आइए अब हम इसी प्यारी सी हिंदी का दर्शन करते हैं। सूरदास मीरा की हिंदी, तुलसी की रामायण हिंदी, भक्ति मुक्ति का मार्ग बताती कल कल कल सरिता से हिंदी, वेद पुराण योग में हिंदी, सुधामयी गीता में हिंदी, नादमयी सुरभित सी हिंदी, देववाणी की वंशज हिंदी, रोली अक्षत कुमकुम हिंदी, आवाहन पूजन में हिंदी, विनती संकल्पों में हिंदी, अखंड ज्योत सी उज्ज्वल हिंदी, अ उ म को निज ऋण दे भगवान बनाती है ये हिंदी, ओमकार पावन स्वरूप संपूर्ण बनाती शुभ चंद्र बिंदी, प्रातः वंदन आरती हिंदी, कौशिकी दुर्गा भारती हिंदी, सीता राधा गौरी हिंदी, भक्ति शक्ति मुक्ति हिंदी, पुरुषोत्तम नारायण हिंदी, माधव केशव राघव हिंदी, होली राखी दीप मालिका, तीज चतुर्थी नवमी हिंदी, हनुमान के राम में हिंदी, मीरा के घनश्याम में हिंदी, भक्तों के भगवान में हिंदी, मर्यादित साभान है हिंदी, गंगा यमुना कृष्णा हिंदी, कावेरी रेवा में हिंदी, हिंद महासागर सी व्यापक भारत की जलराशि हिंदी, काशी नगरी उज्जैनी में दीप शिखा सी शिवमयी हिंदी, मथुरा धाम शक्ति पीठों में वसुधा की रज रज में हिंदी, भारत के जन एक बराबर समरस की परिचायक हिंदी, एक सूत्र समभाव विमलमन यूं भारत माता सी हिंदी,
देश की ध्वजा पताका हिंदी, जन गण मन अधिनायक हिंदी, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में जय हे जय हे जय हे हिंदी। और अंततः एक व्यंग देखिए कि इतनी व्यापकता के बाद भी हमारी हिंदी की आज की ये स्थिति। ज्ञानकोश रत्नाकर हिंदी, हिंदी हर दिन हिंदी, हिंद हो गया हिंदी हिंदी, फिर क्यों घोषित है दिन हिंदी। जग की हर भाषा के स्वर में छिपा हुआ हर शब्द है हिंदी, इतनी अविरल इतनी अविचल, फिर क्यों है कुंठित सी हिंदी। आदि अनादि युगों युगों से भारत की पहचान है हिंदी, फिर भी न जाने क्यों देखो अपनों में लज्जित सी हिंदी। यूं सिमटी सी यूं सकुची सी, अपनों में गुमनाम सी हिंदी, अपने ही अस्तित्व के लिए फिर क्यों है लाचार सी हिंदी। फिर क्यों है लाचार सी हिंदी, फिर क्यों है लाचार सी हिंदी। तो श्रोताओं, ये था आज का विशेष कार्यक्रम हिंदी दिवस पर हिंदी की महिमा। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, वाचन और लेखन भगवती सक्सेना। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

आनंद प्रिय दक्षिण पवन, देखो कैसे कपकपाए मेरा।

90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे रेडियो रिपोर्ट। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं सबसे पहले भोपाल शहर के जनजातीय संग्रहालय में, जहां कल संभावना श्रृंखला के तहत रविवार को मंदोदरी लीला नाट्य का मंचन किया गया। संगीता शर्मा के निर्देशन में 50 से अधिक कलाकारों ने 14 दृश्यों के माध्यम से लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी के जीवन, त्याग और नीति बोध को जीवंत किया। इस नाट्य में मंदोदरी को एक दूरदर्शी, सत्यनिष्ठ और साहसी स्त्री के रूप में उभारा गया। उन्होंने रावण को बार बार अधर्म का मार्ग छोड़ माता सीता को सम्मानपूर्वक श्री राम को लौटाने की सलाह दी। युद्ध के बाद लंका के पतन और रावण के अंत पर मंदोदरी का विलाप दर्शकों को भाव विभोर कर गया। इस नाट्य का आलेख योगेश त्रिपाठी और संगीत श्री सीताराम सिंह का रहा। दोपहर के सत्र में पवन पुत्र यादव और साथियों द्वारा अहिराई नृत्य और रवि रावत एवं साथी द्वारा भगोरिया नृत्य की प्रस्तुतियां दी गईं। ये आयोजन सनातन परंपरा की पंचकन्याओं पर केंद्रित रहा। ये विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, विवेक और नारी सम्मान को दिखाता है।

0: की आराधना करो। इन वर्षों में दूसरे देवताओं को भूल जाने में भी कोई हानि नहीं। दूसरे देवगण सो रहे हैं। इस समय तुम्हारा एकमात्र देवता है तुम्हारा राष्ट्र। सभी स्थानों में उसका हाथ है। उसके सतर्क कान भी सभी जगह मौजूद हैं। वो सभी स्थानों में व्याप्त है। तुम लोग किसी निष्फल देवता की खोज में दौड़ रहे हो और अपने सामने और चारों ओर जिस देवता को देख रहे हो उस विराट की उपासना नहीं कर रहे हो। ये सब मनुष्य और ये सब पशु ही तुम्हारे ईश्वर हैं और तुम्हारे स्वदेशवासी गण ही तुम्हारे प्रथम देवता हैं। मुझे खेद है कि जिन्हें बुलाया वे ना आए। अनेक सदियों के संस्कार, गतिहीन जीवन यात्रा का भार इतने अल्प समय में दूर नहीं हो सकता।
1: वे समाज को अखंड रूप से लेते थे। वे अंश को नहीं वरन समग्र को लेकर विचार करते थे। खंड खंड रूप से किसी विशेष प्रथा को उठा देने के लिए विगत सदी की इस व्यर्थ चेष्टा को न दोहराकर वे जाति के प्रत्येक अंग में स्वाभाविक स्वास्थ्य फिर से लौटा लाना चाहते थे। इस शरीर में यौवन के आगमन से जिस प्रकार सभी अंग पुष्ट वो विकसित हो उठते हैं, उसी प्रकार जाति यदि स्वस्थ बलशाली वो क्रियाशील है तो जहां पर जिस संस्कार की आवश्यकता होगी वो स्वयं ही सुसंपन्न हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, मैं संस्कार में विश्वास नहीं रखता, स्वाभाविक उन्नति का विश्वासी हूं।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, दिन के 12 बजने को है। अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक मिक्सलर एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। नब्बे.8 मेगाहर्ट्ज पर हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं। दिन के ठीक 12 बजे हैं। अब हमारी दोपहरकालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, तराने आजादी।
1: नब्बे.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो आ ही जा अभी मुरझाने के डर से डर जाए फूल अंगूर भी रस पीने सूख जाने से डर जाऊं क्यों तुझसे मैं किस लिए मेरे इस प्याले में पीते पीते कभी न खत्म होने वाली है अभी भरी आंसुओं की मदिरा बस

आ आ यदि तू भूखी है, नैवेद्य के लिए और अभी दिन, यद्यपि यौवन युक्त फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं, इस दिन के किसी तरह जुगाड़ कर ऋण चुकता किया, जन्मार्जित जो जो सब ऋषि ऋण के लिए, श्रुति जननी चरण तीर सेवन करके आश्रय कर ध्रुव पद का संतन उसके, आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो आनी चाहिए।

और आचरण करके एक तप, ऐसे आशा के श्मशान में घोर तपस्या देवर्ण के लिए रणवाद्य बजा के धड़ धड़ और बढ़ भागे हमला करके ठीक उसी क्षण को जब हो गई प्रभु की प्रथम रणाज्ञा और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी आ मृत्यु आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दो प्रस्तुतियां। पहले रागिनी गायन राजेश दलाल और उनके साथियों के स्वरों में, और इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे आल्हा गायन। पहले रागिनी गायन।
2: बहुत ही आदर और सम्माननीय सबको।

हमारा प्रणाम है, राम राम है। तो रागनी गायन, जिंदा रहने का हुनर उसने सिखाया होगा, जिंदा रहने का हुनर उसने सिखाया होगा, तेज आंधी में दिया जिसने जलाया होगा। तो मील का पत्थर बनगी प्यारे, मील का पत्थर बनगी प्यारे, इसकी आत्मनिर्भरता गिणे देना मैं यू हरियाणा, होता जावे क्या से क्या, और देख पड़ोसी कहने लागे वाह भाई वाह वाह वाह वाह, ओ बल्ले ओ मेरे यारा से मारा हरियाणा, सारी दुनिया ते न्यारा से मारा हरियाणा, यू किसा से मारा हरियाणा। सुनिए इस रागनी में।

परे ये बुलबुले पूरे सुहाड़ी रे अरे हर एक दिन त्योहार से मारा अरे एक रात जवाड़ी रे।

अरे सब ते अच्छी साची बात के सब ते अच्छी साची बात महकार से मारे पसीने में फागण सा खेला खेता में जेठ साढ़ के महीने में जियो और जीने दो सब ने सलास समारे जीने में और अखड़ू से दिखा सा बेसक

बॉर्डर के ऑर्डर होकर गिर गया, बॉर्डर के ऑर्डर जवान तने हरियाणा के, खेला में मेडल लियावे ना जावे गिने हरियाणा के, पढ़े लिखे ये सखर चढ़े से बने जने हरियाणा के, और बॉलीवुड में चले जठोरे देख अपने हरियाणा के।

हमारे यहाँ रिवाज है कि बच्चा होता है तब उसकी छठी मनाई जाती है, और उसके पीछे एक ये मान्यता है कि उस दिन वो बेमाता उसके भाग उसके लेख उसका भविष्य लिखने के लिए आती है। कहते हैं कि वह बेमाता आई और पूछने लगे उसकी माँ से, अब बता तेरी संतान के भाग्य में के लिख दूं। माता हाथ जोड़ के खड़ी होगी, बोले जी आप कौन? बोला मैं बेमाता हूं। बोले हाँ फिर तो आप जो लिखोगे वो पार जागा। हाँ बोला बोल मांग क्या लिख दूं। बोला जी ये लिख दो, अग मेरी औलाद लेके दे देर करके खा ले, लेके दे दे और करके खा ले, उस पे कौन जबर होश है। हमारे हरियाणा का एक मुहारा है बहुत जिंदा, लेके दे दे करके खा ले उस पे कौन जबर होश है, और नुगरा मानस आंख बदल जाए तो समझदार की मर उस है। सबसे बड़ा मान सम्मान हमारे इस बात में है कि हम कर्मठ हैं, अपना पसीना निचोड़ के अपनी जमीन को सींचते हैं, अपना किया हुआ खाते हैं, बेराना के न नहीं लखा, दूसरे के लोग नहीं तकते, दूसरे की धन माया पर लाल टपकाना हरियाणा का कर्म धर्म नहीं है। आखिर में क्या बताया, कितनी मेहनत से आया है ये शिखर में हरियाणा, सुनिए।

लिखाए से हमने खूब कमाए नुगात खपाए और फर्ज पुगाए से हमने गोरे राज के ताज उछाड़े पढ़ने बिठाए से हमने गुड़ की डली था और घड़वे बजा के।

देदा करके खाला ये भाग लिखाए से हमने, खूब कमाए गाठ खपाए फर्ज पुगाए से हमने, और गोरे राज के ताज उछाड़े पढ़न बैठाए से हमने, गोरे राज के ताज उछाड़े इतिहास बनाए से हमने, और गुड़ की डड़ी खा गढ़वे बजा के उधार का स्वर्ग नहीं सजाया हमने, जो हमारा घरा था उस समय मस्त रहे। अरे गुड़ की डड़ी खा गढ़वे बजा मनाए हमने, गुड़ की डड़ी खा गढ़वे बजा के त्योहार मनाए से हमने। राजेश दलाल तू रहे आपे मैं राजेश दलाल।

एक और प्रस्तुति का मेरे लिए। दोस्तों, कहते कि जहां जहां शहीदों की रूह उकेरी जाती है, जहां जहां शहीदों की रूह उकेरी जाएगी, वहां वहां बिना अगरबत्ती भी महक आएगी। तो शहीदों के शहीद शहीदे आजम भगत सिंह की रूह उकेरने का एक किस्सा, एक वाक्य आपके सामने रखना चाहूंगा कि 24 तारीख 1931 उनकी फांसी का दिन धरा, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतना हड़बड़ा गया कि एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को वे तीनों सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु फांसी पे चढ़ा दिए। और केवल चढ़ाए ही नहीं, बिल्कुल निर्मम हत्या भी की उनकी, इतिहास बताता है। और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए, जो उनके साथी बाहर थे वो नदियों के मां गला दिए। लकड़ी की जगह पर कोला था, मिट्टी के तेल में घोला था, जो अगर तकर भी बोला था वो मित्र प्यारे जला दिए। और सतलुज नदी के किनारे पर जब वो जलाए तो ये दुखदाई नजारा देख के कुदरत भी आंसू गिरने लगी और वृक्ष भी अपने पत्ते झड़काने लगे दुख में। सब फूल पाथे झड़ रहे, झड़ झड़ कीचड़ में पड़ रहे, हम झाड़ बोझड़े खड़े रहे, वे बादाम छुहारे जला दिए। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए। ये कवि ने कल्पना की 23 तारीख शाम को उनको फांसी हुई, किस निर्ममता से फांसी ही नहीं काटा गया। और फिर अखबारों में छपती है ये खबर, 25 मार्च 1931 को सुबह सुबह एक अखबार वाला अखबार बेचक गड़िया में रूप के मारा। सुबह सुबह अखबार बेचने से ज्यादा उसके दिल में ये संताप था कि भारत के तीन लाल मार दिए। रो रो कर अखबार बांटे गलियों में, उसकी एक आंख से आंसू थम नहीं रहा था और गुस्से में एक आंख से आंसू निकल नहीं रहा था। वो क्या कहता है, रुक के मार मार के उसका अखबार बेचना, उसका संताप अखबार बेचने के अपने लालच से 100 कोस दूर था। वो क्या कहता गलियों में फिर रहा है, सुनिए एक रचना आपके सामने, शहीदों के खून से रंगी हुई, सुनिए।

मारी लुटकी अठ मासी रे रूल तोड़ के है एक दिन पहला आ तोड़ दिए वे फांसी रे रूल तोड़ के तेरी मूर्ति तिरवेणी वे तेरी देव तारे तीजू राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हिंद के दुलारे तीजू और रस्से से गल घोट दिए जो शेर से ललकारे तीनों रस्से से घोट दिए करे कसाइया में और बोटे करे कसाइया में वे तक काटी।

फिर के करया और फांसी ना करे वे तो काटे डांगर ढोर से और फिर गाड़ी में भर के बोरिया मल्ला दला टोकरिया मल्ला दला गाड़ी में डाल के और लाहौर की सेंट्रल जेल से अंतिम यात्रा वहां से निकाली जहां से जेल का मल मूत्र ढोया जाता था उधर से गाड़ी गई। फिर वो हलचल मची थी जब ये फांसी पर चढ़े इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और उनके जवाब में कैदियों ने पूरी जेल को हिला दिया था तो ये बाहर तक गई गूंज। तो भगत सिंह की बहन अमर कौर भगत सिंह का सारा परिवार वहां पे था बोली माँ के मन के मैं होली आस है और कदे ना इब्बत तोड़ दियो हूं फांसी। बोला ना बेटा अंग्रेज कानून के पक्के हैं तड़के ही तोड़े अगर इब ना तोड़े। बोला ना ना ना देख गाड़ी जाती भी देखी है क्या नजर हाजली बार।

कर दिए टुकड़े कर दिए बोरे भर दिए लथ पथ मास पासली हड्डी मल मूत्र जा भजी सर रस्ते से उस गेट पे काटी काटी कैदी चंगाड़े और न हो गे खाड़े बाहर भी हो कार ठाटी कैदी चंगाड़े।

0: आते चला है आते के बगाए अंधेर को पाए मोर से
1: खबर है ये तो आई है लाहौर से सुन लो की ओर से पढ़ लो की ओर।

कर दिए बोरे, भर दिए लथपथ मांस पासली हड्डी, मल मूत्र जा जिस रस्ते से उसे गेट पे गाड़ी गाड़ी, कैदी चंगाड़े हो गए रखाड़े, बाहर भी होकार ठाडी, फिर सरकारी गुर्गे वे डर गए, रम मर गए, चलो बचा लो जान, जा फिरोजपुर हुसैनी वाला गढ़ मट गए रे मूल्यवान, रे आओ लाल मेरी गोदी में, वह सतलुज रोई बे अनुमान, सतलुज में घेर दिए वे आधे भून भान के, वे आधे जलाए आधे बगाए, अंधेर को काए मोर से, सुन लो जी गौर से, पढ़ लो जी गौर से, गाड़ी गई उधर से वो कार्रवाई रच दी उन जालिमों ने। तो आप भगत सिंह की बहन अमर कौर और उनके साथी जयदेव गुप्ता, गाड़ी जाली है कुछ हो लिया है, जिसका जो साधन था उधर गाड़ी का पीछा करने के लिए भाग लिए अंधेरे में, और वो मांस के टुकड़े किते किते पाए, गाड़ी वाले तो भाज के कर कर आ गए, और वो खून की मिट्टी जहां पाई वही विरासत समझ के अपने सीने से लगा ली, और फिर अपने ढंग से उनका अंतिम संस्कार करने के लिए रावी तट पे चल पड़ता है काफिला।

गुप्ता पेड़ा पेड़ा जालिए फेर मसाल लाल टन है टोरच ले ले झुंड के झुंड आलिए फेर गर्म लोथ देर खून की मिट्टी

ही नेहरू जी भी चक्कर खा गए ए देख के मारा ए दुख की आंधी दिल्ली के स्टेशन पे ए सुबह के रोवे मालवीय गांधी दिल्ली के आदत की पर ले छिड़गी हो फिर सा आदत की पर ले छिड़गी बदले बूढ़े के जोर से सुन लो।

विश्वास कर लिया है। क्या होया? फिर उनकी शहादत की परले छिड़की, हिंदुस्तान में इतनी उथल पुथल माच गई, गलबे मार दिए रहे, तीनों जने मार दिए रहे हिंद के लाल। तो गांधी, नेहरू और मालवीय जी दिल्ली के स्टेशन पर थे, उनमें खबर पहुंची तो वे भी सदमा खा गए। और भगत सिंह के गांव बंका से खून से लिखी चिट्ठी आई, अपने लाल का एंडी बदला लेकर दिखावांगे पूरे हिंदुस्तान में, इसके विरोध में क्या क्या हलचल होने लगी, के तूफान माचा। सुनिए, धरती

कलकत्ता, कराची, बम्बई और दिल्ली, जंग मद्रास में रावल पिंडी बोली ना रहूं।

जनू मर जाऊं मैं टक्कर मार सरकार में, पर जासे जी चल जासे जब देखूं सू अखबार में, पैसे ना होते ले जाऊं

याद करे जा रहे हैं लास्ट कली जी बस वेत अर्पित सबरी समर्पित करके अरे अर्पित सबरी समर्पित करके सच्चे संत परने

इसीलिए मारे नेता है जगा के क्या सीखना उसे। अरे भगत सिंह से सीखना है के अरे भगत सिंह से सीखना है के भगत बनेंगे सी बनेंगे। राज का गुरु कहाँ छिपा है ढूंढेंगे और चाल गिनेंगे। सुख देवन कोई देव ना आवे और अपने मोर्चे आप तनेंगे। सुख देवन कोई देव ना आवे

अल्लाह ले तू गाई से गा के अल्लाह बोल जा जोर से सोनी लो जी जोर से पगलो जी जोर से।

क्या विचार किया कि उदल को मरवा के राजा परमाल का खजाना लुटवा करके चैन लूंगा। यही विचार करके माहिल प्रस्थान कर देते हैं महोबा की ओर और जब महोबा पहुंचे तब राजा परमाल से कहते हैं, महाराज सुनो, नीके घोड़ा नाम

आ जाए। या मालिनी जोनी रहा बगिया के बहू दलते कहा सुना या कौन व्यास के तुम रहा

जवाब दिया और कहा, तुम्हारी मति मारी गई है, मैं रंग महल को प्रस्थान नहीं करूंगी। जवाब दिया वो दल ने मालिन से, कहा कि सुनो, हार गूं

आभास लेने के लिए मालन वहां से प्रस्थान कर देती है और इधर उदल क्या कर रहे हैं। रानी फुलवा के लिए हार गूथ रहे हैं, कैसे हार

0: भौजी सुनो, हार गूथी डलिया माँ धर दिया, तुम फुलवा का दियो पहिराए, लेके डलिया मालिन चली भेज मबना राख्यो देर
1: लगाए।
0: और जब महल में पहुंची फुलवा को हार पिन्हाया, तब क्या हुआ सजनो, ध्यान दीजिएगा।

है जेवर मालिनी आई यो दलका रही सजाए या साड़ी पिन्हावे बनरस वाली जही मादामिन के अनुहार या बाजबे अनुला का चहवई।

0: सज्जनों, आज उदल ने जवाब दिया फुलवा से, कहा कि सुनो धीरज रखो, हमारे यहाँ महोबा में राजा परमाल है, चंद्रावली बेटी राजा के हर बैठे संग हुआ पर जाए, ऊंच नीच का हम ना जाने, तुम का साच रहिन बतलाए। आज उदल जो महोबा का योद्धा है, रानी फुलवा से मिलने के लिए अपनी नाक तक छिदवा डाली। और उधर सज्जनों, जब एक बार किसी से गलती हो जाती है तब दोबारा सुधार हो जाता है। तभी तो कहते हैं इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही मंदिरों में पूजा करने नहीं जाते, क्योंकि आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है।
1: क्या बात है।
0: आज की शाम आपको बहुत सारे कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। सुनिए आला गायन में क्या होता है। सज्जनों, कहा गया सितारों की महफिल को महफूज रखना, बड़ी दूर तक है बड़ी रात होगी, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। लेकिन तब तक के लिए आला सुनेगा होता क्या है। आज उदल ने जवाब दिया रानी फुलवा से, कहा सुनो हम महाराजा की बेटी के साथ में बैठे हैं, हमें ऊंच नीच का मालूम नहीं है। उदल की ये बातें सुन करके रानी फुलवा ने जवाब दिया और कहा कि सुनो जिया रे कर रे हाथ तुम्हारे लागे, यतना हम का दियो बताए, उदल वाले वही बेरियामा फुलवा सुन लियो कान
1: लगाए,
0: कि रकीन नौकरी जाए दूसरे के तुम का साफर है बदलाए, हमारी जो तुम मानो तुम ते साच रहे न बदलाए, या ऐसी अबानी फलवा वाले मालिन ध्यान विसरी ना जाए, या आज के रहनी यहाँ पर।

0: क्या हुआ? जवाब दिया उदल ने और फुलवा से कहा कि सुनो, नाम हमारा बघबूदल है, अरे तुम का साच रहन बतलाए, और नगर महोबा गाँव हमारा, हम हैं देश राज के
1: लाल।
0: तुम्हारे से मिलने के लिए हमने नारी का भेष बना लिया। उदल का नाम जैसे फुलवा ने सुना, सज्जनों उस समय जानते हो फुलवा ने क्या किया? जोरी का दुरी जा

जवाब दिया उदल ने और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम तुमसे विवाद रचाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। जवाब दिया फुलवा ने उदल से, कहा कि सुनो, या तुम विवाह रचाने के लिए नहीं आए हो तो मुझसे वादा करो, यहाँ पर क्यों आए हो। जवाब दिया उदल ने, तुम का दिया खन का आयन रहे, सुन लियो बात हमारी आए, हजोरी गदरिया वाले फुलवा हम संग भवरी लियो डराए। तब जवाब में उदल कहते हैं,

या बाजबे मिल्ला का चढ़वैया दूल्हा बनाऊ दे चनराए या लेके भोजन का चल दिनो नरवल जटो बरा पड़ जाए या आई के पहुंचे नरवल गणमा भारी तो पदियो दगवाए या खबर लागी गए नरपद सिंह का या अपने भौज दिया तैयार या पढ़ के चाप दिया नरपद ने वो महोबा के वीर जवान या कह की मैया ने बर पूजा कही के बिता रहे ये दवार या कह की दे ही है बच

0: या उदल ने और राजा नरपत सिंह ने कहा कि सुनो, क्या हम तुम्हारी धमकी से डर जाएंगे? जो रणभूमि के क्षेत्र में मुझे धमकाने के लिए आ गए, डोला दई दोन ने जी बिटिया का नहीं अनमंत जोग हो जाए। ईट न रही है नरवल गढ़मा और नरवल खोदी करा दूं
1: ताले।
0: ऐसी अबानी में राजा हवाले सुन लो बात बना फर राए, और डोला दिया बना बिटिया का चाहे कोटिन करो
1: उपाए।
0: जवाब दिया उदल ने और कहा कि सुनो, वो जिंदगी भी क्या जो दमदार नहीं होती, वो जिंदगी भी क्या जो दमदार नहीं होती, वो तलवार भी क्या जिसमें धार नहीं होती। जमाना लाख बने रुकावट, हिम्मत भरे लोगों की कभी
1: हार नहीं होती।
0: तुम्हारी बेटी का डोला तो हम लेके रहेंगे। खीर बातन बातन पतगड़।

0: गला दे जे घोड़ा के चार सौ मगर हो जाए, या गला जंजरी हाजिन के लागे उनके भी खंडा हो जाए।
1: चार पंक्तियां पढ़ रही हूँ।

लड़ैया नरवली वाले हजिन कह बेणी बहाए तलवार और हालू बता दे महुबे वारिनी हजिन कह गति बरणना। किस तरह नरवल कड़के मैदान में यो दो राय सजनों ध्यान दीजिएगा।

नरपत सिंह अपने हाथी से रणक्षेत्र के मैदान में नीचे गिर गए। और उस समय क्या हुआ, उदल ने महाराजा से कहा कि सुनो, तुम क्या समझते हो कि हम डर जाएंगे, ऐसी कठिन घड़ी से मुकर जाएंगे, ये रणभूमि है, तलवार रोक रुक देखो, दुश्मन का सीना चीर कर सीने पे उतर जाएंगे। आज राजा नरपत सिंह का दिमाग खराब हो गया, बोल न फूटा मुख से आको, उदल दीना हाथ उठाए, दंड बंधाया नरपति सिंह ने, उदल बैन कहा समझाए, उदल ने नरपति सिंह के दंड बंधवा लिए। और उस समय उदल ने नरपति सिंह से कहा, मारा सुनो कि अरे हारी लिख दो, जब ही ना पाए जब ना राखो देर लगाए, हारी

निकार धन बेंगला के जहवैया बहु हर विदा लिहो करवाए या कागत बरन हम हो बे मा महलन हो मंगला जाय या जय लड़ा जी।

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने रागिनी गायन और आल्हा गायन सुना। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं आपको इस कार्यक्रम में सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य।

0: दुर्गा माली डॉक्टर मेहरा बारट लॉ के यहां नौकर था। 5 रुपए मासिक वेतन पाता था। उसके घर में स्त्री और 2-3 छोटे बच्चे थे। स्त्री पड़ोसियों के लिए गेहूं पीसा करती थी। 2 बच्चे जो समझदार थे इधर उधर से लकड़ियां गेहूं उपले चुन लाते थे, किंतु इतना यत्न करने पर भी वे बहुत तकलीफ में रहते थे। दुर्गा डॉक्टर साहब की नजर बचाकर बागीचे से फूल चुन लेता और बाजार में पुजारियों के हाथ बेच दिया करता था। कभी कभी फलों पर भी हाथ साफ किया करता। यही उसकी ऊपरी आमदनी थी। इससे नोन तेल आदि का काम चल जाता था। उसने कई बार डॉक्टर महोदय से वेतन बढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु डॉक्टर साहब नौकर की वेतन वृद्धि को छूत की बीमारी समझते थे, जो एक से अनेकों को ग्रस लेती है। वे साफ कह दिया करते, भाई मैं तुम्हें बांधे तो हूं नहीं, तुम्हारे यहां निर्वाह नहीं होता तो कहीं और चले जाओ, मेरे लिए मालियों का काल नहीं है। दुर्गा में इतना साहस न था कि वो लगी हुई रोजी छोड़कर नौकरी ढूंढने निकलता। इससे अधिक वेतन पाने की आशा भी नहीं, इसलिए वो इसी निराशा में पड़ा हुआ जीवन के दिन काटता और अपने भाग्य को रोता था। डॉक्टर महोदय को बागवानी से विशेष प्रेम था। नाना प्रकार के फूल पत्ते लगा रखे थे। अच्छे अच्छे फलों के पौधे दरभंगा, मलिहाबाद, सहारनपुर आदि स्थानों से मंगवाकर लगाए थे। वृक्षों को फलों से लदे देखकर उन्हें हार्दिक आनंद होता था। अपने मित्रों के यहाँ गुलदस्ते और शाक भाजी की डालियां तोहफे के तौर पर भिजवाते रहते थे। उन्हें फलों को आप खाने का शौक न था, पर मित्रों को खिलाने में उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता था। प्रत्येक फल के मौसम में मित्रों की दावत करते और पिकनिक पार्टियां उनके मनोरंजन का प्रधान अंग थीं। एक बार गर्मियों में उन्होंने अपने कई मित्रों को आम खाने की दावत दी। मलिहाबादी में सफेदे के फल खूब लगे हुए थे। डॉक्टर साहब इन फलों को प्रतिदिन देखा करते थे। ये पहले ही फले थे, इसलिए वे मित्रों से उनकी मिठास और स्वाद का बखान सुनना चाहते थे। इस विचार से उन्हें वही आमोद था जो किसी पहलवान को अपने पट्टों के करतब दिखाने से होता है। इतने बड़े सुंदर और सुकोमल सफेदे स्वयं उनकी निगाह से न गुजरे थे। इन फलों के स्वाद पर उन्हें इतना विश्वास था कि वे एक फल चखकर उनकी परीक्षा करना आवश्यक न समझते थे। प्रधानता इसलिए कि एक फल की कमी एक मित्र को रसास्वादन से वंचित कर देगी। संध्या का समय था, चैत का महीना। मित्रगण आकर बगीचे के हौज के किनारे कुर्सियों पर बैठे थे। बर्फ और दूध का प्रबंध पहले से ही कर लिया गया था, पर अभी तक फल न तोड़े गए थे। डॉक्टर साहब पहले फलों को पेड़ में लगे हुए दिखलाने के बाद उन्हें तोड़ना चाहते थे, जिसमें किसी को यह संदेह न हो कि फल इनके बाग के नहीं है। जब सब सज्जन जमा हो गए तब उन्होंने कहा, आप लोगों को कष्ट होगा, पर जरा चलकर फलों को पेड़ में लटकते देखिए, बड़ा ही मनोहर दृश्य है। गुलाब में भी ऐसी लोचन प्रिय लाली न होगी, रंग से स्वाद टपक पड़ता है। मैंने इसकी कलम खास मलिहाबाद से मंगवाई थी और उसका विशेष रीति से पालन किया है। मित्रगण उठे, डॉक्टर साहब आगे आगे चले। रवीशों के दोनों ओर गुलाब की क्यारियां थी। उनकी छटा दिखाते हुए व्यंत में सफेदे के पेड़ के सामने आ गए, मगर आश्चर्य, वहां एक फल भी न था। डॉक्टर साहब ने समझा शायद वो ये पेड़ नहीं है। 2 पग और आगे चले, दूसरा पेड़ मिल गए और आगे बढ़े, तीसरा पेड़ मिला। फिर पीछे लौटे और एक विस्मित दशा में सफेदे के वृक्ष के नीचे आकर रुक गए। इसमें संदेह नहीं कि वृक्ष यही है, पर फल क्या हुए? 20-25 आम थे, एक का भी पता नहीं। मित्रों की ओर अपराधपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, आश्चर्य है, इसमें एक भी फल नहीं है। आज सुबह मैंने देखा था, पेड़ फलों से लदा हुआ था। ये देखिए, फलों का डंठल है। यह अवश्य माली की शरारत है। मैं आज उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उस पाजी ने मुझे कितना धोखा दिया। मैं बहुत लज्जित हूं कि आप लोगों को व्यर्थ कष्ट हुआ। मैं सत्य कहता हूं, इस समय मुझे जितना दुख है उसे प्रकट नहीं कर सकता। ऐसे रंगीले कोमल कमनीय फल मैंने अपने जीवन में कभी ना देखे थे। उनके यूं लुप्त हो जाने से मेरे हृदय के टुकड़े हुए जाते हैं। ये कहकर वे नाराश वेदना से कुर्सी पर बैठ गए। मित्रों ने सांत्वना देते हुए कहा, नौकरों का सब जगह यही हाल है। ये जाती ही पाजी होती है। आप हम लोगों के कष्ट का खेद ना करें। ये सफेदे ना सही, दूसरे फल सही। एक सज्जन ने कहा, साहब मुझे तो सब आम एक से ही मालूम होते हैं। सफेदे, मोहन भोग, लंगड़े, बम्बई, फजली, दशहरी, इनमें कोई भेद ही मालूम नहीं होता। न जाने आप लोगों को कैसे उनके स्वाद में फर्क मालूम होता है। दूसरे सज्जन बोले,
1: भाई यहां भी वही हाल है, जो इस समय फल मिले वही मंगवाइए, जो गए उनका क्या अफसोस।
0: डॉक्टर साहब ने व्यथित भाव से कहा, आमों की क्या कमी है, सारा बाग भरा पड़ा है, खूब शौक से खाइए और बांधकर घर ले जाइए। वे हैं और किस लिए, पर वो रस और स्वाद कहां। आपको विश्वास ना होगा, उन सुफेदों पर ऐसा निखार था कि सेब मालूम होते थे। सेब भी देखने में ही सुंदर होता है, उसमें वो रुचिवर्धक लालित्य, वो सुधा में मृदुता कहां। इस माली ने आज वो अनर्थ किया है कि जी चाहता है नमक हराम को गोली मार दूं, इस वक्त सामने आ जाए तो अधमरा कर दूं। माली बाजार गया हुआ था। डॉक्टर साहब ने साइज से कुछ आम तुड़वाए, मित्रों ने आम खाए, दूध पिया और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देकर अपने अपने घर की राह ली। लेकिन मिस्टर मेहरा वहां हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए माली की बाट जोहते रहे। आकृति से जान पड़ता था मानो साक्षात क्रोध मूर्तिमान हो गया था। कुछ रात गए दुर्गा बाजार से लौटा, वो चौकन्नी आंखों से इधर उधर देख रहा था। जो ही उसने डॉक्टर साहब को हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए बैठे देखा, उसके होश उड़ गए, समझ गया कि चोरी पकड़ ली गई। इसी भय से उसने बाजार में खूब देर की थी। उसने समझा था डॉक्टर साहब कहीं सैर करने गए होंगे, मैं चुपके कटहल के नीचे अपनी झोपड़ी में जा बैठूंगा, सवेरे कुछ पूछताछ भी हुई तो मुझे सफाई देने का अवसर मिल जाएगा, कह दूंगा सरकार मेरे झोपड़े की तलाशी ले ले, और इस तरह मामला दब जाएगा। समय सफल चोर का सबसे बड़ा मित्र है, एक एक क्षण उसे निर्दोष सिद्ध करता जाता था, किंतु जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है तब उसके बच निकलने की कोई राह नहीं रहती। रुधिर के सूखे हुए धब्बे रंग के दाग बन सकते हैं, पर ताजा लहू आप ही आप पुकारता है। दुर्गा के पैर थम गए, छाती धड़कने लगी। डॉक्टर साहब की निगाह उस पर पड़ गई थी, अब उल्टे पांव लौटना व्यर्थ था। डॉक्टर साहब उसे दूर से ही देखते उठे कि चलकर उसकी खूब मरम्मत करूं, लेकिन वकील थे, विचार किया कि इसका बयान लेना आवश्यक है। इशारे से निकट बुलाया और पूछा, सुफेदे के पेड़ में कई आम लगे हुए थे, एक भी दिखाई नहीं देता, कहां चले गए। दुर्गा ने निर्दोष भाव से उत्तर दिया, हुजूर मैं अभी बाजार गया हूं, तब तक तो सब आम लगे थे, इतनी देर में कोई तोड़ ले गया हो तो मैं नहीं कह सकता। तुम्हारा संदेह किस पर है।
1: सरकार अब मैं किसे बताऊं, इतने नौकर चाकर हैं, न जाने किसकी नीयत बिगड़ गई हो।
0: मेरा संदेह तुम्हारे ऊपर है, अगर तोड़ कर रखे हूं तो लाकर दे दो, या साफ साफ कह दो कि मैंने तोड़े हैं, नहीं तो बुरी तरह पेश आऊंगा। चोर केवल दंड से ही नहीं बचना चाहता, वो अपमान से भी बचना चाहता है। वो दंड से उतना नहीं डरता जितना अपमान से। जब उसे सजा से बचने की कोई आशा नहीं रहती, उस समय भी वो अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता। वो अपराधी बनकर छूट जाने से निर्दोष बनकर दंड भोगना बेहतर समझता है। दुर्गा इस समय अपराध स्वीकार करके सजा से बच सकता था, पर उसने कहा, हुजूर आप मालिक हैं, जो चाहे करें, पर मैंने आम नहीं तोड़े, सरकार ही बताएं, इतने दिन मुझे आपकी ताबेदारी करते हो गए, मैंने एक पत्ती भी छुई है। तुम कसम खा सकते हो।
1: गंगा की कसम जो मैंने आमों को हाथ से छुआ हो, मुझे इस कसम पर विश्वास नहीं। तुम पहले लोटे में पानी लाओ, उसमें तुलसी की पत्तियां डालो, तब कसम खाकर कहो कि अगर मैंने तोड़े हो तो मेरा लड़का मेरे काम ना आए, तब मुझे विश्वास आएगा।
0: हुजूर सांच को आंच क्या, जो कसम कहिए खाऊंगा, जब मैंने काम किया ही नहीं तो मुझ पर कसम क्या पड़ेगी। अच्छा बातें ना बनाओ, जाकर पानी लाओ।
1: डॉक्टर महोदय मानव चरित्र के ज्ञाता थे, सदैव अपराधियों से व्यवहार रहता था। यद्यपि दुर्गा जबान से हेकड़ी की बातें कर रहा था, पर उसके हृदय में भय समाया हुआ था। वो अपने झोंपड़े में आया, लेकिन लोटे में पानी लेकर जाने की हिम्मत न हुई, उसके हाथ थरथराने लगे। ऐसी घटनाएं याद आ गईं जिनमें झूठी गंगा उठाने वाले पर दैवी कोप का प्रहार हुआ था। ईश्वर के सर्वज्ञ होने का ऐसा मर्मस्पर्शी विश्वास उसे कभी नहीं हुआ था। उसने निश्चय किया, मैं झूठी गंगा की कसम ना उठाऊंगा, यही ना होगा निकाल दिया जाऊंगा, नौकरी फिर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और नौकरी ना मिले तो मजूरी तो कहीं गई नहीं, कुदाल भी चलाऊंगा तो सांझ तक आधा सेर आटे का ठिकाना हो जाएगा। वो धीरे धीरे खाली हाथ डॉक्टर साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने कड़े स्वर में पूछा, पानी लाया।
0: हुजूर मैं गंगा ना उठाऊंगा।
1: तो तुम्हारा आम तोड़ना साबित है।
2: अब सरकार जो चाहे समझे। मान लीजिए मैं नहीं आम तोड़े तो आपका गुलाम ही तो हूं। रात दिन ताबेदारी करता हूं, बाल बच्चे आम के लिए रोवे तो कहां जाऊं। आपकी जान बख्शी जाए फिर ऐसा कसूर ना होगा।
1: डॉक्टर महोदय इतने उदार न थे। उन्होंने यही बड़ा उपकार किया कि दुर्गा को पुलिस के हवाले न किया और ना ही हंटर लगाए। उसकी इस धार्मिक श्रद्धा ने उन्हें कुछ नरम कर दिया था, मगर ऐसे दुर्बल हृदय को अपने यहां रखना संभव था। उन्होंने उसी क्षण दुर्गा को जवाब दे दिया और उसकी आधे महीने की बाकी मजदूरी जब्त कर ली। कई माह के पश्चात मेहरा बाबू प्रेमशंकर के बाग की सैर करने गए। वहां से कुछ अच्छी अच्छी कलमें लाना चाहते थे। प्रेमशंकर को भी बागवानी से प्रेम था और दोनों मनुष्यों में यही समानता थी, अन्य सभी विषयों में एक दूसरे से भिन्न थे। प्रेमशंकर बड़े संतोषी, सरल और सहृदय मनुष्य थे। वे कई साल अमेरिका रह चुके थे। वहां उन्होंने कृषि विज्ञान का खूब अध्ययन किया था और यहां आकर इस वृत्ति को अपने आजीविका का आधार बना लिया था। मानव चरित्र और वर्तमान सामाजिक संगठन के विषय में उनके विचार विचित्र थे, इसलिए शहर के सभ्य समाज में लोग उनकी उपेक्षा करते थे और उन्हें झक्की समझते थे। इसमें संदेह नहीं कि उनके सिद्धांतों से लोगों को एक प्रकार की दार्शनिक सहानुभूति थी, पर उनके क्रियात्मक होने के विषय में उन्हें बड़ी शंका थी। संसार कर्म क्षेत्र है, मीमांसा क्षेत्र नहीं। यहां सिद्धांत सिद्धांत ही रहेंगे, उनका प्रत्यक्ष घटनाओं से संबंध नहीं। डॉक्टर साहब बागीचे में पहुंचे तो उन्होंने प्रेमशंकर को क्यारियों में पानी देते हुए पाया। कुएं पर एक मनुष्य खड़ा पंप से पानी निकाल रहा था। मेहरा ने उसे तुरंत ही पहचान लिया, वो दुर्गा माली था। डॉक्टर साहब के मन में उस समय दुर्गा के प्रति एक विचित्र ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। जिस नराधम को उन्होंने दंड देकर अपने हाथ से अलग कर दिया था, उसे नौकरी क्यों मिल गई। यदि दुर्गा इस समय फटेहाल रोनी सूरत बनाई दिखाई देता तो डॉक्टर साहब को उस पर दया आ जाती। वे संभवतः उसे कुछ इनाम देते और प्रेमशंकर से उसकी प्रशंसा भी कर देते। उनकी प्रकृति में दया थी और अपने नौकरों पर उनकी कृपा दृष्टि रहती थी, परंतु उनकी इस कृपा और दया में लेश मात्र भी भेद न था, जो अपने कुत्तों और घोड़ों से भी थी। इस कृपा का आधार न्याय नहीं, दीन पालन है। दुर्गा ने उन्हें देखा, कुएं पर खड़े खड़े सलाम किया और फिर अपने काम में लग गया। उसका यह अभिमान डॉक्टर साहब के हृदय में भाले की भांति चुभ गया। उन्हें यह विचार कर अत्यंत क्रोध आया कि मेरे यहां से निकलना इसके लिए हितकर हो गया। उन्हें अपनी सहृदयता पर जो घमंड था उसे बड़ा आघात लगा। प्रेमशंकर ज्यों ही उनसे हाथ मिलाकर उन्हें क्यारियों की सैर कराने लगे, क्यों ही डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा, यह आदमी आपके यहां कितने दिनों से है। यही 6 या 7 महीने हुए होंगे। कुछ नोच खसोट तो नहीं करता। ये मेरे यहां माली था, इसके हथलपकेपन से तंग आकर मैंने इसे निकाल दिया था। कभी फूल तोड़कर बेच आता, कभी पौधे उखाड़ ले जाता और फलों का तो कहना ही क्या। वे इसके मारे बचते ही न थे। एक बार मैंने मित्रों की दावत की थी, मलिहाबादी सुफेदे में खूब फल लगे थे। जब सब आकर बैठ गए और मैं उन्हें फल दिखाने ले गया तो सारे फल गायब। हजी कुछ न पूछिए, उस समय उस घड़ी कितनी भद्द हुई। मैंने उसी क्षण इन महाशय को दुत्कार बताई। बड़ा ही दगाबाज आदमी है और ऐसा चतुर कि इसको पकड़ना मुश्किल है। कोई वकीलों ही जैसा काइया आदमी हो तो इसे पकड़ सकता है। ऐसी सफाई और ढिठाई से ढुलकता है कि इसका मुंह देखते रह जाइए। आपको तो कभी चरका नहीं दिया। अजी नहीं, कभी नहीं। मुझे इसने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया। यहां तो खूब मेहनत करता है, यहां तक कि दोपहर की छुट्टी में भी आराम नहीं करता। मुझे तो इस पर इतना भरोसा हो गया कि सारा बागीचा इस पर छोड़ रखा है। दिन भर में जो कुछ आमदनी होती है वो शाम को मुझे दे देता है और कभी पाई का अंतर नहीं पड़ता। यही तो इसका कौशल है कि आपको उल्टे छुरे मुड़े और आपको खबर भी नहीं। आप इसे वेतन क्या देते हैं? यहां किसी को वेतन नहीं दिया जाता, सब लोग लाभ में बराबर के साझेदार हैं। महीने भर में आवश्यक व्यय के पश्चात जो कुछ बचता है उसमें से 10 रुपए प्रति सैकड़ा धर्म खाते में डाल दिया जाता है। शेष रुपए समान भागों में बांट दिए जाते हैं। पिछले महीने में 140 रुपए की आमदनी हुई थी। मुझे मिलाकर 7 आदमी हैं, 20 रुपए हिस्से पड़े। अब की नारंगियां खूब हुई हैं, मटर की फलियों, गन्ने, गोभी आदि सच्ची आमदनी हो रही है। 40 रुपए से कम ना पड़ेंगे। डॉक्टर मेहरा ने आश्चर्य से पूछा, इतने में आपका काम चल जाता है? जी हाँ, बड़ी सुगमता से। मैं इन्हीं आदमियों के से कपड़े पहनता हूं, इन्हीं का सा खाना खाता हूं और मुझे कोई दूसरा व्यसन है नहीं। यहां 20 रुपए मासिक उन औषधियों का खर्च है जो गरीबों को दी जाती है। ये रुपए संयुक्त आय से अलग कर लिए जाते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। ये साइकिल जो आप देखते हैं संयुक्त आय से ही ली गई है, जिसे जरूरत होती है इस पर सवार होता है। मुझे ये सब अधिक कार्यकुशल समझते हैं और मुझ पर पूरा विश्वास रखते हैं। बस मैं इनका मुखिया हूं, जो कुछ सलाह देता हूं उसे सब मानते हैं। कोई भी ये नहीं समझता कि मैं किसी का नौकर हूं। सब के सब अपने को साझेदार समझते हैं और जी तोड़कर मेहनत करते हैं। जहां कोई मालिक होता है और दूसरा कोई नौकर, तो उन दोनों में तुरंत द्वेष पैदा हो जाता है। मालिक चाहता है कि इससे जितना काम लेते बने लेना चाहिए, नौकर चाहता है कि मैं कम से कम काम करूं, उसमें स्नेह या सहानुभूति का नाम तक नहीं आता। दोनों यथार्थ में एक दूसरे के शत्रु होते हैं। इस प्रतिद्वंदिता का दुष्परिणाम हम और आप देख ही रहे हैं। मोटे और पतले आदमियों के पृथक पृथक दल बन गए हैं और उनमें घोर संग्राम हो रहा है। कल चिन्हों से ज्ञात होता है कि ये प्रतिद्वंदिता अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसकी जगह अब सहकारिता का आगमन होने वाला है। मैंने अन्य देशों में इस घातक संग्राम के दृश्य देखे हैं और मुझे घृणा हो गई है। सहकारिता ही हमें संकट से मुक्त कर सकती है। अच्छा, तो ये कहिए कि आप सोशलिस्ट हैं। जी नहीं, मैं सोशलिस्ट या डेमोक्रेट कुछ नहीं हूं। मैं केवल न्याय और धर्म का दीन सेवक हूं। मैं निस्वार्थ सेवा को विद्या से श्रेष्ठ समझता हूं। मैं अपनी आत्मिक और मानसिक शक्तियों को, बुद्धि सामर्थ्य को धन और वैभव का गुलाम नहीं बनाना चाहता। मुझे वर्तमान शिक्षा और सभ्यता पर विश्वास नहीं। विद्या का धर्म है आत्मिक उन्नति का फल। उदारता, त्याग, सदिच्छा, सहानुभूति, न्यायपरता और दयाशीलता, जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें धरती और धन का गुलाम बनाए, जो हमें भोग विलास में डुबाए, जो हमें दूसरों का रक्त पीकर मोटा होने का इच्छुक बनाए, वो शिक्षा नहीं है। अगर मूर्ख लोभ और मोह के पंजे में फंस जाए तो वे क्षम्य है, परंतु विद्या और सभ्यता के उपासकों की स्वार्थ अंधता अत्यंत लज्जाजनक है। हमने विद्या और बुद्धि बल की विभूति को शिखर पर चढ़ने का मार्ग बना लिया। वास्तव में वो सेवा और प्रेम का साधन था। कितनी विचित्र दशा है कि जो जितना ही बड़ा विद्वान है उतना ही बड़ा स्वार्थ सेवी है। बस हमारी सारी विद्या और बुद्धि, हमारा सारा उत्साह और अनुराग धन लिप्सा में ग्रसित है। हमारे प्रोफेसर साहब 1,000 से कम वेतन पाए तो उसका मुंह ही सीधा नहीं होता। हमारे दीवान और माल के अधिकारी लोग 2,000 मासिक पाने पर भी अपने भाग्य को रोया करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब चाहते हैं कि मरीज मरे या जिए मेरी फीस में बाधा ना पड़े, और हमारे वकील साहब क्षमा कीजिएगा ईश्वर से मनाया करते हैं कि ईर्ष्या और द्वेष का प्रकोप और सोने की दीवार खड़ी कर लूं। समय धन है, इसी वाक्य में हम ईश्वर वाक्य समझ रहे हैं। इन महान पुरुषों में से प्रत्येक व्यक्ति सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की जीविका हड़प जाते हैं और फिर भी उन्हें जाति का भक्त बनने का दावा है। वो अपने स्वजाति प्रेम का डंका बजाता फिरता है। पैदा दूसरे करें, पसीना दूसरे बहाएं, खाना और मूछों पर ताव देना इनका काम है। मैं समस्त शिक्षित समुदाय को केवल स्वार्थी ही नहीं वरन अनर्थकारी भी समझता हूं। डॉक्टर साहब ने बहुत धैर्य से काम लेकर पूछा, तो क्या आप चाहते हैं कि हम सबके सब मजूरी करें? जी नहीं, हालांकि ऐसा हो तो मनुष्य जाति का बहुत उपकार हो। मुझे जो आपत्ति है ये केवल दशाओं में इस अन्यायपूर्ण समता से है। यदि एक मजदूर 5 रुपए में अपना निर्वाह कर सकता है तो एक मानसिक काम करने वाले प्राणी के लिए इससे दुगनी तिगनी आय काफी होनी चाहिए, और वो अधिकता इसलिए कि उसे कुछ उत्तम भोजन वस्त्र तथा सुख की आवश्यकता होती है। मगर 5 और 5,000, 50 और 50,000 का अस्वाभाविक अंतर क्यों? इतना नहीं, हमारा समाज 5 और 5 लाख के अंतर का भी तिरस्कार नहीं करता, वरन उसकी भी प्रशंसा करता है। शासन प्रबंध, वकालत, चिकित्सा, चित्र रचना, शिक्षा, दलाली, व्यापार, संगीत और इसी प्रकार की सैकड़ों अन्य कलाएं शिक्षित समुदाय की जीवन वृत्ति बनी है, पर इनमें से एक भी धनोपार्जन नहीं करती। इनका आधार दूसरों की कमाई पर है। मेरी समझ में नहीं आता कि वो उद्योग धंधे जो जीवन की सामग्रियां पैदा करते हैं, जिन पर जीवन का अवलंबन है, क्यों उन पेशों से नीचे समझे जाएं जिनका काम केवल मनोरंजन या अधिक से अधिक धनोपार्जन में सहायता करना है। आज सारे वकीलों को देश निकाला हो जाए, सारे अधिकारी वर्ग लुप्त हो जाएं और सारे दलाल स्वर्ग को सिधारें, तभी संसार का काम चलता रहेगा, बल्कि और भी सरलता से। किसान भूमि जोतेंगे, जुलाहे कपड़े बुनेंगे, बढ़ई लोहार, राज चर्मकार सब के सब पूर्ववत अपना काम करते रहेंगे।
2: उनकी पंचायतें उनके झगड़ों का निपटारा करेंगी, लेकिन यदि किसान न हो तो सारा संसार क्षुधा पीड़ा से व्याकुल हो जाए। परंतु किसान के लिए 5 रुपए बहुत समझा जाता है, और वकील साहब या डॉक्टर को 5,000 भी काफी नहीं।
3: डॉक्टर, आप अर्थशास्त्र के उस महत्वपूर्ण सिद्धांत को भूले जाते हैं जिसे श्रम विभाजन कहते हैं। प्रकृति ने प्राणियों को भिन्न भिन्न शक्तियां प्रदान की हैं और उनके विकास के लिए भिन्न भिन्न दशाओं की आवश्यकता है। मैं ये कब कहता हूं कि प्रत्येक मनुष्य को मजदूरी करने पर मजबूर किया जाए? नहीं, जिसे परमात्मा ने विचार की शक्ति दी है वो शास्त्रों की विवेचना करे, जो भावुक हो वो काव्य की रचना करे, जो अन्याय से घृणा करता हो वो वकालत करे। मेरा कथन ये है कि विभिन्न कार्यों की हैसियत में इतना अंतर न रहना चाहिए। मानसिक और औद्योगिक कामों में इतना फर्क न्याय के विरुद्ध है। ये प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल ज्ञात होता है कि आवश्यक और अनिवार्य कार्यों पर अनावश्यक और अनिवार्य कार्यों की प्रधानता हो। कतिपय सज्जनों का मत है कि इस साम्य से गुणी लोगों का अनादर होगा और संसार को उनके सद्विचारों और सत्कार्यों से लाभ न पहुंच सकेगा। किंतु वे भूल जाते हैं कि संसार के बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े कवि, बड़े से बड़े आविष्कारक, बड़े से बड़े शिक्षक धन और प्रभुता के लोभ शिक्षक बन जाते हैं। संसार में आज अनगिनत लेखक और कवि, वकील और शिक्षक उपस्थित हैं। वे सब के सब पृथ्वी पर भार रूप हो रही हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि इन दिव्य कलाओं में कुछ लाभ नहीं है तो वही लोग कवि होंगे जिन्हें कवि होना चाहिए। संक्षेप में कहना यही है कि धन की प्रधानता ने हमारे समस्त समाज को उलट पलट दिया है।
2: डॉक्टर मेहरा अधीर हो गए और बोले, महाशय, समाज संगठन का ही रूप देवलोक के लिए चाहे उपयुक्त हो, पर भौतिक संसार के लिए उस भौतिक काल में वो कदापि उपयोगी नहीं हो सकता। प्रेमशंकर जी ने फिर जवाब दिया, केवल इसी कारण से अभी तक धनवानों का, जमींदारों का और शिक्षित समुदाय का प्रभुत्व बना हुआ है वकील साहब। पर इसके पहले भी कई बार इस प्रभुत्व को धक्का लग चुका है और चिन्हों से ज्ञात होता है कि निकट भविष्य में फिर इसकी पराजय होने वाली है। कदाचित वो हार निर्णयात्मक होगी। समाज का चक्र साम्य से आरंभ होकर फिर साम्य पर ही समाप्त होता है। एकाधिपत्य, रईसों का प्रभुत्व और वाणिज्य प्राबल्य उसकी मध्यवर्ती दशाएं हैं। वर्तमान चक्र ने मध्यवर्ती दशाओं को भोग लिया है और वो अपने अंतिम स्थान के निकट आता जाता है, किंतु हमारी आंखें अधिकार और प्रभुत्व के मद में ऐसी भरी हुई हैं कि हमें आगे पीछे कुछ नहीं सूझता। चारों ओर से जनतावाद का घोर नाद हमारे कानों में आ रहा है, पर हम ऐसे निश्चिंत हैं मानो वो साधारण मेघ की गरज है। हम अभी तक उन्हीं विद्याओं और कलाओं में लीन हैं जिनका आश्रय दूसरों की मेहनत है। हमारे विद्यालयों की संख्या बढ़ती जाती है, हमारे वकील खाने में पांव रखने की जगह बाकी नहीं। गली गली फोटो स्टूडियो खुल रहे हैं। डॉक्टरों की संख्या मरीजों से भी अधिक हो गई है, पर अब भी हमारी आंखें नहीं खुलती। हम इस अस्वाभाविक जीवन, इस सभ्यता के तिलिस्म से बाहर निकलने की चेष्टा ही नहीं करते। हम शहरों में कारखाने खोलते फिरते हैं इसलिए कि मजदूरों की मेहनत से मोटे हो जाएं। 30 रुपए और 40 रुपए सैकड़े लाभ की कल्पना करके फूले नहीं समाते, पर ऐसा कहीं देखने में नहीं आता कि किसी शिक्षित सज्जन ने कपड़ा बुनना या जमीन जोतना शुरू किया हो। यदि कोई दुर्भाग्यवश ऐसा करे तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। हम उसी को मन प्रतिष्ठा के योग्य समझते हैं जो तकिया गद्दी लगाए बैठा रहे, हाथ पैर ना हिलाए और लेन देन पर, सूद बट्टे पर लाखों के वारे न्यारे करता हो। यही बातें हो रही थी कि दुर्गा माली एक डाली नारंगियां, गोभी के फूल, अमरूद, मटर की फलियां आदि सजाकर लाया और उसे डॉक्टर साहब के सामने रख दिया। उसके चेहरे पर एक प्रकार का गर्व था, मानो उसकी आत्मा जागृत हो गई है। वो डॉक्टर साहब के समीप एक मोटे मोढ़े पर बैठ गए और बोला, हुजूर को कैसी कलम चाहिए? आप बाबूजी को एक चिट पर उनके नाम लिखकर दे दीजिए, मैं कल आपके मकान पर पहुंचा दूंगा। आपके बाल बच्चे तो अच्छी तरह हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ सकुचाकर कहा, हाँ, लड़के अच्छी तरह हैं। तुम यहां अच्छी तरह हो? जी हाँ, आपकी दया से बहुत आराम में हूं। डॉक्टर साहब उठकर चले तो प्रेमशंकर उन्हें विदा करने साथ साथ फाटक तक आए। डॉक्टर साहब मोटर पर बैठे तो मुस्कुराकर प्रेमशंकर से बोले, मैं आपके सिद्धांतों का कायल नहीं हुआ, पर इसमें संदेह नहीं कि आपने एक पशु को मनुष्य बना दिया। यह आपके सत्संग का फल है, लेकिन क्षमा कीजिएगा, मैं फिर भी कहूंगा कि इससे होशियार रहिएगा। यूजेनिक्स यानी सुप्रजनन शास्त्र अभी तक ऐसे किसी प्रयोग का आविष्कार नहीं कर सका है जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे।
0: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य। अपने अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
4: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
5: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।
6: नमस्कार। 90.8 MHz पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
7: अतुल्य भारत।
6: श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
8: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, घाटों की नगरी वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी, एक धार्मिक स्थल वाराणसी। वाराणसी है ही ऐसा, इसे जितना जाना जाए उतना कम है। इसलिए आज हम आपको परिचित करा रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ खास खास साहित्यकारों से।
6: श्रोताओं, साहित्य विद्या की ही एक शाखा है और विद्या की देवी है सरस्वती।
8: बिल्कुल,
6: बिना सरस्वती की कृपा के साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। ये कृपा व्यक्ति पर भी होती है और स्थान पर भी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर साहित्य की फसल खूब लहलहाती है।
8: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा।
6: हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सरस्वती की कृपा का सिंचन कुछ अधिक ही होता है।
8: जी, वाराणसी के संदर्भ में बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रयाग में सरस्वती आज भले ही अदृश्य हो गई हो, पर उसकी धारा गंगा में जरूर मिलती है और बहती हुई वाराणसी तक पहुंचती है और शायद यहाँ आकर खाली भी हो जाती है।
6: श्रोताओं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की। माँ सरस्वती की कृपा से वाराणसी में साहित्य की जो अक्षय खदान खुदी हुई है, उसके एक चमचमाते रत्न हैं कबीरदास जी। भारत में तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम न सुना हो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको पसंद है वे। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले ये निर्गुण संत वाराणसी से लगे लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे के घर में पले बढ़े।
8: पर शायद ईश्वर से योग की प्यास पिछले जन्मों से ही लिखा कर लाए थे वे, सो बालपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े। किसी ने कहा रामानंद से बढ़कर कोई गुरु नहीं, पर वे जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। बस फिर क्या था, कबीर तो कबीर थे और कबीर के नाम का अर्थ होता है महान।
6: पता चला कि बाबा रामानंद जी मुंह अंधेरे ही गंगा स्नान को आते हैं। फिर क्या था, कबीर जी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में बाबा को दिखा नहीं तो उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ गया। बाबा चौंक उठे, ये क्या, ये तो कोई मानव तन है। एकदम से पीछे हटे और बोले, राम राम बोल बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
8: बस फिर क्या था, कबीर बोले, अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। कहते हुए कबीर ने उनके पांव पकड़ लिए। श्रोताओं, आपने कबीर को थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि निर्गुण संत होने के बावजूद कबीर की रचनाओं में राम का नाम बार बार आया है। चलिए उनकी कुछ चौपाइयां हम आपके ध्यान में लाते हैं।
6: कबीरा कोता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेहणी, जित खींचे तित जाऊं, दुल्हिन गावहु मंगल चार, तोरे घर आए राजा राम भरतार। और इसी तरह एक और चौपाई है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश।
8: श्रोताओं, कबीर वे रामानंद के संबंध में एक मुहावरा सामने आता है, गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शकर बन गया। एक घटना हम आपको बताते हैं।
6: एक बार की बात है, रामानंद जी मंदिर में राम जी की पूजा कर रहे हैं। बाहर कबीर और उनके दूसरे शिष्य बैठे हैं। रामानंद जी राम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मुकुट पहना दिए तो ध्यान आया कि माला पहनाना तो भूल ही गए। माला छोटी थी, मुकुट के ऊपर से पहनाई नहीं जा सकती थी, पर मुकुट उतारना निषिद्ध था। गुरु क्या करें, चिंतित हो उठे वे।
8: बस फिर क्या था, बाहर बैठे कबीर निर्गुण के ध्यान में डूबे हुए थे और आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। सहसा बोल उठे, गुरुजी माला का गांठ खोल करके पहना दीजिए राम जी को और फिर दोबारा गांठ लगा दीजिए।
6: ये सुनते ही रामानंद जी सन्न रह गए। उन्होंने बाहर आते ही कबीर जी को गले से लगा लिया। आखिरकार ये सिद्ध हो चुका था कि निर्गुण और सगुण इनमें कोई भेद नहीं।
8: बिल्कुल,
6: तभी तो कुछ लोग कबीर जी की भक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं।
8: हाँ, वे समझ ही नहीं पाते कि जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके प्रति कबीर का इतना अनुराग कैसे? कैसे वे उनके वियोग के बावले हो जाते हैं? कैसे वे कहते हैं कि गोविंदा गुनगाइए? कैसे वे कहते हैं कि हरि जननी मैं बाकुल तेरा? जब हरि निर्गुण है तो उसके गुण कैसे गाए जा सकते हैं? जब उसका कोई शरीर ही नहीं है तो वे माता कैसे हो गया?
6: ये सब हृदयहीन बौद्धिक व्याख्याएं हैं। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं बल्कि गुणातीत है। उसमें गुणों की कमी नहीं, परंतु उसे गुणों में बांधा भी नहीं जा सकता। अगर सगुण से कबीर जी का इतना ही बैर होता तो रामानंद जी जैसे एक सगुण उपासक को वे अपना गुरु कैसे बनाते?
9: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर आप सुन रहे हैं अतुल्य भारत, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी के कुछ खास साहित्यकारों की, और इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास की। कबीरदास के संदर्भ में निर्गुण सगुण की जो चर्चा चली उसे पूर्ण विराम दिया तुलसीदास ने। उन्होंने साफ कह दिया कि निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा।
6: तुलसीदास जी का रिश्ता वाराणसी से बहुत गहरा रहा है। उनका जन्म वैसे तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, पर उनकी कर्मभूमि वाराणसी ही थी। जन्म का नाम था रामबोला और उनके गुरु थे नरहरिदास।
8: जी हाँ, नरहरिदास रामानंद के शिष्य परंपरा में थे। वहीं रामानंद जो कबीर के गुरु थे, अनाथ रामबोला को उन्होंने ही अपनाया और तुलसीदास नाम दिया, और उन्होंने अयोध्या में उन्हें आरंभिक शिक्षा भी दी। पर उच्च शिक्षा के लिए वे अपने इस होनहार शिष्य को वाराणसी भेजना चाहते थे।
6: श्रोताओं, इससे आप तो समझ ही सकते हैं कि वाराणसी उस समय शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था।
8: बिल्कुल।
6: हाँ, तो वाराणसी में नरहरिदास के एक मित्र थे, शेष सनातन। नरहरिदास ने तुलसीदास जी को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हीं के पास भेज दिया। शेष सनातन महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, चारों वेद, छह वेदांग और छह दर्शनों की शिक्षा पाई।
8: 15-16 सालों की पढ़ाई के बाद तुलसीदास अब पुराने तुलसीदास नहीं रहे। वे प्रकांड विद्वान बन चुके थे और उनका श्रेय जाता है भोलेनाथ की इस नगरी को। इसके पास वे वापस लौट आए, पर अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वाराणसी लौटे।
6: इस बार की उपलब्धि विद्या नहीं बल्कि भक्ति थी। आज जहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उसी स्थान पर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और वो भी एक प्रेत की कृपा से। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे। इस पेड़ के भीतर एक प्रेत रहा करता था, तो प्रसन्न होकर उसने ही तुलसीदास जी को वो विधि बताई कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे।
8: लेकिन तुलसीदास की इच्छा तो राम से मिलने की थी, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि राम जी के दर्शन तो उन्हें चित्रकूट में होंगे। यह एक लंबी कहानी है, अतः विषांतर से बचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।
6: गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। वही वाल्मीकि जी जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। लेकिन लगता है कि बाद में जब संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं रही, तब वाल्मीकि जी ने ही हिंदी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में फिर से जन्म लिया।
8: खैर, इस नए रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अयोध्या की ही बोली अवधि में की। वैसे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और चाहते तो संस्कृत में राम कथा लिख करके विद्वानों की वाहवाही लूट सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो राम की कथा जनता को सुनाना था, सो उन्होंने जनता की ही भाषा चुनी।
6: रामचरितमानस के आरंभ और अंत की तिथियां भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई थी। आपने सुना है कि तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे, तो इस ग्रंथ की रचना मंगलवार के दिन रामनवमी को शुरू की गई, ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में जिसमें राम जी का जन्म हुआ था।
8: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका समापन विवाह पंचमी पर हुआ। यह वह तिथि थी जब राम व जानकी का विवाह हुआ था।
6: अब गोस्वामी तुलसीदास जी की मंजिल एक बार फिर वाराणसी थी। उन्हें अपनी रचना शिव पार्वती जी को सुनानी जो थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। लेकिन वाराणसी के ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके एक लोक भाषा अवधि में की थी।
8: वहां के पंडितों का दावा था कि ईश्वर की कृपा सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को ही मिलती है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे अवधि में रचित रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रख करके बाहर से ताला लगा दिया।
6: और श्रोताओं, सुबह जब ताला खोलकर देखा गया तो पाया गया कि रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था और उसके नीचे शिव जी के हस्ताक्षर थे। यहाँ तक कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष भी सुना। शिव जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर अपनी मोहर लगा दी थी।
8: खैर, ये तो कुछ किंवदंतियां हैं। अपने जीवन का अंतिम समय तुलसीदास ने वाराणसी में ही बिताया, पर दार्शनिक तथ्य इसमें यह है कि वे अपने जीवन का अंत वाराणसी में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। असी घाट पर उन्होंने देह त्यागा। इस संबंध में भी एक रोचक कथा मिलती है।
6: जब गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के असी घाट पर निवास कर रहे थे, तो जीवन की संध्या बेला में कलयुग ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अपनी अर्जी राम जी के दरबार में लगाएं। ये अर्जी ही उनकी विनय पत्रिका है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।
8: श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका वाराणसी के असी घाट पर ही रची गई थी। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और यह उनकी अंतिम कृति थी। उत्कृष्टता के विद्वान रामचरितमानस के बाद उन्होंने विनय पत्रिका को ही लिखा था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
6: श्रोताओं, 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अतुल्य भारत, और अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। वाराणसी से संबंधित आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात करें तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है।
8: बिल्कुल,
6: उन्हें आधुनिक हिंदी का आदि पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी की नींव डालने वालों में वे प्रमुख थे।
9: श्रोताओं, आपको बता दें कि हिंदी की अनेक बोलियों में एक बोली का नाम है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं। कोरवी इसलिए क्योंकि इसका जन्म कुरुक्षेत्र के इलाके में हुआ। वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ, वही कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
6: तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जब विकास हो रहा था, तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए, जैसे अवध में अवधी, ब्रजभूमि में ब्रज, हमारे मालवा क्षेत्र में मालवी, कुरुक्षेत्र में कौरवी। श्रोताओं, ये लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें लगभग 19 बोलियां आती हैं। लेकिन इन 19 बोलियों में से साहित्य में ज्यादातर प्रयुक्त हुए अवध और ब्रज।
9: और वजह यह थी कि शुरुआती रचनाएं ज्यादातर भक्ति परक थी। राम के भक्तों ने अवधि व कृष्ण के भक्तों ने ब्रज का प्रयोग किया। आगे चलकर रीतिकाल में अवधि का जन्म भी ब्रज ने ही ले लिया, क्योंकि बिहारी धनानंद जैसे कवि श्रृंगार रचनाओं के लिए ब्रज ज्यादा उपयुक्त थी।
6: इस भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने की पुरानी परिपाटी जो थी,
9: बिल्कुल,
6: जबकि अवधि में राम जानकी के अनुराग का वर्णन अत्यंत मर्यादा के साथ किया गया है। प्रसंगवश तुलसीदास जी की कविता यहाँ पर याद आती है।
9: कौन सी कविता?
6: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, ताते सबे सुध भूल गई, करटे की रही पलटारत नाही।
9: वाह,
6: ये प्रसंग उस समय का है जब राम जानकी जी का विवाह हो रहा था। माता जानकी भगवान श्री राम को देखना चाहती हैं, पर देखें कैसे, लोकलाज और मर्यादा की दीवार जो सामने है। तो उन्होंने अपने कंगन में लगे नग में राम जी की छवि देखी,
9: लेकिन हाथ हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो राम की छवि हट जाएगी। पलकें भी नहीं झपका सकती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए राम पलकों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए वे अपना हाथ स्थिर कर लेती हैं और पलकें नहीं गिराती।
6: धन्य धन्य है गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने मर्यादा के साथ इतनी सुंदर श्रृंगारिक रचना की। श्रृंगार का मर्यादित रूप भी कितना सुंदर हो सकता है,
9: बिल्कुल,
6: ये आज के कलाकारों को इनसे सीखने की जरूरत है।
9: जी हाँ, खैर, जब बाहर तेंदु का अवतरण इस दुनिया में हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था, लेकिन भारतेंदु महसूस कर रहे थे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए यह भाषा उपयुक्त नहीं है, इसके लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त है। सो उन्होंने विशेषकर गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को आगे बढ़ाया।
6: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार मात्र ही नहीं थे, बल्कि साहित्यकारों की पूरी मंडली रखते थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया।
9: सन 1850 में जन्मे भारतेंदु बचपन से ही पैसे को पैसा नहीं समझते थे। खूब संपदा विरासत में मिली थी तो दीपक में तेल की जगह वे इत्र जलाया करते थे। पूछा जाता तो कहते कि इस धन ने मेरे पुरखों को जलाया है, अब मैं इसे जला रहा हूं। लेकिन उनका यही स्वभाव, हिंदी साहित्य की फसल सींच गया।
6: उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके साहित्यकारों को उसी तरह आश्रय दिया जिस तरह कभी राजे महाराजे किया करते थे। आज हिंदी में जितनी भी विधाएं हम देखते हैं, उनमें से अधिकतर की नींव उन्होंने ही डाली। नाटक, निबंध, पत्रकारिता, कविता, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। खास करके नाटकों के विकास के लिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमेशा याद रखा जाएगा।
9: जी हाँ, श्रोताओं, आप जानते हैं कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए लिखे जाते हैं, और इन्हें खेलने के लिए रंगमंच की भी जरूरत होती है। लेकिन भारतेंदु के समय में हिंदी में रंगमंच ना के बराबर थे, सो भारतेंदु ने ना केवल नाटक लिखे बल्कि उन्हें खेलने के लिए मंचों की भी स्थापना की। वे अच्छे अभिनेता व निर्देशक भी थे, सो वे अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करते थे और निर्देशन भी करते थे।
6: श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता की नींव भी भारतेंदु जी ने ही डाली थी। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार समझना उनके प्रति अन्याय होगा। हम तो कह सकते हैं कि वे पूरा एक युग थे, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका काल भारतेंदु काल कहलाता है।
8: हाँ, एक साहित्यकार के होने के साथ साथ भारतेंदु एक राष्ट्रभक्त भी थे। उन्हें अंग्रेजों के शोषण से बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, खास करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील दर्पण में तो उस काल का पूरा भारत ही देखा जा सकता है।
6: राष्ट्रभाषा की अवधारणा संभवतः सबसे पहले उन्होंने ही दी। अपनी भाषा को हेय मानकर विदेशी भाषा के पीछे भागने की प्रवृत्ति से उन्हें दुख पहुंचता था, इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। अर्थात जो समाज अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाता, उसकी स्वयं की उन्नति भी नहीं हो पाती।
8: वाराणसी में स्थित काशी नगरी प्राचीरणी सभा आज हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी ही रोचक है।
6: सन 1893 की बात है। वाराणसी के क्विंस कॉलेज में नवी कक्षा के 3 छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह देख रहे थे कि अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल तो लोग बड़े फक्र के साथ करते हैं, परंतु हिंदी का इस्तेमाल करने में खुद को हेय समझते हैं।
8: हाँ, सो हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना अपने छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। इसकी बैठक वाराणसी के घुड़साल में होती थी। इसकी खुद की इमारत तो बाद में जाकर के बनी है।
6: इस सभा ने हिंदी की जो सेवा की, उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी थी। संयोग से मदन मोहन मालवीय भी तब तक इस सभा से जुड़ चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू के साथ ही हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया।
8: हिंदी की तितर बितर पांडुलिपियों को ढूंढकर प्रकाशित करने का जो काम नागरी सभा ने किया, उसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है हमारे लिए। इसके संग्रहालय में आज हिंदी भाषा की लगभग 15,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं।
6: और आलम ये है कि अगर आप हिंदी विषय में शोध कर रहे हैं तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की लाइब्रेरी में जाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला।
10: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
8: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है अतुल्य भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ महान साहित्यकारों के बारे में। और इसी कड़ी में अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। साल 1885 हिंदी के लिए एक दुखद साल था। मात्र 34 साल की उम्र में भारतेंदु दुनिया छोड़कर के चले गए, लेकिन इसके 5 साल बाद ही वाराणसी के ही सुगनी साहू के घर में मानो उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। इस बार उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार भगवान ने उन्हें एक साधारण घर में पैदा किया था। पिछले जन्म में तो उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया था, शायद इसीलिए उन्हें इस बार एक गरीब घर में जन्म लेना पड़ा।
6: अभी 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे प्रसाद कि पिता चल बसे। अब दुकान भी संभालनी थी, पढ़ाई छूट गई, पर साहित्य की ललक मन में थी। घर में रहकर पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन खुद साहित्यकारों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। आज हालत यह है कि 8वीं दर्जा पास प्रसाद की रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और उनकी एक एक कविता पर लोग PhD कर रहे हैं।
8: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिंदी नाटकों की बात करें तो पहला युग यदि भारतेंदु युग है तो दूसरा युग प्रसाद युग है।
6: बिल्कुल ठीक,
8: बात साफ है। भारतेंदु के ही समान प्रसाद भी युग पुरुष थे, खास करके नाटक व कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी नहीं था।
6: भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही तरह प्रसाद जी में भी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी ये राष्ट्रभक्ति ही उनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलती है।
8: जिस जमाने में अंग्रेज भारत के पढ़े लिखे लोगों को यह घुट्टी पिला रहे थे कि भारत तो शुरू से ही दीनहीन पिछड़ा व दरिद्र रहा है और ये अंग्रेज ही हैं जो इस देश की तरक्की कर रहे हैं, तो उस जमाने में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से यह दिखाया कि नहीं, प्राचीन काल से ही भारत एक महान एवं ओजस्वी देश है।
6: उन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा परोसा गया ये इतिहास नहीं माना कि सिकंदर ने भारत को हराया था। अपने चंद्रगुप्त नाम के नाटक में उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर इसलिए भारत के किनारे से ही लौट गया क्योंकि वो भारत की शक्ति को जान गया था।
8: बिल्कुल ठीक। और इसी नाटक में प्रसाद ने वह प्रसिद्ध गीत भी लिखा है जो आजादी की लड़ाई के लिए भारतीय लोगों का उद्बोधन गीत बन गया था। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं।
6: हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती,

0: इसकी अनेक पंक्तियाँ जीवन के अंधेरे पलों में राह दिखाती हैं।
1: इनमें से कुछ पंक्तियाँ हम आपको सुनाते हैं।
0: जी।
1: प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद ने ये बताया कि विनाश से ही सृजन होता है। जब फूल बासी हो जाते हैं तो वे झर जाते हैं और फिर नए फूल एक बार फिर से निकलते हैं।
0: मैं रीति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। लज्जा सर की इन पंक्तियों में महाकवि का संदेश है कि लज्जा नारियों में शालीनता उत्पन्न करती है और उन्हें अनेक परेशानियों से बचाती है।
1: इसी सर्ग में वो विश्व प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भी है जिसे अपने निबंधों में लिखते हुए हम बड़े हुए हैं, जिसका उपयोग वक्ता सभा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए करते हैं। तो लीजिए, आप पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए हम भी इसे आपको सुना देते हैं।
0: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
1: एक जमाने में संस्कृत भाषा में लिखा गया था कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसके बाद प्रसाद जी ने ये पंक्तियां लिखकर समाज में स्त्रियों का महत्व बताया। अब कुछ बातें कामायनी के मूल संदेश की भी कर लेते हैं श्रोताओं।
0: बिल्कुल।
1: इस काव्य में महाकवि का संदेश है समरसता, संतुलन और समन्वय। मध्यम मार्ग की वकालत की गई है इसमें। अति से बचो, अति भोग से बचो, नहीं तो प्रकृति के कहर से बच नहीं पाओगे, ऐसा बताया गया है इसमें। आज जबकि हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया प्रकृति बार बार कर रही है, तो इन संदेशों को ग्रहण करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें।
0: श्रोताओं, अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सोचते हम यह रहे थे कि इस कार्यक्रम में वाराणसी के अधिक से अधिक साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको दे दें, लेकिन क्या करें, कबीर, तुलसी, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जैसे युग पुरुषों पर चंद बातें करते करते हम भावनाओं में बह गए। अतः शेष बचे लोगों के लिए कुछ एक के बारे में कुछ खास बातें बताकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं।
1: श्रोताओं, एक जमाने में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता कार्यक्रम आपको याद होगा। ये कार्यक्रम चंद्रकांता नामक जिस उपन्यास पर आधारित था, उसके लेखक देवनंदन खत्री वाराणसी के ही निवासी थे और उन्हें हिंदी में मिस्ट्री नॉवेल्स का जन्मदाता कहा जाता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राधा कृष्ण दास, मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी साहित्यकारों ने ही वाराणसी शहर को इज्जत बख्शी है।
1: श्रोताओं, चलिए मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास का पूरा एक काल ही प्रेमचंद काल कहलाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 1930 के दशक में लिखा गया ये उपन्यास भारत के गांवों की इतनी संपूर्ण तस्वीर खींचता है कि इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तक कहा गया है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसके रूसी रूपांतरण पर तो रशिया का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार तक मिल चुका है। एक किसान होरी की कहानी है इसमें, जिसके जीवन काल की केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि घर के आंगन में एक गाय हो।
1: उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी होती भी है और नहीं भी। वो कर्जदार हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। भारत के किसान की बेबसी और लाचारी अगर आपको देखनी हो तो गोदान उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। होरी जब मरता है तो ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी कुछ दरक गया।
0: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज का विषय था वाराणसी से जुड़े हुए कुछ साहित्यकारों के बारे में चर्चा। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
1: और कंचन राजानी के।
0: अब हमें आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दो प्रस्तुतियां। पहले रागिनी गायन राजेश दलाल और उनके साथियों के स्वरों में, और उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे आल्हा गायन। पहले रागिनी गायन।
2: बहुत ही आदर और सम्माननीय सबको हमारा प्रणाम है, राम राम है। तो रागिनी गायन, जिंदा रहने का हुनर उसने सिखाया होगा, जिंदा रहने का हुनर उसने सिखाया होगा, तेज आंधी में दिया जिसने जलाया होगा। तो मील का पत्थर बनगी प्यारे, मील का पत्थर बनगी प्यारे, इसकी आत्मनिर्भरता गिने देना मैं यू हरियाणा, होता जाओ कैसे क्या, और देख पड़ोसी कहने लगे वाह भाई वाह वाह वाह वाह, ओ बल्ले ओ मेरे यारा से मारा हरियाणा, सारी दुनिया तन्यारा से मारा हरियाणा, यू किसा से मारा हरियाणा। सुनिए इस रागिनी में।

बॉर्डर के उधर होकर गिलिया बॉर्डर के उधर जवान तने हरियाणे के खेला में मेडल ल्यावे ना जावे गिने हरियाणे के पढ़े लिखे ये सखर चढ़े से बड़े जने हरियाणे के पर बॉलीवुड में चले जठोरे देख अपने हरियाणे के।

हमारी रिवाज है कि बच्चा होता है तब उसकी छठी मनाई जाती है, और उसके पीछे एक ये मान्यता है कि उस दिन वो बेमाता उसके भाग उसके लेख उसका भविष्य लिखने के लिए आती है। कहते हैं कि वह बेमाता आई और पूछने लगी उसकी माँ से, अब बता तेरी संतान के भाग्य में क्या लिख दूं। माता हाथ जोड़ के खड़ी होगी, बोली जी आप कौन? बोला मैं बेमाता हूं। बोले हाँ फिर तो आप जो लिखोगे वो पार जागा। हाँ बोला बोल मां क्या लिख दूं। बोला जी ये लिख दो, अग मेरी औलाद ले के दे देर करके खा ले, ले के दे दे और करके खा ले, उस पे कौन जबर होश है। हमारे हरियाणा का एक मुहारा है बहुत जिंदा, लेके दे दे करके खा ले उस पे कौन जबर होश है, और नुगरा मानस आंख बदल जा तो समझदार की उम्र होश है। सबसे बड़ा मान सम्मान हमारे इस बात में है कि हम कर्मठ हैं, अपना पसीना निचोड़ के अपनी जमीन को सींचते हैं, अपना किया हुआ खाते हैं, बेराना के नन नहीं लगा, दूसरे के लोभ नहीं तकते, दूसरे की धन माया पर लाल टपकाना हरियाणा का कर्म धर्म नहीं है। आखिर में क्या बताया, कितनी मेहनत से आया है ये शिखर में हरियाणा, सुनिए।

पागल खाए से हमने खूब कमाए नुगात खपाए और फर्ज पुगाए से हमने गोरे राज के ताज उछाड़े पढ़ने बिठाए से हमने गुड़ की डली था और घड़वे बजा के

पेदा करके खाला ये भाग लिखाए से हमने, खूब कमाए गात खपाए फर्ज पुगाए से हमने, और गोरे राज के ताज उछाड़े पढ़ने बैठाए से हमने, गोरे राज के ताज उछाड़े इतिहास बनाए से हमने, और गुड़ की डली खा गढ़वे बजा के उधार का स्वर्ग नहीं सजाया हमने, जो हमारा घरा था उस समय मस्त रहे। अरे गुड़ की डली खा गढ़वे बजा मनाए हमने, गुड़ की डली खा गढ़वे बजा के त्योहार मनाए से हमने। राजेश दलाल तू रहे आपे में, राजेश दलाल रहे

और प्रस्तुति का मेरे लिए। दोस्तों कहते कि जहां जहां शहीदों की रूह उकेरी जाती है, जहां जहां शहीदों की रूह उकेरी जाएगी वहां वहां बिना अगरबत्ती भी महक आएगी। तो शहीदों के शहीद शहीद आजम भगत सिंह की रूह उकेरने का एक किस्सा, एक वाक्य आपके सामने रखना चाहूंगा कि 24 तारीख 1931 उनकी फांसी का दिन धरा, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतना हड़बड़ा गया कि एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को वे तीनों सुखदेव भगत सिंह राजगुरु फांसी पे चढ़ा दिए। और केवल चढ़ाए ही नहीं, बिल्कुल निर्मम हत्या भी की उनकी, इतिहास बताता है। और सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए, जो उनके साथी बाहर थे वो नदियों के मां गला दिए। लकड़ी की जगह पर कोला था, मिट्टी के तेल में घोला था, जो अगर तगर भी बोला था वो मित्र प्यारे जला दिए। और सतलुज नदी के किनारे पर जब वो जलाए तो ये दुखदाई नजारा देख के कुदरत भी आंसू गिरने लगी और वृक्ष भी अपने पत्ते

उसकी एक आंख से आंसू थम नहीं रहा था और गुस्से में एक आंख से आंसू निकल नहीं रहा था। वो क्या कहता है, रुक के मार मार के उसका अखबार बेचना, उसका संताप अखबार बेचने के अपने लालच से 100 कोस दूर था। वो क्या कहता गलियों में फिर रहा है, सुनिए एक रचना आपके सामने, शहीदों के खून से रंगी हुई, सुनिए।

फिर के करया और फांसी ना करे वे तो काटे डांगर ढोर से और फिर गाड़ी में भर के बोरिया मल्ला दला टोकरिया मल्ला दला गाड़ी में डाल के और लाहौर की सेंट्रल जेल से अंतिम यात्रा वहां से निकाली जहां से जेल का मल मूत्र ढोया जाता था उधर से गाड़ी गई। फिर वो हलचल मची थी जब ये फांसी पचड़ इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और उनके जवाब में कैदियों ने पूरी जेल को हिला दिया था तो ये बाहर तक गई गूंज। तो भगत सिंह की बहन अमर कौर भगत सिंह का सारा परिवार वहां पे था बोली माँ के मन के मैं होली आशा है और कदे ना इब्बत तोड़ दियो हूं फांसी। बोला ना बेटा अंग्रेज कानून के पक्के हैं तड़के ही तोड़े अगर इन ना तोड़े। बोला ना ना ना देख गाड़ी जाती भी देखी है क्या नजर हाजली बार।

टुकड़े कर दिए बोरे भर दिए लथ पथ मास पासली हाडी मल मूत्र जा हजी सर रस्ते से कुसे गेट ते काटी काटी कैदी चंगाड़े और हो गे खाड़े बाहर भी होकार ठाटी कैदी चंगाड़े

कर दिए बोरे भर दिए लथपथ मांस पासली हड्डी मल मूत्र जा जिस रस्ते से उसे गेट पे गाड़ी गाड़ी कैदी चंगाड़े हो गए रखाड़े बाहर भी होकार ठाडी फिर सरकारी गुर्गे वे डरगे रम मरगे चलो बचा लो जान जा फिरोजपुर हुसैनी वाला गड मट गेरे मूल्यवान रे आओ लाल मेरी गोदी में वा सतलुज रोई बे अनुमान सतलुज में गेर दिए वे आधे भून भान के वे आधे जलाए आधे बगाए अंधेर कुकाए मोर से सुन लो जी गौर से पढ़ लो जी गौर से गाड़ी गई उधर से वो कार्रवाई रच दी उन जालिमों ने तो भगत सिंह की बहन अमर कौर और उनके साथी जयदेव गुप्ता गाड़ी जाली है कुछ हो लिया है जिसका जो साधन था उधर गाड़ी का पीछा करने के लिए भाग लिए अंधेरे में और वो मांस के टुकड़े किते किते पाए गाड़ी वाले तो भाज के कर आ गए और वो खून की मिट्टी जहां पाई वही विरासत समझ के अपने सीने से लगा ली और फिर अपने ढंग से उनका अंतिम संस्कार करने के लिए रावी तट पे चल पड़ता है काफिला।

भी नेहरू जी भी चक्कर खा गए ए देख के मारा ए दुख की आंधी दिल्ली के स्टेशन पर ए सुबह के रोवे।

पर ले छिड़की हो फिर सा आदत की पर ले छिड़की बदले बूढ़े के जोर।

पांच कर लिया है, क्या होया? फिर उनकी शहादत की परले छिड़की, हिंदुस्तान में इतनी उथल पुथल माच गई, वे मार दिए रहे, तीनों जने मार दिए रहे हिंद के लाल। तो गांधी, नेहरू और मालवीय जी दिल्ली के स्टेशन पे थे, उनमें खबर पहुंची तो वे भी सदमा खा गए। और भगत सिंह के गांव बंगा से खून से लिखी चिट्ठी आई, अपने लाल का एनडी बदला लेके दिखावांगे पूरे हिंदुस्तान में, इसके विरोध में क्या क्या हलचल होने लगी, के तूफान माचा। सुनिए, धरती।

अरे जी कर जनू मर जाऊ मैं टक्कर मार सरकार में पड़ जासे जी चल जासे जब देखू सु अखबार में पैसे ना होते ले जाओ ना मांगू आज

याद करे जा रहे हैं लास्ट कली जी बस वेत अर्पित सबरी समर्पित करके अरे अर्पित सबरी समर्पित करके सच्चे संत पर

के बैर दूर पका के इसीलिए मारे नेता है जगा के क्या सीख रहा उसे अरे भगत सिंह से सीखना है के अरे भगत सिंह से सीखना है के भगत बनेंगे सी बनेंगे राज का गुरु कहाँ छिपा है ढूंढेंगे और चाल गिनेंगे सुख देवन कोई देव ना आवे और अपने मोर्चे आप तनेंगे सुख देवन कोई देव ना आवे अपने मोर्चे आप तने राजेश दलाल तू काई सरदार हो राजेश दलाल तू काई सरदार के अल्लाह बोल जा जोर से

0: जाए।
1: क्या विचार किया कि उदल को मरवा के राजा परमाल का खजाना लुटवा करके चैन लूंगा। यही विचार करके माहिल प्रस्थान कर देते हैं महोबा की ओर। और जब महोबा पहुंचे तब राजा परमाल से कहते हैं, महाराज सुनो, नीके घोड़ा ना।

ने जवाब दिया और कहा, तुम्हारी मति मारी गई है, मैं रंग महल को प्रस्थान नहीं करूंगी। जवाब दिया वो दल ने मालिन से कहा कि सुनो, हार गूंथ दूं।

आभास लेने के लिए मालन वहां से प्रस्थान कर देती है और इधर उदल क्या कर रहे हैं। रानी फुलवा के लिए हार गूथ रहे हैं, कैसे हार

0: समझाए।
1: उदल ने कहा मालन से भौजी सुनो, हार गूथी डलिया माँ धर दिया, तुम फुलवा कर दियो पहिराए, लेके डलिया मालिन चली भे मबना राख्यो देर
0: लगाए।
1: और जब महल में पहुंची फुलवा को हार पिन्हाया, तब क्या हुआ सजनों, ध्यान दीजिएगा।

0: सज्जनों आज उदल ने जवाब दिया फुलवा से, कहा कि सुनो धीरज रखो, हमारे यहाँ महोबा में राजा परमाल है, चंद्रावली बेटी राजा के हर बैठे संग हुआ पर जाए, ऊंच नीच का हम ना जाने, तुम का साच रहिन बतलाए। आज उदल जो महोबा का योद्धा है, रानी फुलवा से मिलने के लिए अपनी नाक तक छिदवा डाली। और उधर सज्जनों जब एक बार किसी से गलती हो जाती है तब दोबारा सुधार हो जाता है। तभी तो कहते हैं इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही मंदिरों में पूजा करने नहीं जाते क्योंकि आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है।
1: क्या बात है।
0: आज की शाम आपको बहुत सारे कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। सुनिए आला गायन में क्या होता है। सज्जनों कहा गया सितारों की महफिल को महफूज रखना, बड़ी दूर तक है बड़ी रात होगी, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। लेकिन तब तक के लिए आला सुनेगा होता क्या है। आज उदल ने जवाब दिया रानी फुलवा से, कहा सुनो हम महाराजा की बेटी के साथ में बैठे हैं, हमें ऊंच नीच का मालूम नहीं है। उदल की ये बातें सुन करके रानी फुलवा ने जवाब दिया और कहा कि सुनो चियारे कर रे हाथ तुम्हारे लागे, इतना हमका दियो बताए, उदल वाले वही बेरियामा फुलवा सुन लियो कान
1: लगाए,
0: कि रखीन नौकरी जाए दूसरे के तुम का साफर है बतलाए, हमारी जो तुम मानो तुम ते साच रहिन बतलाए, या ऐसी बानी फुलवा वाले मालिन ध्यान बिसरी ना जाए, या आज के रहनी यहाँ

0: क्या हुआ? जवाब दिया उदल ने और फुलवा से कहा कि सुनो, नाम हमारा बघबूदल है, अरे तुम का साँच रहन बतलाए, और नगर महोबा गाँव हमारा, हम हैं देश राज के
1: लाल।
0: तुम्हार से मिलने के लिए हमने नारी का भेष बना लिया। उदल का नाम जैसे फुलवा ने सुना, सज्जनों उस समय जानते हो फुलवा ने क्या किया? जोरी गदुरिया फुलवा बोले, हरे बालम सुनो उदय चंद्राए, अब भले हे आए गो तुम नरवली माँ, हम ते लीजे ब्याहू
1: कराए।
0: जवाब दिया उदल ने और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम तुमसे विवाह रचाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। जवाब दिया फुलवा ने उदल से कहा कि सुनो, यदि तुम विवाह रचाने के लिए नहीं आए हो तो मुझसे वादा करो, यहाँ पर क्यों आए हो? जवाब दिया उदल ने, तुम का द्याखन का आयन रहे, सुन लियो बात हमारी आए, हजोरी गदरिया बोले फुलवा, हम संग भमरी लियो
1: डराए।
0: तब जवाब में उदल कहते हैं फुलवा से, सुनो

या कह के मैया ने बर पूजा

0: दिया उदल ने और राजा नरपत सिंह ने कहा कि सुनो, क्या हम तुम्हारी धमकी से डर जाएंगे जो रणभूमि के क्षेत्र में मुझे धमकाने के लिए आ गए। डोला दई दोन ने बिटिया का नहीं अनमंत जोग हो जाए, ईट न रही है नरवल गढ़मा और नरवल खोदी करा दूं
1: ताले।
0: ऐसी अबानी में राजा हवाले सुन लो बात बना फरराए, और डोला दिया बहना बिटिया का चाहे कोटिन करो
1: उपाय।
0: जवाब दिया उदल ने और कहा कि सुनो, वो जिंदगी भी क्या जो दमदार नहीं होती, वो जिंदगी भी क्या जो दमदार नहीं होती, वो तलवार भी क्या जिसमें धार नहीं होती। जमाना लाख बने रुकावट, हिम्मत भरे लोगों की कभी
1: हार नहीं होती।
0: तुम्हारी बेटी का डोला तो हम लेके रहेंगे। खीर बातन बातन बातन।

या मुस्लिम मर जरण ख्यातन मापा की कबर बिहाव बनवाए या हिंदू मुसलमान कोई हो वे अपन करतब दिए दिखाए या झुके खलासी दोनों बदल कहे हो मोह चलाए ताला बड़े लड़ैया नरवली वाले हजिन कै बेड़ी बहाए तलवार और हालु बता दे महुबे वारिने हजिन कै गति बरणिना किस तरह नरवल कड़ के मैदान में यो दो राय सजनों।

निरपत सिंह अपने हाथी से रणक्षेत्र के मैदान में नीचे गिर गए। और उस समय क्या हुआ, उदल ने महाराजा से कहा कि सुनो, तुम क्या समझते हो कि हम डर जाएंगे, ऐसी कठिन घड़ी से मुकर जाएंगे, ये रणभूमि है, तलवारों को रुक देखो, दुश्मन का सीना चीर कर सीने पे उतर जाएंगे। आज राजा नरपत सिंह का दिमाग खराब हो गया, बोल न फूटा मुख से आको, उदल दीना हाथ उठाए, दंड बंधाया नरपत सिंह ने, उदल बै ने कहा समझाए। उदल ने नरपत सिंह के दंड बंधवा लिए। और उस समय उदल ने नरपत सिंह से कहा, मारा सुनो कि अरे हारी लिख दो जब ही ना पाए, जब ना राखो देर लगाए, हारी लिख दो।

पंडित वेद चार लागे सखिया मांगल चार सुनाए सातो भमरी अब डरवावे जिनका कहे बुदे जनराए या बाज बेंद लीला का।

लाके चल भैया बहु हर विदा लिहो करवाए या कागज पर न हम हो बे मां महलन हो मंगला जा या जय लड़ाई नरवल।

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने रागिनी गायन और आल्हा गायन सुना। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे अब हमारी शाम की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको बताए थे आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले सुनिए कार्यक्रम अक्षय निधि मंडल 2 सूक्त 24, और उसके बाद आनंद लीजिए भक्ति संगीत का। रोजाना की तरह शाम 6 बजे होगा कार्यक्रम वतन का राग, तो शार कांति घोष, आज इनकी जयंती पर आधारित होगा ये कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। बड़े भाई साहब, ये कहानी का विषय है और ये कहानी आप सुनेंगे आज हमारे कार्यक्रम सुनो कहानी के अंतर्गत शाम 6:30 पर। स्वर होगा कार्यक्रम में सुनीता सिंह का। शाम 7 बजे सुनिए कार्यक्रम कला कल्लोलिनी विष्णु नारायण भातखंडे पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होंगे वर्षा सिंह और स्वाति गिरी के। हमारा विशेष कार्यक्रम हिंदी की महिमा पर सुनिए शाम 7:30 पर। स्वर होगा भगवती सक्सेना का। रात 8 बजे सुनिए रेडियो रिपोर्ट प्रांति पर। आजाद हिंद यह कार्यक्रम सुनिए रात 8:30 पर। शेख भिखारी पर आधारित होगा आज का आजाद हिंद। शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम सुनिए रात 9 बजे। आज का कार्यक्रम आधारित होगा गोपीनाथ मोहंती पर। कार्यक्रम में स्वर सुनने को मिलेंगे आपको मनीषा चतुर्वेदी और विजयकांत नायक के। युग प्रवर्तक विवेकानंद कार्यक्रम सुनिए रात 9:30 पर। तो अब से लेकर रात 10 बजे तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। और आइए अब सुनेंगे अक्षय निधि एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनिए कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 24 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत और भार्गव शौनक, देवता ब्रह्मणस्पति एवं इंद्रा ब्रह्मणस्पति, छंद जगती एवं त्रिष्टुप।
1: सेमा मविद्धि प्रभृतिम य ईशिषे या विधेम नवया महागिरा यथा नो मीढ्वान् सत्ववते सखा तव बृहस्पते सीषध सोत नो मतिम। हे बृहस्पति देव, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। हम महान स्तुतियों के द्वारा आपका यशोगान करते हैं, उन्हें ग्रहण करें। जो स्तोता आपकी मित्र भाव से स्तुतियां करते हैं, वे हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। यो नन्त्वान्यन मन्नन्योज सोता दर्द मन्युना शंबराणि वि प्राच्या वयदच्युता ब्रह्मणस्पतितिरा चाविशद्वसुमंतम वि पर्वतम। ब्रह्मणस्पति देव ने अपनी सामर्थ्य से दंडित करने योग्य शत्रुओं को दबाया, मन्यु के द्वारा शंबर को विदीर्ण किया, न गिरने वाले जल को गिराया तथा जहां गौएं छिपी थीं उस पर्वत में प्रवेश किया। तद्देवानां देवतमाय कर्तव्यमश्रत्न दृढ़हा वृदंत वीडिता उदद्गा आज दभिनद ब्रह्मणा वल मगुहतमो व्यचक्ष यत्स्वः। देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मणस्पति देव के कर्तृत्व से सुदृढ़ किले भी शिथिल हो जाते हैं तथा बलशाली भी नम्र होकर झुक जाते हैं। ब्रह्मणस्पति देव ने मंत्र शक्ति के द्वारा बलासुर को मारकर गौओं को मुक्त कराया, सूर्य देव को प्रकट करके अंधकार को नष्ट किया। अश्मास्यमवतम ब्रह्मणस्पतिर् मधुधारमसि यमोज सात्रिणत तमेव विश्वे पपिरे स्वर्दृशो बहुसाकम् सिसिचुरुत समुद्रिणम्। ब्रह्मणस्पति देव ने पत्थर जैसे दृढ़ मुख वाले मधुर धाराओं से युक्त मेघ को बल प्रयोग द्वारा बरसने के लिए प्रेरित किया। वृष्टि के जल का पान सूर्य रश्मियों ने किया तथा प्रचुर जलधारा के रूप में धरती पर बरसाया। सनाता का चिद्भुवना भवित्वा माद्भि शरद्भिर दुरो वरंत वह अयतंता चरतो अन्य दन्य दिद्या चकार वयुना ब्रह्मणस्पति ही। हे ऋत्विजो, ब्रह्मणस्पति देव ने तुम्हारे लिए ही अनादिकाल से प्रत्येक माह और प्रत्येक वर्ष वर्षा के लिए मेघों को प्रेरित किया। इस प्रकार द्यावा पृथ्वी दोनों परस्पर जल का उपभोग करते हैं। अभिनक्षंतो अभि ये तमानशुर निधिम पणीनाम परमं गुहाहितम् ते विद्वांसः प्रतिचक्ष्यानृता पुनर्यत उ आयंत दुदीयुरा विषम। पणियों के द्वारा गुहा में छिपाए गए श्रेष्ठ धन को चारों ओर खोजकर देवगणों ने प्राप्त किया। यज्ञीय कार्य में विघ्न पैदा करने वाले राक्षस उस दिव्य ऐश्वर्य को देखकर जिस स्थान से आए थे वापस लौट गए। ऋतावानः प्रतिचक्ष्यानृता पुनरात आतस्थुः कवयो महस्पथः ते बाहुभ्याम धमित मग्नि मश्मनि नकिः शो अस्त्यरणो जुहुर्हितम्। सर्वज्ञाता तथा सत्यवादियों ने माया की शक्तियों को देखा। वे वहां से हटकर विवेक पूर्वक महान कार्यों के पथ पर चल पड़े। यज्ञीय कार्य के निमित्त उत्पन्न की गई अग्नि को वहीं पर्वत में ही छोड़ दिया। ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिर्यत्र वष्टि प्र तदश्नोति धन्वना तस्य साध्वी ऋषवो याभिरस्यति नृचक्षसो दृशये कर्णयोनयः। ब्रह्मणस्पति देव के पास सुगमता से खींचने वाली डोरी वाला बुद्धि रूपी एक उत्तम धनुष है, जिससे वे ज्ञान रूपी बाणों को जहां बुद्धिमान जनों के कानों तक वे चाहते हैं पहुंचा देते हैं। इससे वे मनुष्यों के सभी संकटों और दुष्ट भावों को उखाड़ फेंकते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 24 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं,

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही है।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।
2: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
3: ये वतन का राग।
2: वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसे कलम के सिपाही की जिनकी जीवन यात्रा एक दीपक की तरह थी, जिसने आंधियों से रोशनी का अर्थ सीखा, जिनके लिए पत्रकारिता केवल घटनाओं की खबर पहुंचाना भर नहीं था, बल्कि उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ था समय की आंखों में आंखें डालकर सच कहने का साहस। वो महान और प्रखर पत्रकार थे तुषार कांति घोष, जिनकी कलम ने गुलामी की रात में भी स्वतंत्रता का स्वप्न देखा और आजादी के बाद लोकतंत्र की चौकसी को अपना जीवन धर्म बनाया। तुषार कांति घोष का जन्म 21 सितंबर सन 1898 को अविभाजित बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। उनका परिवार बंगाल का एक सम्मानित परिवार था। भारतीय पत्रकारिता और स्वाधीनता संग्राम से इसका गहरा संबंध था। उनके पिता शिशिर कुमार घोष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन पुरोधाओं में से थे जिन्होंने अपने भाइयों मोतीलाल घोष और वसंत कुमार घोष के साथ मिलकर अंग्रेजी दैनिक अमृत बाजार की शुरुआत की थी। अमृत बाजार केवल एक समाचार पत्र भर नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विचारों का एक सशक्त और निर्भीक मंच बन चुका था। इस तरह बचपन से ही तुषार कांति घोष ने देश, समाज और स्वाधीनता की बातें सुनी, अन्याय के विरुद्ध उठती आवाजें सुनी। इसीलिए पत्रकारिता उनके लिए केवल पेशा नहीं, पारिवारिक संस्कार और राष्ट्रीय दायित्व था। उनकी आरंभिक शिक्षा कोलकाता के प्रतिष्ठित हिंदू स्कूल में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी मेधा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध बंगवासी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहां से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अध्ययन के साथ साथ अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य ने उनके भीतर भाषा की शक्ति जगाई तथा देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उनके भीतर प्रश्न करने की बेचैनी पैदा की।

शिक्षा पूर्ण करने के बाद तुषार कांति घोष के समक्ष कई विकल्प थे, लेकिन उन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों और राष्ट्रीय दायित्व को सर्वोपरि मानते हुए पत्रकारिता के कठिन और जोखिम भरे मार्ग को चुना। सन 1930 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका के संपादक का दायित्व संभाला। उस दौर में किसी पत्र का संपादन करना केवल सुंदर और प्रभावकारी लेख लिखना भर नहीं था, ब्रिटिश सरकार की कड़ी निगरानी, क्षेत्रीय सेंसरशिप और वित्तीय अनिश्चितताओं के बीच समाचार पत्र निकालना एक युद्ध की तरह था। प्रेस चलाने के लिए कागज चाहिए, मशीन चाहिए, श्रम चाहिए और वितरण का जाल चाहिए। तुषार कांति घोष ने पत्रकारिता को केवल संपादकीय कक्ष में बैठकर नहीं समझा, वो मुद्रण कक्षों में जाते, तकनीक समझते और संकट के समय स्वयं समाधान ढूंढ निकालते। जब जेसूर क्षेत्र में कागज की कमी हुई तो कागज निर्माण और प्रसंस्करण की तकनीक समझने के लिए वो पांडुआ तक गए। तुषार कांति घोष ने भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में सन 1937 में अमृत बाजार पत्रिका समूह ने बंगाली दैनिक समाचार पत्र जुगांतर का प्रकाशन शुरू किया। कुछ ही समय में जुगांतर बंगाल और पूर्वी भारत का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली बंगाली समाचार पत्र बन गया। ये अरविंद घोष के साप्ताहिक पत्र जुगांतर से अलग पत्र था। इसके माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में निर्भीक पत्रकारिता और राष्ट्रवादी चेतना की एक नई लहर पैदा हुई। तुषार कांति घोष के भीतर ब्रिटिश सत्ता के समक्ष न झुकने का अटूट संकल्प था। यही कारण है कि उनके संपादन काल में अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेज अधिकारियों और औपनिवेशिक न्यायपालिका की आंखों की किरकिरी बनी रही। तुषार कांति घोष के जीवन की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक था सन 1935 का वो प्रसिद्ध अवमानना का मुकदमा, जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। दरअसल 21 मार्च सन 1935 को बंगाल विधान परिषद में एन.के. बसु ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की आलोचना की थी। इसके बाद अमृत बाजार पत्रिका में कलकत्ता हाई कोर्ट शीर्षक से संपादकीय प्रकाशित हुई। इसमें अदालत के न्यायाधीशों पर कार्यपालिका के साथ निकटता के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होने जैसी गंभीर टिप्पणी की गई थी। इसे अदालत की अवमानना मानते हुए तुषार कांति घोष और तारिक कांति बिस्वास के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अदालत में तुषार कांति घोष ने बताया कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान ये लेख छपा था, लेकिन वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। साथ ही उन्होंने अपने पक्ष में तर्क भी रखा। अदालत ने उन्हें माफी मांगने का अवसर दिया, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं हुए। परिणाम स्वरूप उन्हें 3 माह कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन वो जिंदगी भर न कभी झुके न रुके। वो निर्भीक, निडर, बस चलते रहे।

तुषार कांति घोष अपनी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और हास्य व्यंग के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। अंग्रेजों के साथ उनकी संवाद शैली अत्यंत रोचक रहा करती थी। इसी तरह का एक किस्सा पत्रकारिता जगत में प्रचलित है। बताया जाता है कि एक बार बंगाल प्रांत के तत्कालीन गवर्नर ने चुटकी लेते हुए कहा, श्रीमान घोष, मैं आपकी अमृत बाजार पत्रिका नियमित रूप से पढ़ता हूँ। अखबार तो अच्छा है, लेकिन इसमें कई बार अंग्रेजी व्याकरण सही नहीं होता है और आपकी पत्रिका अंग्रेजी भाषा के साथ काफी हिंसा करती है। इस पर बिना एक क्षण गंवाए तुषार कांति घोष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महोदय, अंग्रेजी भाषा के साथ हिंसा करना ही तो भारत के स्वाधीनता संग्राम में मेरा और मेरी पत्रिका का सबसे छोटा सा योगदान है। जवाब सुनकर गवर्नर महोदय चुप रह गए। इस तरह तुषार कांति घोष ने कलम के सहारे ऐसा युद्ध घोष किया कि ब्रिटिश सत्ता कभी चैन से नहीं बैठ सकी। अमृत बाजार पत्रिका और जुगांतर, मानो उनकी कलम ने दो भाषाओं में एक ही संदेश लिखा, जनता को जागना होगा। तुषार कांति घोष ने कभी शब्दों से तो कभी अपने मौन से भी जागरण का ये मंत्र फूंका। 16 अगस्त सन 1946 को अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया और कलकत्ता की सड़कों पर भयानक नरसंहार, सांप्रदायिक दंगे और आगजनी के दृश्य थे। पूरा शहर हिंसा की आग में जल रहा था। अनेक समाचार पत्र भड़काऊ खबरें छाप रहे थे, एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे थे। ऐसे समय में अमृत बाजार पत्रिका का संपादकीय कॉलम खाली छोड़ दिया गया। ऐसा 3 दिनों तक किया गया। 3 दिनों का ये मौन संपादकीय ब्रिटिश हुकूमत की विफलता और राजनीतिक उन्माद के विरुद्ध तुषार कांति घोष का तीखा और मौन प्रतिरोध था। स्वाधीनता के बाद भारत में कई बार ऐसी स्थितियां आईं जब केंद्र या राज्य सरकार ने मीडिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रयास किया। तुषार कांति घोष ने सदा इसका कड़ा विरोध किया। वो इस बात के पक्षधर थे कि समाचार पत्रों को किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या कॉरपोरेट घराने का मोहरा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका को एक ऐसा मंच बनाया जहां प्रशासनिक भ्रष्टाचार, नीतिगत कमियों और सत्ता के अहंकार पर बिना किसी डर के कड़ा प्रहार किया जाता था। तुषार कांति घोष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और द इंडियन न्यूज सोसाइटी के सर्वोच्च पदों पर रहे। उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन का पुरजोर समर्थन किया ताकि पत्रकारिता सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहे। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट और कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रकार होने के साथ साथ उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद पुस्तकें भी लिखीं। उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका में भी बच्चों के लिए विशेष कॉलम शुरू किए थे ताकि बच्चों में पढ़ने की आदत और नैतिक मूल्यों का विकास हो। राष्ट्र निर्माण, साहित्य, शिक्षा और स्वतंत्र पत्रकारिता में उनके योगदान को देखते हुए सन 1964 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। एक समृद्ध और प्रेरणादायक जीवन जीते हुए 29 अगस्त सन 1994 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्ते, मैं हूँ रानी मुखर्जी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए 90.8 पर।
1: द्विधातु जाल और ईस्ट इंडिया कंपनी। 17वीं शताब्दी के एक बंदरगाह पर खड़े होने की कल्पना कीजिए, जहां एक जहाज पर चमकदार सोने से भरे एक के बाद एक संदूक लादे जा रहे हैं। 1670 के दशक में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये केवल धन का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये एक हताश कर देने वाला वित्तीय दाव था। लंदन में चांदी, जो वैश्विक व्यापार का मानक थी, खतरनाक रूप से दुर्लभ और महंगी होती जा रही थी। व्यापार को चालू रखने के लिए कंपनी ने सोने का रुख किया। शुरुआत में ये रणनीति शानदार लगी। भारत में चांदी की कीमत गिर रही थी, जिसका अर्थ था कि वहां सोने का व्यापार भारी प्रीमियम पर हो रहा था। लेकिन तभी बाई मेटालिक रिश्यो ट्रैप, यानी दो धातुओं के मूल्य का जाल अचानक बंद हो गया। साल 1676 था और भारतीय बुलियन बाजार अचानक चरमरा कर गिर गया। बिना किसी चेतावनी के सोने की चांदी में आकी जाने वाली कीमत धराशायी हो गई। सोने के सिक्के, जो दशकों से 15 रुपए में बिकते थे, गिरकर केवल 11 या 12 रुपए पर आ गए। कंपनी की सूरत फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई, जिसने अपने सोने के शिपमेंट पर अत्यधिक भारी नुकसान की रिपोर्ट दी। इस अचानक गिरावट का कारण क्या था? बाजार की अफवाहों का दावा था कि तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब ने अफगानिस्तान और दक्कन में अपने भीषण युद्धों के वित्त पोषण के लिए अपने विशाल पैतृक सोने के भंडार को बाजार में उतार दिया था। अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए अर्थव्यवस्था में शाही सोने की बाढ़ लाकर सम्राट ने अनजाने में कंपनी के मुनाफे को पूरी तरह खत्म कर दिया। कंपनी ने लंदन में चांदी की कमी से बचने की कोशिश की थी, लेकिन भारत में सोने की अधिकता, यानी गोल्ड ग्लट, ने उन्हें कुचल दिया। 17वीं सदी की इस आपदा ने कंपनी को वापस चांदी की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया। इसने साबित कर दिया कि वैश्विक मुद्रा के इस उच्च जोखिम वाले खेल में एक सम्राट की कलम का एक वार सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेशन को भी घुटनों पर ला सकता है।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनो कहानी। आइए अब सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते और कभी कभी 3 साल भी लग जाते। मेरी उम्र 9 साल की थी और वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वे स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी के हाशिए पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम या एक शब्द या एक वाक्य 10-20 बार भी लिख डालते। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पड़े तो पहाड़ सा लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकल जाता, मैदान में आ जाता। कभी कागज की तितलियां उड़ाता तो कभी कंकरियां उछालता। अगर कभी कोई साथी मिल जाए तो कहना ही क्या। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल चुप्पी था। न जाने क्यों ये बात मेरे मुंह से निकलती ही नहीं कि जरा बाहर खेल रहा था। मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। इस तरह से पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये विधा आती है। हाँ, कहने को तो आ जाती है, पर बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात है। तुम कितने घोंगे हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे कभी जाते देखा? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-3 साल लग जाते हैं। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद कर वक्त गवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल ही लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े रहोगे? अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। बाबा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। मुझे अपना अज्ञान रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाते। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता, आगे से खूब जी लगा के पढ़ूंगा। मैं झटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए बिना, कोई स्कीम तैयार किए बिना। टाइम टेबल में खेल कूद की बिल्कुल जगह ना होती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस लौटकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद और 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वे सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो छल कूद, कबड्डी के दाव पेच मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाते। वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। फिर सालाना इम्तहान हुए, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास, प्रथम दर्जा आया। मेरे और उनके बीच अब केवल 2 साल का अंतर रह गया। फिर सालाना इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच अब केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजों से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल आया। लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर ना रहा, आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते भी दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस न होते हुए भी मेरे रंगढंग से ये साफ जाहिर होता कि भाई साहब का वे आतंक मुझ पर अब नहीं, भाई साहब ने भी इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। वे एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय पर लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हारे दिमाग खराब हो गए। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती? इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा होगा ना, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण चक्रवर्ती राजा था, बड़े बड़े देवता उसके गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड, घमंड ने उसका नाम और निशान तक मिटा दिया, कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा होगा ना, उसे ये अभिमान था कि ईश्वर का सबसे बड़ा सच्चा भक्त वही है। अंत में क्या हुआ? स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। जब एलजब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। आखिर कोई इनसे पूछे कि आ बा जा और आ जा बा में क्या फर्क है? व्यर्थ की बात करते हैं और छात्रों का खून चूसते हैं। दाल भात रोटी खाई या भात रोटी दाल, इसमें क्या फर्क है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वे तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर इन बेसिर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा? मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इसीलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, जो कुछ कहता हूँ उसकी गांठ बांध लो। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने आज क्या क्या उपदेश सुनना पड़ते। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर ये तिरस्कार रहा तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे अंदर से भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, बस यही ताज्जुब है। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल। मैंने बहुत मेहनत ना की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, मुझे उन पर दया आने लगी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधान का लिखा कौन बदले? अब भाई साहब और मेरे बीच केवल एक दर्जे का अंतर था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा, फिर वे किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कुटिल विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वो मेरे हित की ही तो बात करते हैं और मुझे डांटते हैं। भाई साहब कुछ नर्म पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वे खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा है तो बहुत कम। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद कर दिया। मुझे कनकौए उड़ाने का एक नया शौक पैदा हुआ और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट हो गया। फिर भी भाई साहब का अदब करता और उनसे बचकर कनकौए उड़ाता। एक दिन शाम का समय था, दूर एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ चला आ रहा था। जहां सब कुछ समतल था, न मोटर कारें थीं, न ट्रम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव में बोले, इन लड़कों के साथ कनकौए के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आठवीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जे नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ अपनी पोजीशन का भी तो ख्याल करना चाहिए। एक ज़माना था जब लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वे ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की रक्षा न करे? तुम अपने दिल में समझते होगे कि भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, मेरे समकक्ष आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है और तुम क्या उसे खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का तजुर्बा तुमसे ज़्यादा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए भी क्यों ना कर लो। समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने तो कोई दर्जा पास नहीं किया और बाबा भी शायद 5वीं या 6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और बाबा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का तजुर्बा हमसे ज्यादा है। भगवान न करे अगर आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे, बाबा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ और ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह पर बाबा हो तो किसी को तार ना दें, ना घबराएं, ना बदहवास हों। पहले खुद मर्ज को पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चलता है। जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं ना, उसके आधे में बाबा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी से जिया है और एक कुटुंब का पालन किया जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, एमए हैं एमए, और एमए भी यहाँ के नहीं ऑक्सफोर्ड के, 1,000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते हुए तुम बेराह ना चल पाओगे। अगर तुम यूं ना माने तो मैं थप्पड़ का प्रयोग करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लगती हैं। मैं इनकी नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, नहीं, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है, आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कनकौए उड़ाने का मन मेरा भी करता है, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ मेरे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ता चला आ रहा था। भाई साहब लंबे ही हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी बड़े भाई साहब। अब हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बॉम्बे बॉक्स वर्क, रेशमी मोज़ेक, फारसी जड़ें और ब्रिटिश मार्केटिंग। 19वीं सदी के व्यापारिक कैटलॉग के शांत अभिलेखागार में अक्सर एक जिज्ञासु शब्द मिलता है, बॉम्बे बॉक्स वर्क। एक सामान्य दर्शक के लिए ये ज्यामितीय पैटर्न की एक चमकती हुई सम्मोहक त्वचा की तरह दिखता है। हाथी दांत, सींग और विपरीत लकड़ियों का सूक्ष्म मोज़ेक जो दस्ताने के बक्से, राइटिंग डेस्क और कार्ड केस पर लिपटा होता है। हालांकि नाम से ये विशुद्ध रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक आविष्कार लगता है, लेकिन इस कला का इतिहास फारसी उत्पत्ति, भारतीय शिल्प कौशल और शाही रीब्रांडिंग की एक कहानी है। भारत में इस तकनीक को सादेली के नाम से जाना जाता था, जो बॉम्बे में ब्रिटिश उपस्थिति से कहीं अधिक पुरानी थी। इसकी उत्पत्ति फारस के शिराज और इस्फहान शहरों में हुई थी, जहां इसे खम्बात बंदी कहा जाता था। ये प्रक्रिया बेहद सटीक और धैर्यपूर्ण थी। शिल्पकार हाथी दांत प्राकृतिक या हरे और लाल रंग में रंगे हुए आबनूस और चंदन की सैकड़ों पतली छड़ों को गोंद का उपयोग करके बंडलों में बांधते थे। इन बंडलों को फिर अविश्वसनीय रूप से पतली परतों में काटा जाता था, जिन्हें लकड़ी के आधारों पर चिपकाया जाता था। यहाँ एक मुख्य अंतर था। जहाँ फारसी कारीगर अपने रूपांकनों को रेखांकित करने के लिए पीली धातु यानी पीतल का उपयोग करते थे, वहीं भारतीय कारीगर टिन या चांदी के तार को प्राथमिकता देते थे। ये शिल्प राजनीतिक अशांति से भाग रहे पारसी समुदायों के साथ अरब सागर पार कर भारत आया, पहले सिंध पहुंचा और अंततः 18वीं शताब्दी के मध्य तक सूरत के व्यस्त बंदरगाह तक पहुंचा। दशकों तक सूरत इस उद्योग की असली धड़कन बना रहा, यहां तक कि जब ब्रिटिश राजनीतिक और सैन्य शक्ति बॉम्बे द्वीप की ओर स्थानांतरित हो गई, तब भी विशेषज्ञ कारीगर सूरत में ही रहे। ब्रिटिश अधिकारी वर्षों तक शिकायत करते रहे कि जब कच्चा हाथी दांत बॉम्बे में उतारा जाता था, तब भी उसे काम के लिए वापस सूरत भेजना पड़ता था, क्योंकि वहां शिल्प नेटवर्क की स्थानीयता इतनी गहरी थी। बॉम्बे बॉक्सवर्क नाम में संक्रमण ब्रिटिश मार्केटिंग का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने साम्राज्य के बदलते समय को प्रतिबिंबित किया। जैसे जैसे बॉम्बे एक औपनिवेशिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, ये इन वस्तुओं के पश्चिमी बाजारों तक पहुंचने का प्राथमिक आउटलेट बन गया। विक्टोरियन यात्री इन बक्सों से मंत्रमुग्ध थे, उन्हें प्रामाणिक भारतीय कलाकृतियों के रूप में देखते थे। ये शिल्प 1851 की महान प्रदर्शनी में अपने चरम पर पहुंचा, जहां बॉम्बे में बने इन कलात्मक वस्तुओं ने पदक जीते और अंततः महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली के लिए एक भव्य विस्तृत बॉक्स तैयार किया गया। इस सुंदरता के पीछे एक जटिल वैश्विक व्यापार नेटवर्क था। सादेली में उपयोग किए जाने वाले हाथी दांत की मांग ने हाथी दांत कपास यूरोबोस को चलाने में मदद की। एक वाणिज्यिक सर्किट जहां अफ्रीकी हाथी दांत के बदले भारतीय कपड़ों का व्यापार किया जाता था, ताकि गुजरात की कार्यशालाओं का पेट भरा जा सके। आज बॉम्बे बॉक्सवर्क एक मृत शब्द है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सेल्यूलाइड प्लास्टिक के उदय और बाद में हाथी दांत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ये उद्योग ध्वस्त हो गया। फिर भी ये नाम इस बात का भाषाई अवशेष बना हुआ है कि कैसे अंग्रेजों ने एक जीवंत प्राचीन फारसी भारतीय परंपरा पर अपने स्वयं के प्रशासनिक लेबल सफलतापूर्वक थोप दिए।

अपने हजारों देशवासियों की तरह वे अयोध्या के निहोनमाची यानी जापानी समुदाय में बस गए। एक ऐसी दुनिया जहां व्यापार और हिंसा के बीच की रेखाएं हमेशा धुंधली रहती थीं। इस माहौल में जापानी प्रवासी एक बदलती निरंतरता में रहते थे, जो जरूरत पड़ने पर मर्सनरी बन जाते थे और मुनाफा दिखने पर वापस व्यापारी की भूमिका में आ जाते थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नागामासा एक दुर्जय व्यवसायिक प्रतिद्वंदी थे। वे केवल एक सैनिक ही नहीं थे, वे एक समृद्ध व्यापारी थे जिन्होंने एक अत्यधिक लाभदायक वाणिज्यिक नेटवर्क का प्रबंधन किया था। उन्होंने जापान में भारी मांग वाली वस्तु हिरण की खाल के आकर्षक व्यापार पर नियंत्रण के लिए VOC के साथ कड़ा मुकाबला किया। इस मर्सनरी मर्चेंट ढांचे ने उन्हें अपनी निजी सेना बनाए रखते हुए व्यक्तिगत संपत्ति बनाने की अनुमति दी। सियाम के राजा अपनी सुरक्षा के लिए तेजी से जापानी लड़ाकों पर निर्भर होने लगे थे, जिन्हें वे साहस और निष्ठा के लिए सबसे सम्मानित मानते थे। यूरोपीय पर्यवेक्षकों ने इन सैनिकों को वीर और भयंकर योद्धाओं के रूप में वर्णित किया है, जो किसी भी संघर्ष के परिणाम को बदलने में सक्षम थे। जापानी समुदाय के राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत एक दुस्साहसी कृत्य से हुई थी। डच वृत्तांतों और अयोध्या के इतिहास के अनुसार जापानी सैनिकों ने सियाम के सम्राट का अपहरण कर लिया था और उन्हें तब तक बंधक बनाए रखा जब तक कि वे उन्हें अपने एलीट पैलेस गार्ड और जीवन भर के लिए अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने पर सहमत नहीं हो गए। इस उच्च स्तरीय माहौल में नागामासा रैंकों में ऊपर उठते गए और सियाम के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। नागामासा का करियर अपने चरमोत्कर्ष पर तब पहुंचा जब उन्होंने सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया और उत्तराधिकार की विश्वासघाती राजनीति को संभाला। वे एक सैन्य और वाणिज्यिक उद्यमी की अनूठी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह युद्ध का नेतृत्व कर सकता था और दोपहर में व्यापारिक सौदे पर बातचीत कर सकता था। अंततः एक किंगमेकर का जीवन जितना लाभदायक था उतना ही खतरनाक भी। नागामासा की मृत्यु 1630 में हुई। वे उसी दरबारी साजिश के शिकार हुए जिसे आकार देने में उन्होंने मदद की थी। उनकी कहानी उस युग का प्रमाण है जहां साहसी यात्री समुद्र पार कर सकते थे और अपनी युद्ध प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर विदेशी भूमि में सत्ता हथिया सकते थे। नागामासा केवल एक विदेशी घुसपैठिए नहीं थे, वे सियामी राज्य के एक अनिवार्य अंग थे, जो ये साबित करता है कि उस समय एक तेज तलवार और व्यापार की गहरी समझ ही राजनीतिक अस्तित्व का अंतिम हथियार थे। अरे

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलनी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में, जिन्होंने संगीत को स्वर से शास्त्र और परंपरा से पाठशाला तक पहुंचाया। आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिंह।
1: और मैं रत्नेश सोनी।
0: हमारे खास कार्यक्रम कला कल्लोलनी में जहां हम आपको भारतीय कला और संस्कृति की उन विलक्षण विभूतियों से रूबरू कराते हैं जिनकी साधना ने हमारी विरासत को समृद्ध किया।
1: आज का ये सफर हमें लेकर चलेगा भारतीय शास्त्रीय संगीत की उस दुनिया में जहां स्वर केवल सुनाई नहीं देते बल्कि परंपरा, साधना और ज्ञान की एक पूरी कहानी कहते हैं।
0: और आज हम आपको परिचित करवाएंगे संगीत की एक ऐसी विलक्षण विभूति से जिनकी वजह से भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनेक परंपराएं केवल मंचों तक सीमित नहीं रही बल्कि शास्त्र, स्वर लिपि और व्यवस्थित शिक्षा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही।
1: एक ऐसे संगीत मनीषी जिन्होंने संगीत को केवल सुना नहीं, उसे समझा, खोजा, लिखा और व्यवस्थित किया। आज की हमारी कहानी है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की, उस महान संगीत शास्त्री की जिन्होंने भारतीय संगीत की विशाल और विविध परंपरा को एक व्यवस्थित स्वरूप देने में अपना जीवन समर्पित कर दिया।
0: तो आइए संगीत की इसी ज्ञान यात्रा पर हमारे साथ चलिए और जानिए उस साधक की कहानी जिसने स्वरों को केवल आवाज नहीं रहने दिया बल्कि उन्हें शास्त्र और आने वाली पीढ़ियों की धरोहर बना दिया।

0: आज हम किसी राग का नाम लेते हैं, उसके आरोह अवरोह की बात करते हैं, किसी बंदिश को स्वर लिपि में देखते हैं, किसी संगीत विद्यालय में व्यवस्थित पाठ्यक्रम के माध्यम से संगीत सीखते हैं, या 10 थाटों के आधार पर रागों की दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं, तो इन सब के पीछे हमें एक ऐसे व्यक्ति की अथक साधना दिखाई देती है जिसने अपना जीवन संगीत को समझने, खोजने, लिखने, व्यवस्थित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने में लगा दिया।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को बंबई के वालकेश्वर में हुआ था। उनका परिवार शिक्षित और संस्कारवान था। उनके पिता स्वयं संगीत के प्रति अनुराग रखते थे और अपने बच्चों को संगीत सीखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। बचपन में संगीत उनके जीवन में आया, लेकिन ये उस समय उनका पेशा नहीं था।
0: उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, कानून की पढ़ाई की और वकालत के क्षेत्र में भी गए। उनके सामने एक सम्मानजनक और सुरक्षित पेशेवर जीवन था, लेकिन मन का रास्ता अक्सर जीवन की तय राह से अलग होता है। भातखंडे जी के भीतर संगीत के लिए जो जिज्ञासा थी, वह धीरे धीरे इतनी गहरी होती गई कि कानून उनके जीवन का केंद्र नहीं रह गया।
1: सन 1884 में वे गायन उत्तेजक मंडली से जुड़े। ये जुड़ाव उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ उन्होंने केवल संगीत सुना नहीं, बल्कि संगीत की शिक्षा, प्रस्तुति और विभिन्न परंपराओं को निकट से समझा। उन्होंने ध्रुपद और ख्याल जैसी परंपराओं की बंदिशें सीखी और अलग अलग संगीतज्ञों के संपर्क में आए। यहीं से उनके भीतर एक बड़ा प्रश्न आकार लेने लगा, आखिर भारतीय शास्त्रीय संगीत का इतना विशाल संसार व्यवस्थित रूप में लिखा क्यों नहीं गया? राग इतने हैं, घराने इतने हैं, बंदिशें इतनी हैं, गायकी की इतनी शैलियां हैं, तालों की इतनी विविधता है, लेकिन इन सब का व्यवस्थित दस्तावेज कहाँ है?
0: संगीत का अधिकांश ज्ञान गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप में पहुंचता था। गुरु गाते थे, शिष्य सुनता था। गुरु बजाते थे, शिष्य दोहराता था। गुरु सिखाते थे, शिष्य स्मृति में उसे संजोता था। ये परंपरा अपने आप में अत्यंत समृद्ध थी। उसमें केवल स्वर नहीं, बल्कि अनुभव, भाव, उच्चारण, नींद, गमक, लय और प्रस्तुति की सूक्ष्मता भी पीढ़ी दर पीढ़ी जाती थी। लेकिन इसकी एक सीमा भी थी। यदि किसी बंदिश को जानने वाला अंतिम व्यक्ति उसे आगे ना पहुंचा पाए, तो वह रचना उसके साथ ही समाप्त हो सकती थी। यदि किसी घराने की कोई विशिष्ट परंपरा अगली पीढ़ी तक ना पहुंच पाए, तो उसके साथ संगीत का एक पूरा अंश खो सकता था।
1: भातखंडे ने इसी खतरे को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने तय किया कि भारतीय संगीत को केवल सुना और याद नहीं किया जाना चाहिए, उसे लिखा भी जाना चाहिए। और यही विचार आगे चलकर भारतीय संगीत के इतिहास में एक बड़े परिवर्तन का कारण बना। भातखंडे जी ने भारत की यात्रा की। वे अलग अलग क्षेत्रों में गए, संगीतज्ञों से मिले, घरानों के कलाकारों से मिले, गायकों और वादकों से बंदिशें सुनी, संगीत के पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने केवल एक परंपरा को अंतिम सत्य मानकर काम नहीं किया, वे सुनते थे, प्रश्न करते थे, तुलना करते थे और फिर निष्कर्ष तक पहुंचते थे। उनकी यात्राएं वास्तव में भारत की संगीत यात्राएं थी।
0: वैसे समय में यह काम कर रहे थे जब न रिकॉर्डिंग की आधुनिक सुविधा थी और न आज की तरह किसी रचना को तुरंत ऑडियो या वीडियो में सुरक्षित कर लेने की तकनीक। किसी कलाकार से कोई बंदिश सुनना और उसे उसी समय ध्यानपूर्वक लिख लेना, यह अपने आप में असाधारण धैर्य और स्मरण शक्ति का काम था। उन्होंने अनेक घरानों से प्राप्त पारंपरिक रचनाओं को संकलित किया और अपनी विकसित की हुई स्वरलिपि पद्धति के माध्यम से उन्हें लिखित रूप दिया।
1: यहीं से भातखंडे जी के काम का दूसरा बड़ा पक्ष सामने आता है। उन्होंने संगीत के लिए एक ऐसी स्वरलिपि विकसित की जिसके माध्यम से राग, बंदिश और ताल को लिखित रूप में समझना संभव हुआ। आज किसी विद्यार्थी के सामने जब किसी बंदिश की स्वरलिपि रखी जाती है तो वो उसे देखकर अभ्यास कर सकता है। वो केवल ये नहीं कहता कि मेरे गुरु ने मुझे ये बंदिश सिखाई थी, अब उसके पास उसे देखने, पढ़ने और दोहराने का एक लिखित आधार भी होता है। ये परिवर्तन बहुत बड़ा था क्योंकि स्वर लिपि ने संगीत की स्मृति को कागज पर स्थान दिया। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, स्वर लिपि संगीत का पूरा शरीर नहीं होती।
0: कागज पर स्वर लिखे जा सकते हैं, लेकिन आवाज की पूरी मिठास, स्वर का कंपन, मींड की गहराई, किसी कलाकार की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति या राग के भाव का पूरा अनुभव केवल लिखे हुए अक्षरों से नहीं मिल सकता। भातखंडे जी स्वयं संगीत की जीवंत परंपरा को जानते थे, इसलिए उनकी स्वरलिपि का महत्व इस बात में है कि उसने संगीत को संरक्षित करने और सिखाने का एक मजबूत आधार दिया।
1: इसी के साथ उन्होंने एक और बड़ी समस्या को संबोधित किया, रागों का वर्गीकरण। रागों का वर्गीकरण भारतीय संगीत परंपरा में रागों का संसार अत्यंत विशाल था। अलग अलग कालखंडों और परंपराओं में रागों को समझाने और वर्गीकृत करने के अलग अलग तरीके रहे।
0: भातखंडे जी ने इस जटिलता को सरल बनाने के लिए 10 थाटों की व्यवस्था प्रस्तुत की, बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी। इन 10 थाटों को आधार बनाकर बड़ी संख्या में रागों को समझने का एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया गया।
1: ध्यान देने वाली बात यह है कि हर राग को किसी एक थाट में पूरी तरह बांध देना हमेशा संभव नहीं है। राग केवल स्वरों का गणित नहीं है, राग का अपना चलन है, उसकी अपनी पकड़ है, उसका आरोह अवरोह है, उसकी अपनी प्रकृति है, उसका समय है, उसका भाव है, उसकी विशिष्टता है। लेकिन अध्ययन के लिए एक व्यवस्थित आधार आवश्यक था।
0: भातखंडे जी का थाट प्रणाली का योगदान इसी अर्थ में महत्वपूर्ण है। उन्होंने संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों के सामने एक ऐसा नक्शा रख दिया जिसके सहारे वे रागों की विशाल दुनिया में प्रवेश कर सके। जैसे किसी विशाल शहर को समझने के लिए पहले उसके मुख्य मार्गों का नक्शा चाहिए होता है, वैसे ही रागों की विशाल दुनिया को समझने के लिए थाट एक व्यवस्थित आधार बन गए।
1: लेकिन भातखंडे जी का काम केवल वर्गीकरण तक सीमित नहीं था, उन्होंने संगीत के सिद्धांत और व्यवहार के बीच पुल बनाने का काम किया। भारतीय संगीत के प्राचीन ग्रंथों में संगीत का विशाल शास्त्रीय साहित्य मौजूद था। दूसरी ओर अपने समय के संगीतज्ञ व्यवहार में संगीत की अलग अलग परंपराएं निभा रहे थे। भातखंडे जी ने दोनों संसारों को साथ रख कर देखा।
0: उन्होंने पुराने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया, उन्होंने प्राचीन संगीत परंपराओं को समझने का प्रयास किया, साथ ही उन्होंने जीवित संगीतज्ञों से सीखा कि वास्तव में उनके समय में राग कैसे गाए जा रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि वे केवल पुस्तकालय के विद्वान नहीं बने और न केवल मंच के संगीतज्ञ,
1: वे शोधकर्ता भी थे, संगीत शास्त्री भी थे, शिक्षक भी थे और संगीत के दस्तावेजीकरण के अग्रदूत भी। उनका काम हमें ये बताता है कि परंपरा को बचाने का अर्थ उसे केवल अतीत में रख देना नहीं है, परंपरा को बचाने का अर्थ है उसे समझना, उसके मूल तत्वों को पहचानना और उसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचने योग्य बनाना। भातखंडे जी ने यही किया।
0: उन्होंने अपने अध्ययन और यात्राओं के आधार पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार किए। उनकी प्रमुख कृतियों में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और क्रमिक पुस्तक मालिका का विशेष महत्व है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 खंडों में प्रकाशित हुई, जबकि क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में विस्तृत हुई। इन ग्रंथों में रागों के सिद्धांत के साथ साथ अनेक रचनाओं को स्वरलिपि में दर्ज किया गया।
1: आज भी ये पुस्तकें हिंदुस्तानी संगीत के अध्ययन में महत्वपूर्ण संदर्भ मानी जाती हैं। यहाँ एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ओर गुरु अपने शिष्य को बंदिश सिखा रहा है और दूसरी ओर कोई व्यक्ति उसी परंपरा को ध्यान पूर्वक सुनकर कागज पर दर्ज कर रहा है। एक व्यक्ति संगीत को अगली पीढ़ी तक आवाज के माध्यम से पहुंचा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी संगीत की स्मृति को शब्द और स्वर के माध्यम से स्थायी बना रहा है। भातखंडे जी की भूमिका कुछ ऐसी ही थी।
0: उन्होंने कलाकारों के अनुभव को विद्वानों के अध्ययन से जोड़ा, उन्होंने परंपरा को पुस्तक से जोड़ा, उन्होंने मौखिक ज्ञान को लिखित ज्ञान से जोड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने संगीत को केवल कुछ परिवारों या घरानों तक सीमित रहने के बजाय व्यापक शिक्षा व्यवस्था में पहुंचाने की दिशा में काम किया।
1: यहीं से उनकी दृष्टि का एक और महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है, संगीत शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। उनके समय में शास्त्रीय संगीत सीखना मुख्यतः गुरु शिष्य परंपरा और संगीतज्ञ परिवारों तक सीमित था। ये व्यवस्था अपनी जगह अत्यंत प्रभावशाली थी, लेकिन समाज के हर व्यक्ति को उसमें प्रवेश मिलना आसान नहीं था। भातखंडे जी चाहते थे कि संगीत की शिक्षा व्यवस्थित संस्थानों में उपलब्ध हो। इसी विचार ने संगीत महाविद्यालयों और पाठ्यक्रमों की दिशा को प्रभावित किया।
0: लखनऊ में 1926 में मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना हुई। इसमें राय उमानाथ बली और राय राजेश्वर बली जैसे सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और भातखंडे ने संगीत के पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक व्यवस्था को आकार देने में निर्णायक योगदान दिया। बाद में यही संस्था भातखंडे के नाम से जानी गई और आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो चुकी है।
1: लखनऊ का ये संस्थान केवल एक इमारत नहीं था, ये उस विचार का प्रतीक था कि संगीत को भी गंभीर शैक्षणिक अनुशासन के रूप में पढ़ाया जा सकता है, कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, संगीत अध्ययन का विषय है, संगीत शोध का विषय है, संगीत में व्याकरण है, संगीत में इतिहास है, संगीत में सौंदर्य शास्त्र है और संगीत में ज्ञान की एक पूरी परंपरा है।
0: भातखंडे जी ने इसी सोच को संस्थागत रूप दिया। उन्होंने ग्वालियर और बड़ौदा जैसे केंद्रों में भी व्यवस्थित संगीत शिक्षा के विकास में योगदान दिया। उनकी दृष्टि में विद्यार्थियों को केवल राग गाना नहीं चाहिए, उसे यह भी समझना चाहिए कि राग की संरचना क्या है, ताल क्या है, स्वर का संबंध क्या है, रचना की प्रकृति क्या है, परंपरा का इतिहास क्या है और सबसे महत्वपूर्ण जो वह गा रहा है उसके पीछे का ज्ञान क्या है। यही वह दृष्टि थी जिसने संगीत शिक्षा को एक नए आयाम तक पहुंचाया।
1: भातखंडे का एक और महत्वपूर्ण योगदान था संगीत के अलग अलग प्रवाहों के बीच संवाद। भारत में हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों महान शास्त्रीय संगीत परंपराएं हैं। दोनों की अपनी भाषा है, अपनी संरचना है, अपनी परंपराएं हैं और अपना सौंदर्य है।
0: भातखंडे जी ने इन परंपराओं को एक दूसरे से समझने और संवाद करने की दिशा में भी प्रयास किए। उन्होंने संगीत सम्मेलनों की परंपरा को बढ़ावा दिया जिससे अलग अलग क्षेत्रों और संगीत प्रणालियों के कलाकारों को संवाद का अवसर मिला। ये विचार आज के समय में और भी महत्वपूर्ण लगता है,
1: क्योंकि किसी कला को मजबूत बनाने का एक रास्ता ये नहीं है कि वो स्वयं को बंद कर ले, बल्कि ये है कि वो अपनी पहचान को बनाए रखते हुए दूसरे अनुभवों से संवाद करे। भातखंडे की दृष्टि में शोध का अर्थ केवल पुराने ग्रंथ पढ़ना नहीं था, शोध का अर्थ था सुनना, प्रश्न करना, तुलना करना, यात्रा करना, कलाकारों से मिलना, परंपराओं को समझना और फिर निष्कर्ष निकालना। इस दृष्टि से वे अपने समय से आगे दिखाई देते हैं।
0: आज हम जिस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजीकरण, भारत खंडे जी ने उस काम को एक सदी से भी पहले गंभीरता से किया। आज हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, डिजिटल आर्काइव है, क्लाउड स्टोरेज है।
1: लेकिन उस समय कागज, कलम और कान और उनका असाधारण धैर्य ही उनके सबसे बड़े साधन थे। उन्होंने संगीत को सुनकर लिखा, लिखकर व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करके प्रकाशित किया और प्रकाशित करके विद्यार्थियों तक पहुंचाया। ये यात्रा भातखंडे जी की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है।
0: उनकी निजी जिंदगी में भी ऐसे क्षण आए जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। सन 1900 में उनकी पत्नी का निधन हुआ और 1903 में उनकी बेटी भी नहीं रही। इन निजी आघातों के बाद उन्होंने अपने जीवन को लगभग पूरी तरह संगीत अध्ययन और संगीत सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े दुख मनुष्य को उस काम की ओर धकेल देते हैं जिसे वह भीतर से अपना मानता है।
1: अब वो समय आ गया था जब भातखंडे जी के लिए स्वयं के लिए संगीत से इतर कोई दृष्टि नजर नहीं आ रही थी। संगीत और सिर्फ संगीत जीवन का उद्देश्य बन गया और इसके बाद उनके जीवन का बड़ा हिस्सा यात्रा, अध्ययन, लेखन और संगीत के पुनर्गठन में बीता। उन्होंने अनेक बंदिशें एकत्र की, अलग अलग घरानों की परंपराओं को समझा, पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया, तब एक नई चुनौती उनको महसूस हुई।
0: अलग अलग घरानों में एक ही राग के रूप, बंदिश और प्रस्तुति में भी अंतर मिल सकता था। भातखंडे जी को इन विविधताओं के बीच से संगीत का एक व्यवस्थित व्याकरण निकालना था। ये किसी एक दिन का काम नहीं था, ये दशकों की साधना थी और यही कारण है कि उनके योगदान को केवल 10 थाट देने वाले व्यक्ति के रूप में देखना उनके काम को छोटा कर देना होगा।
1: थाट उनकी विरासत का केवल एक हिस्सा है, उनकी असली विरासत है एक विशाल, जीवंत और विविध संगीत परंपरा को व्यवस्थित ढंग से समझने का प्रयास। उनकी असली विरासत है स्वर लिपि, उनकी असली विरासत है रचनाओं का संकलन, उनकी असली विरासत है संगीत शिक्षा की संस्थागत व्यवस्था, उनकी असली विरासत है संगीत शास्त्र को आधुनिक अध्ययन की भाषा देना।
0: और उनकी सबसे बड़ी विरासत शायद यह है कि उन्होंने हमें सिखाया कि किसी परंपरा से प्रेम करना केवल उसकी प्रशंसा करना नहीं है, उसे सहेज कर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने के लिए अथक प्रयास भी जरूरी है।
1: हम अक्सर इतिहास को महान कलाकारों के नाम से याद करते हैं, तानसेन का नाम लेते हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को याद करते हैं, पंडित भीमसेन जोशी को याद करते हैं, पंडित रविशंकर को याद करते हैं, लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व, उस्ताद अमीर खां, ऐसे असंख्य कलाकारों की आवाजें हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा हैं।
0: लेकिन कलाकारों की उपलब्धियों के पीछे एक पूरी ज्ञान परंपरा भी होती है, उसे लिखने वाले लोग होते हैं, उसे संकलित करने वाले लोग होते हैं, उसे पढ़ाने वाले लोग होते हैं, उसे संस्थागत रूप देने वाले लोग होते हैं।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी उसी परंपरा के महान व्यक्तित्व थे। वे मंच पर खड़े होकर अपने नाम की लोकप्रियता के पीछे नहीं भागे, उन्होंने उस संगीत की नींव मजबूत करने का काम किया जिसे आने वाली पीढ़ियां मंच पर प्रस्तुत करेंगी। इसीलिए उन्हें संगीत का वास्तुकार कहना असंगत नहीं होगा।
0: एक वास्तुकार स्वयं हमेशा उस भवन के भीतर दिखाई नहीं देता, लेकिन भवन की संरचना उसके विचारों को व्यक्त करती है। भातखंडे जी भी कुछ ऐसे ही थे।
1: आज यदि संगीत का विद्यार्थी रागों को एक व्यवस्थित प्रणाली में पढ़ता है तो उस जिसमें भातखंडे की छाप है। यदि विद्यार्थी बंदिश को स्वर लिपि में पढ़कर अभ्यास करता है तो उसमें भातखंडे की छाप है। यदि संगीत के पाठ्यक्रम में सिद्धांत और व्यवहार दोनों साथ पढ़ाए जाते हैं तो उसमें भातखंडे की दृष्टि दिखाई देती है।
0: यदि संगीत के पुराने ज्ञान को पुस्तकों में सुरक्षित देखकर हम आज उसका अध्ययन कर पा रहे हैं तो उसमें भातखंडे की तपस्या का अंश है, और शायद इसी कारण उनके योगदान को समझना आज भी जरूरी है। क्योंकि हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं उसमें सूचना को सुरक्षित करना पहले से आसान है, लेकिन ज्ञान को सही रूप में सुरक्षित करना अभी भी उतना ही कठिन है। एक वीडियो बना लेना दस्तावेजीकरण नहीं है, एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना भी पर्याप्त नहीं है।
1: दस्तावेजीकरण का अर्थ है संदर्भ को समझना, कलाकार को समझना, परंपरा को समझना, उसके स्रोत को दर्ज करना, उसकी विविधताओं को सुरक्षित रखना और उसे ऐसी व्यवस्था में रखना कि भविष्य का विद्यार्थी उसे समझ सके। भातखंडे जी का काम हमें इस गंभीर दस्तावेजीकरण की प्रेरणा देता है।
0: अगर आप संगीत के विद्यार्थी नहीं हैं, सिर्फ शौकिया तौर पर भी जब आप भातखंडे जी की लिखी संगीत की किताबें पढ़ते हैं तो आप संगीत को समझने में मुश्किलों का सामना नहीं करते। बस यही समझ आती है भातखंडे जी की अथक लगन और मेहनत।
1: क्या केवल ये कह देना पर्याप्त है कि हमारी संस्कृति महान है? नहीं, महान संस्कृति को महान बनाए रखने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने यही किया।
0: उनकी कहानी हमें एक और बात सिखाती है, कला केवल कलाकार की नहीं होती, कला के पीछे समाज होता है, गुरु होते हैं, शिष्य होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, और वे लोग भी होते हैं जो चुपचाप अपना पूरा जीवन इस बात में लगा देते हैं कि कला का ज्ञान नष्ट ना हो। भातखंडे जी ऐसे ही व्यक्ति थे।
1: उनका जीवन हमें ये बताता है कि किसी विरासत को बचाने के लिए केवल भावुक होना पर्याप्त नहीं, उसके लिए अनुशासन चाहिए, अध्ययन चाहिए, जिज्ञासा चाहिए और सबसे बढ़कर धैर्य चाहिए।
0: यही कारण है कि उनका नाम भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दिखाई देता है जहां परंपरा ने आधुनिक शैक्षणिक संरचना से संवाद शुरू किया। हमें उस विचार को भी याद करना चाहिए जो उनके जीवन के केंद्र में था, ज्ञान को सुरक्षित करना, परंपरा को समझना और उसे सबके लिए उपलब्ध कराना। क्योंकि संगीत केवल सुनने की चीज नहीं है, संगीत एक ज्ञान परंपरा है, संगीत स्मृति है, संगीत इतिहास है, संगीत अनुभव है, संगीत साधना है। और जब कोई व्यक्ति इस पूरी परंपरा को आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यवस्थित करके छोड़ जाता है तो वह केवल अपने समय की सेवा नहीं करता, वह भविष्य की सेवा करता है।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने भविष्य की सेवा की। एक वकील से संगीत शास्त्री बनने की उनकी यात्रा केवल पेशा बदलने की कहानी नहीं है, ये उस आंतरिक पुकार की कहानी है जिसे उन्होंने पहचाना।
0: इसलिए जब अगली बार किसी राग की चर्चा हो, जब कोई विद्यार्थी सारे गामा लिखकर किसी बंदिश को सीखने का प्रयास करे, कोई बच्चा छोटा ख्याल गुनगुनाए या कोई संगीतज्ञ बड़ी तान लगाए, तब मन ही मन पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को प्रणाम जरूर करिएगा।

0: इसी विचार के साथ कला कल्लोलिनी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है।
1: कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना है अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखक है मनीषा चतुर्वेदी, और मैं हूं आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी,
0: और मैं हूं वर्षा सिंह। लेते हैं इजाजत, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: रेशम का रहस्य, इतालवी एकाधिकार को चुनौती देने की एक नाकाम कोशिश। 18वीं शताब्दी के उच्च स्तरीय फैशन की दुनिया में एक वस्तु में ऐसा रहस्य छिपा था जिसने लंदन के सबसे बड़े व्यापारियों को भी चकित कर दिया था। वह था थ्रोन सिल्क। जहां कच्चा रेशम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, वहीं ऑर्गेन्सिन विलासी कपड़ों के लिए आवश्यक मुड़ा हुआ ताना और धागा बनाने का रहस्य पूरी तरह से इटली के एकाधिकार में था। इटालियन अपनी जल शक्ति से चलने वाली मिलों की सुरक्षा बड़ी कड़ाई से करते थे, जिससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस पकड़ को तोड़ने के लिए एशिया की ओर देखने पर मजबूर होना पड़ा। कंपनी की योजना बेहद आधुनिक और साहसी थी। वे चीन और बंगाल से कच्चा रेशम आयात करेंगे और उसे इतालवी मानकों के अनुरूप तैयार करने का प्रयास करेंगे। चीन के कैंटीन में सुपर कार्गो को सख्त निर्देश दिए गए थे कि रेशम को एक विशिष्ट सूक्ष्मता के साथ रीलों पर लपेटा जाए, ताकि कई एकल धागों को मिलाकर एक ऐसा धागा बनाया जा सके जो इतालवी ट्विस्ट की नकल कर सके। लेकिन इस रहस्य की असली जड़ तकनीकी बदलाव में छिपी थी। 1755 में कंपनी ने बंगाल के उत्पादन में क्रांति लाने के लिए कासिम बाजार में यूरोपीय मशीनें, जिनमें विशेष भट्टियां, तांबे के बेसिन और रीलें शामिल थीं, भेजी। हालांकि इस प्रयोग को एक अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ा। स्थानीय कारीगरों ने यूरोपीय पद्धति को पूरी तरह से विदेशी और शारीरिक रूप से थका देने वाला पाया, क्योंकि इसमें पारंपरिक भारतीय तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक श्रम और ध्यान की आवश्यकता थी। यद्यपि मशीन से काता गया धागा असाधारण रूप से एक समान था, लेकिन इसका उत्पादन करना काफी महंगा साबित हुआ। तकनीकों के इस टकराव ने यह साबित कर दिया कि बेहतरीन रेशम का रहस्य केवल मशीनों में नहीं, बल्कि करघे के पीछे बैठे लोगों की शारीरिक निपुणता और उनकी ऐतिहासिक परंपराओं में भी छिपा था।
0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज है 14 सितंबर का दिन, जिसे प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं।

श्रोताओं, हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं है, ये भावना है जन जन की। भारत ही नहीं, आज दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी को समझते हैं, हिंदी को बोलते हैं। शब्द ब्रह्म है और हमारी हिंदी वो ब्रह्म है जो हर भारतीय की वाणी में प्रवाहित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता संस्कृत में कही थी, लेकिन उसे घर घर तक हिंदी ही लेकर आई। भक्त कवियों की प्रार्थनाएं हिंदी में थीं। तो आइए आज हिंदी दिवस पर हम भी हिंदी की महिमा का यशोगान करें। तेरा ही तुझको है अर्पण, हिंदी को हिंदी में समर्पण। हिंदी की महिमा है भारी, सदा अखंड हो कीर्ति तुम्हारी। भारत की परिभाषा हिंदी, ध्वनि स्वरों की आशा हिंदी। इतिहासों का स्वर्णिम हिंदी, नौनिहालों का आगम हिंदी। भारत का यशगान है हिंदी, भारत का अभिमान है हिंदी। आदि सत्य सनातन हिंदी, संस्कृत सुता सात्विक हिंदी। मैं हिंदी की, हिंदी मेरी, जय हो सदा विजय हो हिंदी। भारत के गौरवमय मस्तक पर शोभित अखंड सुहागिनी हिंदी। आइए अब रिश्तों में हम हिंदी का दर्शन करें। भारत का गौरव है हिंदी, जनमानस में सौरभ हिंदी। वत्सलता आमोद सरसमयी, ममता की लोरी में हिंदी। तुतुलाती जिह्वा पर आया, प्रथम शब्द मां प्राण है हिंदी। शैशव के नैपथ्य में हिंदी, पल पल प्रतिपल समृद्ध हिंदी। भाई बंधु सखा मित्र, माँ माँ नाना नानी सी हिंदी। रिश्तों को रिश्तों में बुनती, भगनी हिंदी जननी हिंदी। हर रिश्ते का भेद बताती, आपस में सम्मान सिखाती। शिष्य गुरु नर नारायण से ज्ञान का क्षितिज बताती हिंदी। आदर सत्कारों में घुलकर नमस्कार सादर है हिंदी। बाबा दादा बुआ ताऊ, चाची मामी मौसी सी हिंदी। तू के निश्चल प्रेम में हिंदी, तुम के अपने पन में हिंदी। आप शब्द सत्कार का सूचक, श्रद्धा पूजा भाव में हिंदी। श्रीमान और श्रीमती में, चिरंजीव सौभाग्यवती में। पूज्य और सम्माननीय में, अटल प्रतिष्ठित हिंदी हिंदी। नानी की परिकथा में हिंदी, दादी की अधरों पर हिंदी। गुंजित मधुमय मोहक हिंदी, इठलाती मधमाती हिंदी। श्वासों की सरिता में हिंदी, जीवन की ललिता में हिंदी। शैशव यौवन और जरा में, अमर बेल सी चढ़ती हिंदी। आइए अब हम हिंदी की सार्वभौमिकता का दर्शन करें। शब्दों का भावार्थ है हिंदी, भावनाओं को शब्द है हिंदी। संस्कारों में दक्षित हिंदी, गुणियों में परिलक्षित हिंदी। कृतज्ञता का भाव है हिंदी, क्षमा दया सद्भाव है हिंदी। ऋणी रहेंगे सदा तुम्हारे, धन्य धन्य है माता हिंदी। भीनी भोर उजास में हिंदी, प्रणवाक्षर के ध्यान में हिंदी। संध्या की गोधुली में हिंदी, निशा काल रात्रि से हिंदी। उषा रविशशि भानु हिंदी, अनल अचल गिरि पावक हिंदी। नक्षत्रों नवग्रहों में हिंदी, गौ गीता गायत्री हिंदी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, धरती हिंदी अंबर हिंदी। ईशान से आग्नेय तक, चहुदिशि सदा सुबासित हिंदी। शीत शिशिर मधुमास में हिंदी, वर्षा ग्रीष्म शरद में हिंदी। प्रकृति के आह्लाद में हिंदी, एकम से पूनम में हिंदी। दसों दिशाएं हिंदी हिंदी, क्षितिज छोर सब हिंदी हिंदी। हर पल हिंदी, हर क्षण हिंदी, सरस सुहानी मधुकर हिंदी। वर्षा की रिमझिम में हिंदी, ऋतुएं तिथियां मौसम हिंदी।
जलवायु परिवर्तन हिंदी, चैत्र आश्विन अगहन हिंदी, वृक्षों की हरियाली हिंदी, पल्लव को पल बल्लर हिंदी, मोती माणिक पन्ना हिंदी, स्वर्ण जड़ित आभूषण हिंदी। आइए अब संगीत और साहित्य में हिंदी का दर्शन करते हैं। सा से षड्ज ऋषभ में हिंदी, ग म प ध नी में हिंदी, न्यास गमक आंदोलन खटका, मुर्की सी लहराती हिंदी, ओमकार आकार में हिंदी, सरगम के अभ्यास में हिंदी, लयकारी तानों में हिंदी, टप्पा ध्रुपद तराना हिंदी, रागों में तालों में तरानों के हर अक्षर में नव हिंदी, दोहे चौपाई छंदों की द्रुत विलंबित लय में हिंदी, छंद समास संधि में हिंदी, नौ रसों के भाव में हिंदी, यत्र तत्र संपूर्ण अपराजित अभिजीत संपूर्ण से हिंदी, अ से अह तक, क से ज्ञ तक, यूं तो है साकार से हिंदी, किंतु ज्ञानी मनीषियों के ज्ञान में निर्विकार से हिंदी, शब्दों से अलंकार है हिंदी, मात्रा से श्रृंगार है हिंदी, लघु से गुरु, गुरु से लघु, आदि से अनंत है हिंदी, जन जन की आस्था में हिंदी, विद्या की पराकाष्ठा हिंदी, गागर में सागर सी हिंदी, सुंदर मधुर परिष्कृत हिंदी, भाषाओं की माता हिंदी, सर्वोत्तम गुरु ज्ञाता हिंदी, लेखों में व्याख्या में हिंदी, पद्यों की सर्वात्मा हिंदी, गद्य में बसी पद्य में रमी, संदर्भ सहित प्रसंग सी हिंदी, उपन्यास जीवनी कथाओं में वैदिक ज्ञान विशारद हिंदी, प्रभु कथा लघु कथा में हिंदी, आयुर्वेद चिकित्सा हिंदी, साहित्य का दर्पण है हिंदी, चिंतन मनन अध्ययन हिंदी, कुशल प्रवक्ता के वाचन में निडर त्वरित तत्पर सी हिंदी, मंझी हुई सी सधी हुई सी मुखर प्रवाहित निर्मल हिंदी, बुंदेली हो या कोई बोली सबको हृदय लगाती हिंदी, पंजाबी उर्दू या सिंधी सबकी सखी सहेली हिंदी, स्वर व्यंजन हर अक्षर हिंदी, नाद ब्रह्म प्रणवाक्षर हिंदी, ज्ञानमयी वेदों की वाणी संस्कृत की हस्ताक्षर हिंदी। श्रोताओं, प्रार्थनाओं से पूजा आरती तक, भक्तों से भगवान तक, नदियों से नगरों तक, आइए अब हम इसी प्यारी सी हिंदी का दर्शन करते हैं। सूरदास मीरा की हिंदी, तुलसी की रामायण हिंदी, भक्ति मुक्ति का मार्ग बताती कल कल कल सरिता सी हिंदी, वेद पुराण योग में हिंदी, सुधामयी गीता में हिंदी, नादमयी सुरभित सी हिंदी, देववाणी की वंशज हिंदी, रोली अक्षत कुमकुम हिंदी, आवाहन पूजन में हिंदी, विनती संकल्पों में हिंदी, अखंड ज्योत सी उज्ज्वल हिंदी, अ उ म को निज ऋण दे भगवान बनाती है ये हिंदी, ओमकार पावन स्वरूप संपूर्ण बनाती शुभ चंद्र बिंदी, प्रातः वंदन आरती हिंदी, कौशिकी दुर्गा भारती हिंदी, सीता राधा गौरी हिंदी, भक्ति शक्ति मुक्ति हिंदी, पुरुषोत्तम नारायण हिंदी, माधव केशव राघव हिंदी, होली राखी दीप मालिका, तीज चतुर्थी नवमी हिंदी, हनुमान के राम में हिंदी, मीरा के घनश्याम में हिंदी, भक्तों के भगवान में हिंदी, मर्यादित साभान है हिंदी, गंगा यमुना कृष्णा हिंदी, कावेरी रेवा में हिंदी, हिंद महासागर सी व्यापक भारत की जलराशि हिंदी, काशी नगरी उज्जैनी में दीप शिखा सी शिवमयी हिंदी, मथुरा धाम शक्तिपीठों में वसुधा की रज रज में हिंदी, भारत के जन एक बराबर समरस की परिचायक हिंदी, एक सूत्र समभाव विमलमन यूं भारत माता सी हिंदी,
देश की ध्वजा पताका हिंदी, जन गण मन अधिनायक हिंदी, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में जय हे जय हे जय हे हिंदी। और अंततः एक व्यंग्य देखिए कि इतनी व्यापकता के बाद भी हमारी हिंदी की आज की ये स्थिति। ज्ञान कोश रत्नाकर हिंदी, हिंदी हर दिन हिंदी, हिंद हो गया हिंदी हिंदी, फिर क्यों घोषित है दिन हिंदी। जग की हर भाषा के स्वर में छिपा हुआ हर शब्द है हिंदी, इतनी अविरल इतनी अविचल, फिर क्यों है कुंठित सी हिंदी। आदि अनादि युगों युगों से भारत की पहचान है हिंदी, फिर भी न जाने क्यों देखो अपनों में लज्जित सी हिंदी। यूं सिमटी सी यूं सकुची सी, अपनों में गुमनाम सी हिंदी, अपने ही अस्तित्व के लिए फिर क्यों है लाचार सी हिंदी। फिर क्यों है लाचार सी हिंदी, फिर क्यों है लाचार सी हिंदी। तो श्रोताओं, ये था आज का विशेष कार्यक्रम हिंदी दिवस पर हिंदी की महिमा। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, वाचन और लेखन भगवती सक्सेना। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, भ्रष्टाचार की सफाई और दीवानी का खेल। क्या आप जानते कि जब लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1765 में कलकत्ता लौटे तो उन्हें एक अनुशासित व्यापारिक केंद्र नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा शहर मिला जिसे उन्होंने कल्पना से परे लालची और विलासी बताया था। पलासी की जीत के बाद यह तथाकथित स्वर्ग से जन्मा सेनापति अपनी प्रसिद्धि और अपनी आयरिश पियरिज यानी कुलीन पद का आनंद लेने के लिए इंग्लैंड लौट गया था, लेकिन पीछे जो बंगाल छूटा था वह भ्रष्टाचार के गर्त में गिर चुका था। क्या आप जानते हैं कि कंपनी के कर्मचारी वह बन चुके थे जिन्हें एडमंड बर्क ने बाद में शिकारी पक्षियों की नई उड़ान कहा था। धन की अदम्य भूख से प्रेरित मामूली वेतन पाने वाले युवा क्लर्क राइटर अचानक राजकुमारों की तरह रहने लगे थे। वे स्थानीय शासकों से भारी उपहार वसूलते थे और दस्तक निजी व्यापार पास के दुरुपयोग के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आतंक फैलाते थे। नवाब का हर बदलाव एक और 5 अंकों वाले इनाम का बहाना बन गया, जबकि कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। लॉर्ड क्लाइव अपने तीसरे कार्यकाल के लिए इस व्यापक भ्रष्टाचार की सफाई करने के जनादेश के साथ आए थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने ही सहयोगियों का शिकार करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी का इस्तेमाल किया? क्लाइव ने उन्हें मनाने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने पार्षदों को उनकी अचानक बड़ी संपत्ति का विवरण देने के लिए बुलाया और हर अधिकारी को भविष्य में उपहार न लेने के लिए एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन क्लाइव के सुधारों में एक अजीब विडंबना थी। क्या आप जानते हैं कि जहां वे ईमानदारी की मांग कर रहे थे वहीं वे खुद अपनी कुख्यात जागीर से सालाना बड़ी रकम प्राप्त कर रहे थे? जब अपमानित पार्षदों ने उन्हें याद दिलाया कि वे केवल उनके द्वारा स्थापित उपहार लेने के उदाहरण का पालन कर रहे थे तो क्लाइव का जवाब अभिजात्यवाद का एक उत्कृष्ट नमूना था। उन्होंने दावा किया कि उनके पुरस्कार वास्तविक सेवाओं के लिए थे, जबकि उनके सहयोगियों के पुरस्कार निम्न श्रेणी के दावों की लूट थे। निजी व्यापार के मुद्दे को हल करने के लिए क्लाइव ने वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए नमक और तंबाकू पर राज्य स्वीकृत एकाधिकार पेश किया। हालांकि इसका उद्देश्य अधिकारियों के लिए कानूनी आय सुनिश्चित करना था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका परिणाम भूखे किसानों के लिए बढ़ी हुई कीमतों के रूप में निकला, जबकि क्लाइव का व्यक्तिगत हिस्सा बहुत बड़ी रकम से भी बहुत ऊपर पहुंच गया था। सबसे बड़ा सुधार तब आया जब क्लाइव ने मुगल सम्राट से दीवानी अर्थात पूरे बंगाल का राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ऐतिहासिक समारोह के लिए इस्तेमाल किया गया सिंहासन वास्तव में क्लाइव की अपनी डाइनिंग टेबल थी, जिसे कठपुतली सम्राट के लिए कपड़े से ढक दिया गया था। इस एक कार्य के साथ कंपनी व्यापारियों की एक साधारण समिति से हटकर एक संप्रभु शक्ति बन गई। अंततः क्लाइव का दूसरा प्रशासन एक दृढ़ और जिम्मेदार कमान थोपने में सफल रहा, लेकिन भ्रष्टाचार का वह अस्तबल पूरी तरह साफ होने से कोसों दूर था। उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ने घूसखोरी के भाईचारे का उल्लंघन किया, जिससे वे कलकत्ता में सबसे नफरत किए जाने वाले व्यक्ति बन गए और यह सुनिश्चित कर दिया कि उनकी ईश्वरीय विरासत का अंत संसदीय महाभियोग के गंभीर गलियारों में होगा।
3: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्ते, मैं हूँ रानी मुखर्जी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: आपने ट्यून किया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। वक्त हो चला है रेडियो रिपोर्ट का।

बसंत प्रिय दक्षिण पवन, देखो कैसे कपकपाए मीरा।

मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने,

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जी। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जी। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जी।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं और इतिहास फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और महान देशभक्त की रोचक कथा लेकर। आज हम बात करेंगे छोटा नागपुर क्षेत्र में ओर मांझी के राजा उमराव सिंह के देशभक्त दीवान शेख भिखारी की, जिन्होंने सन 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण क्रांति में उल्लेखनीय योगदान दिया।
1: शेख भिखारी ओर मांझी से 9 किलोमीटर पूर्व अनगढ़ा थाना के खुदिया लोटवा गाँव में पैदा हुए थे। उन्होंने बचपन से ही युद्ध कला सीखी थी, साथ ही साथ पूर्वजों के अनुभव से प्रशासनिक कुशलता भी हासिल की थी।
0: आज यानी 8 जनवरी और सन 1858 को ही शेख भिखारी शहीद हुए थे। उनकी बहादुरी और प्रशासनिक क्षमता के शौर्य से प्रभावित होकर ओर मांझी खटंगा के राजा उमराव सिंह ने उन्हें अपनी रियासत का दीवान और भंडारी बना दिया था।
1: 1857 की क्रांति में छोटा नागपुर में डोरंडा के सैनिकों ने 31 जुलाई को जमादार माधव सिंह और सूबेदार नादिर अली खां के नेतृत्व में चुटुपालू घाटी में सबसे पहला क्रांति बिगुल बजाया। ये घाटी राजा उमराव सिंह की जमींदारी में ही आती थी।
0: शेख भिखारी सैनिकों के इस कार्य से खासे प्रभावित हुए और उनका उत्साह भी बहुत बढ़ गया। उन्होंने नादिर अली और माधव सिंह को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। ये आश्वासन कोरा नहीं था। उन्होंने विद्रोहियों का सामान ढोने के लिए हाथी, घोड़े और कुलियों का प्रबंध करवाया।
1: साथ ही साथ शेख भिखारी और उमराव सिंह ने चुटुपालू और चारू घाटी को तहस नहस करके उधर का मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया, ताकि अंग्रेजी सेना वापस ना आ सके।
0: विद्रोहियों का आतंक इतना भयानक था कि अंग्रेज कप्तान ग्राहम और 3 अन्य गोरे अफसर हजारीबाग भाग गए। इधर विद्रोही सैनिक सिर्फ 2 तोपों से गोलाबारी करते हुए चुटुपाली के रांची की ओर चल दिए।
1: 2 अगस्त 1857 को विद्रोहियों ने रांची पर कब्जा कर लिया और डर के मारे रांची के जिलाधीश डेविस, जज ओक्स और पलामू के एडीओ बर्च कांके पिठोरिया के मार्ग से भाग खड़े हुए।

0: 1857 की लड़ाई में कई जगहों पर देश के गद्दारों और विश्वासघातियों ने क्रांति मार्ग में विघ्न पैदा करने की कोशिशें की, परंतु शेख भिखारी जैसे दृढ़ निश्चयी वीरों ने हार नहीं मानी।
1: कुछ सिख सेनाएं बिहार और छोटा नागपुर क्षेत्रों में अंग्रेजों की मदद कर रही थी। सिख सेना हजारीबाग में 3-4 दिन तक पड़ाव डाले बैठी थी। इसी बीच शेख भिखारी हजारीबाग जा पहुंचे।
0: तमाम मुश्किलें पार करके शेख ने विश्वनाथ शाहदेव का पत्र उस सिख सेना के मेजर बिशन सिंह तक पहुंचा भी दिया और उन्हें स्वतंत्र सरकार का समर्थन करने को राजी भी कर लिया।
1: हाँ तारीख, पर यह बात कितनी दुखद है कि हमारे देश के क्रांतिवीरों को अपने ही लोगों को अपनी ही स्वतंत्रता के लिए फुसलाना पड़ा, उन्हें लालच देने पड़े।
0: अगर देश में गद्दार मौजूद ही नहीं होते तो हमारा देश गुलामी के इतने बरस नहीं झेलता। और तब क्यों आज भी हम सब ये प्रण ले लें कि देश और मानवता के खिलाफ कभी गद्दारी नहीं करेंगे, तो संसार कितना सुख शांति पूर्ण हो जाए, है ना इतिहास।

0: शेख भिखारी ने छोटा नागपुर में संथालों को अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। संथाल परगना के दो भाइयों सिद्धू और कानू ने तो सन 1855 से ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था।
1: हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में संथालों का शुरू से ही बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें से सुरेंद्र शाह के नेतृत्व में 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग की दोनों जेलों को तोड़कर ढेरों संथाल विद्रोहियों को जेल से रिहा कराया गया।
0: इन संथालों के नेता थे वीर रिपु मांझी, फागु मांझी, रेवजा मांझी, डबर गंझू और अर्जुन मांझी। इनके नेतृत्व में 1857 में हजारीबाग स्वतंत्र करा लिया गया।
1: एक बात सोचो इतिहास, उस समय तो संपर्क के साधन भी नहीं थे, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े देश के कोने कोने से हर इलाके के भील, संथाल, आदिवासी और लोग एक आवाज पर जागरूक हो जाते थे और मदद के लिए आगे भी आते थे।
0: बिल्कुल, उस एकता के जज्बे के कारण ही तो भारत स्वतंत्र हो पाया। कोई भी साधन मौजूद नहीं होने के बावजूद जनशक्ति ही थी जो सबसे बड़ा संपर्क का माध्यम और साधन थी।
1: ऐसी शक्ति को हमारा नमन है और साथ ही हम एक जोश से भरा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
0: हाँ, जरूर।

0: वाह, मजा आ गया ये ताजगी भरा गीत सुनकर। तो तारिक, हम बात कर रहे थे उन पांच वीर संथाली नेताओं की जिन्होंने हजारीबाग स्वतंत्र करवाया था।
1: हाँ, इतना बड़ा कार्य किया और बस अंग्रेजी सरकार की आंख की किरकिरी बन गए। इन पांचों नेताओं को पकड़वाने का ब्रिटिश सरकार ने 100-100 रुपये इनाम घोषित कर दिया।
0: संथाल विद्रोह इतना उग्र था कि हजारीबाग का जिलाधीश मेजर सिम्पसन भयभीत होकर भाग गया और बड़ई में रहने लगा।
1: अंग्रेजों की संथालों के प्रति नफरत बढ़ती रही। आखिरकार आगे चलकर संथालों का ये विद्रोह भी दबा दिया गया। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर संथाल में नरसंहार किया और त्राही त्राही मचा दी।
0: इतना ही नहीं तारीख, मार्ड से लेकर कोला तक लगभग 200 संथाल विद्रोहियों को सरेआम फांसी दे दी गई और संथालों के गांव जला डाले।
1: अंग्रेजी आतंक से भयभीत और पूर्ण रूप से निर्धन हो चुके अधिकांश संथाल उत्तर बंगाल भाग गए। मौका पाते ही 22 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने पुनः रांची पर कब्जा कर लिया।
0: अंग्रेजों को ये मौका इसलिए मिला क्योंकि डोरंडा की विद्रोही सेना रांची से दिल्ली की ओर कूच कर गई थी और रांची में कोई विद्रोही सैन्य शक्ति नहीं बची थी। कुंवर सिंह भी बिहार से अन्यत्र चले गए और अंग्रेजों का रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया।
1: बस फिर क्या था, अंग्रेजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और लगभग अकेले बच गए अपने कट्टर शत्रु शेख भिखारी, उमराव सिंह और उनके भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों को घोर यातनाएं देते हुए निर्दयता पूर्वक रांची लाया गया।
0: ब्रिटिश शासन के लिए मैदान एकदम साफ था। वो दुष्टता और बर्बरता की हदें पार कर रहे थे। बदले की भावना में बौराए अंग्रेज रांची में क्रांतिकारियों को सरेआम फांसी पर लटका रहे थे।
1: छोटा नागपुर के जुडिशियल कमिश्नर विलियम ओक्स ने मद्रास फौज के मेजर मैकडोनल्ड को मौखिक आदेश दिया कि जिस चुटुपालू घाटी और चारू घाटी को शेख भिखारी ने बर्बाद किया है, वहीं उन्हें और राजा उमराव सिंह को एक साथ पेड़ पर जनता के समक्ष फांसी दे दी जाए।
0: जब शेख भिखारी और उमराव सिंह को चुटुपालू घाटी ले जाया गया तो दृश्य देखने जैसा था। हजारों देशभक्त विद्रोहियों के परिवार मार्ग में उमड़ पड़े। इस भीड़ में महिलाएं और पुरुष रोते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। लोगों में भय के साथ साथ उनकी आंखों में एक भयानक आक्रोश साफ साफ देखा जा सकता था।
1: आक्रोश ऐसा था कि जब ये भीड़ मोरहाबादी पहुंची तो मेजर मैकडोनल्ड को आशंका हुई कि मद्रास फौज कहीं डर के भाग न जाए।
0: खतरा भांपते हुए मैकडोनल्ड ने 8 जनवरी 1858 को रांची और मांझी मार्ग में ही मोरहाबादी टैगोर हिल्स के पास एक वृक्ष की दो डालों पर शेख भिखारी और उमराव सिंह को फांसी दे दी।
1: इतना ही नहीं, मैकडोनल्ड ने जनता में भय बनाए रखने के लिए इनके शव एक पेड़ पर लटके रहने देने के आदेश दिए। मोरहाबादी के स्थल को आज भी टुंगरी फांसी के नाम से पुकारा जाता है।
0: फांसी के बाद दोनों शहीदों की संपत्ति जब्त कर ली गई। उनके परिवार अभाव और गरीबी में जीवन व्यतीत करने को मजबूर कर दिए गए। तारीख, जानती हो, अमर शहीद शेख भिखारी के वंशज शेख अलीमुद्दीन रांची के बाजार में मजदूरी करते थे।
1: इतने बड़े संभ्रांत परिवार में जन्मे शेख भिखारी, जिनके पूर्वज शेख बुलंदु खुदिया लोटवा गांव के जमींदार थे और 12 गांवों के मालिक भी। ये 12 गांव उनको औरागढ़ की रानी ने उन्हें उनकी बहादुरी और रामगढ़ सिकदरी घाटी की रक्षा के एवज में उपहार में दी थी।
0: हाँ तारीख, एक तरफ तो ये तथ्य हैं और दूसरी ओर शहीद भिखारी दिवस समारोह समिति की कुछ और ही मान्यता है। वो कहते हैं कि शेख भिखारी का जन्म रांची जिले के बुडबू थाने के होपटे गांव में एक बुनकर परिवार में हुआ था।
1: अरे इतिहास, तारीखें कहती हैं कि अधिकांश किस्से शेख भिखारी के खुदिया लोटवा गांव के होने की पुष्टि करते हैं। यहाँ तक कि डोरंडा कॉलेज रांची के इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं प्रमुख इतिहासविद डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार भी खुदिया ही उनका जन्म स्थान मानते हैं।
0: हमारा उद्देश्य उन वीरों की लड़ाई को सम्मान पूर्वक याद करना है और हम खुद ही लड़ने लगे।
1: चलो भाई, हम अपने श्रोताओं को प्यारा सा गीत सुनवाएं और मन से वीर अमर शेख भिखारी को नमन करें।
0: बिल्कुल तारीख, मैं तुमसे एकदम सहमत हूँ। तो लीजिए हमारा आज का ये अंतिम गीत। ये गीत हमारी और हमारे श्रोताओं की तरफ से शेख भिखारी को श्रद्धांजलि स्वरूप है।
1: और श्रोताओं, जैसा हमने पहले भी बताया था, आज शेख भिखारी की पुण्यतिथि है। हम उनकी शहादत को शत शत नमन करते हैं।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत
3: और कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए
2: नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। आप सभी को मनीषा
1: और विजयकांत का नमस्कार। श्रोताओं, साहित्य केवल शब्दों का संसार नहीं होता। साहित्य वह आईना है जिसमें किसी समाज का जीवन, उसकी पीड़ा, उसके संघर्ष, उसकी संवेदनाएं और उसके सपने दिखाई देते हैं।
0: श्रोताओं कहते हैं, एक सच्चा लेखक वही होता है जो समाज को केवल दूर से नहीं देखता बल्कि उसके बीच जाकर उसके सुख दुख को महसूस करता है, जो गांव की पगडंडियों पर चलते हुए वहां के लोगों की जिंदगी को समझता है, जो जंगलों की खामोशी में छिपी आवाजों को सुनता है, जो साधारण इंसान के संघर्षों में असाधारण कहानियां तलाशता है, और जब वो इन अनुभवों को शब्द देता है तो साहित्य केवल कहानी नहीं रह जाता, वो समाज का आईना बन जाता है।
1: और आज हम ऐसे ही महान साहित्यकार की स्मृतियों की जीवन यात्रा पर चलेंगे जिन्होंने अपने लेखन में ओडिशा के गांवों, जंगलों, आदिवासी अंचलों और सामान्य जनजीवन को इतनी गहराई से चित्रित किया कि उनके पात्र कागज से निकलकर हमारे सामने जीवंत हो उठते हैं। श्रोताओं, आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है ओडिया साहित्य के महान साधक, कथा शिल्पी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार गोपीनाथ मोहंती को।
0: गोपीनाथ मोहंती जी का जन्म 20 अप्रैल सन 1914 को उड़ीसा के छोटे से गांव नागबली में हुआ था, जो महानदी के किनारे स्थित है। इनके पिता सूर्यनाथ मोहंती एक विलक्षण व्यक्ति थे। गोपीनाथ मोहंती को अपने पिता का साथ अधिक समय तक नहीं मिला। जब वे मात्र 12 वर्ष की अवस्था में थे तभी पिता उन्हें अनाथ छोड़कर चल बसे, लेकिन बालक गोपीनाथ की प्रकृति और जीवन के प्रति उनकी दृष्टि को उतने समय में ही दिशा रूप दे गए।
1: जब तक पिता जीवित रहे गोपीनाथ मोहंती की स्कूल की पढ़ाई सोनपुर में चली। पिता की मृत्यु के बाद वे भाई के पास पटना चले गए। यहीं से 1930 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर वे कटक गए और रेवेंशा कॉलेज से 1936 में अंग्रेजी में एमए की डिग्री प्राप्त की।
0: उनका बचपन उस समय बीता जब भारत सामाजिक और राजनीतिक बदलावों के दौर से गुजर रहा था। देश में स्वतंत्रता आंदोलन की लहर थी और समाज में भी धीरे धीरे नई चेतना जन्म ले रही थी। ओडिशा का जीवन अपनी विशिष्ट परंपराओं, गांव, जंगलों और जनजातीय समुदायों से गहराई से जुड़ा हुआ था।
1: गोपीनाथ मोहंती ने इसी परिवेश को करीब से देखा। बचपन से ही उन्हें पढ़ने और साहित्य में गहरी रुचि थी। किताबें उनके लिए केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, वे किताबों के माध्यम से दुनिया को समझने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे उनके भीतर एक ऐसा लेखक आकार लेने लगा जो जीवन को बहुत गहराई से देखता था।
0: गोपीनाथ मोहंती जी ने 1923 में गांव छोड़ दिया था जब पिता नौकरी के लिए सोनपुर गए थे। उसके बाद वो थोड़े थोड़े दिनों के लिए कभी कभार ही गांव आए, किंतु नागबली और आसपास के ग्रामीण परिवेश में बिताया हुआ छुटपन का काल उनकी चेतना पर सदा के लिए अंकित हो गया था और उनके उपन्यासों के लिए एक अद्भुत ढांचा प्रस्तुत करता रहा। इसी काल की एक अन्य बड़ी देन ये हुई कि ग्रामीण और कुलीन दोनों समाजों में उठने बैठने के फलस्वरूप उनकी भाषा का विपुल भंडार ही नहीं बढ़ा बल्कि उसमें बोलचाल की रंगत और मुहावरेदारी की छटा भी आ गई।
1: गोपीनाथ मोहंती का जन्म उस दौर में हुआ था जब भारत एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव से गुजर रहा था। ओडिशा भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं था। एक ओर सदियों पुरानी परंपराएं और ग्रामीण जीवन अपनी जगह बनाए हुए थे तो दूसरी ओर समाज धीरे धीरे आधुनिकता की ओर कदम बढ़ा रहा था और इसी बदलती परिवेश ने गोपीनाथ मोहंती के व्यक्तित्व और उनकी साहित्यिक दृष्टि को गहराई से प्रभावित किया।
0: बचपन से ही गोपीनाथ मोहंती जी को पढ़ने लिखने में विशेष रुचि थी। किताबों की दुनिया उन्हें आकर्षित करती थी और धीरे धीरे यही रुचि उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। शिक्षा ने उनके विचारों को व्यापक बनाया और उन्हें समाज को एक अलग नजरिए से देखने की दृष्टि भी दी।
1: आगे चलकर उन्होंने ओडिशा प्रशासनिक सेवा यानी ओएएस में कार्य किया। प्रशासनिक सेवा उनके लिए केवल नौकरी नहीं थी बल्कि समाज को करीब से जानने और समझने का एक अवसर भी था। अपने कार्य के दौरान उन्हें गांवों में रहने वाले लोगों, आदिवासी समुदायों और समाज के अलग अलग वर्गों के बीच जाने का मौका मिला, पर यही उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि अब उनके सामने समाज केवल किताबों में पढ़ी जाने वाली चीज नहीं था, वह समाज उनके सामने जीवंत रूप में था।
0: गांव के लोग, गरीब परिवार, किसानों का संघर्ष, आदिवासी समुदायों का जीवन, जंगलों पर निर्भर लोगों की परेशानियां और बदलते समय के बीच अपनी परंपराओं को बचाए रखने की कोशिश करता समाज, गोपीनाथ मोहंती ने इन सब को बहुत करीब से देखा। उन्होंने लोगों की बातें सुनी और उनके जीवन को समझने का प्रयास किया। यही अनुभव आगे चलकर उनके साहित्य की सबसे बड़ी ताकत बने।
1: उन्होंने लोगों को सिर्फ एक अधिकारी की नजर से नहीं देखा बल्कि एक संवेदनशील इंसान और लेखक की नजर से भी समझा। उनके सुख दुख, संघर्ष, सपने और जीवन की छोटी छोटी खुशियां उनके मन पर गहरी छाप छोड़ती चली गईं, और यही अनुभव आगे चलकर उनके साहित्य की सबसे बड़ी ताकत बना। गोपीनाथ मोहंती ने भारत को केवल किताबों के पन्नों पर नहीं देखा था, उन्होंने उसे अपने आसपास जिया और महसूस किया था। इसलिए उनके लेखन में हमें जीवन की सच्चाई, मिट्टी की खुशबू और आम इंसान के संघर्षों की गहरी अनुभूति दिखाई देती है।
0: श्रोताओं, उनकी रचनाओं में पात्र केवल काल्पनिक चरित्र बनकर नहीं आते बल्कि वे हमें अपने आसपास के जाने पहचाने लोगों जैसे लगते हैं। उनके दर्द में समाज की पीड़ा दिखाई देती है और उनके सपनों में बेहतर जीवन की उम्मीद। शायद यही वजह है कि गोपीनाथ मोहंती का साहित्य आज भी पाठकों के मन को छूता है। उन्होंने शब्दों के माध्यम से उन लोगों की आवाज को सामने रखा जिनकी जिंदगी अक्सर समाज की मुख्य धारा में अनसुनी रह जाती है।
1: 1930 से 1938 के बीच का समय गोपीनाथ मोहंती के लेखक जीवन का निर्माण काल माना जा सकता है। तीन प्रभावों की छाप उन पर पड़ रही थी, दो पश्चिम के और एक भारत का। मार्क्स व रूसी क्रांति और फ्रायड पश्चिम के प्रभाव थे और महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन भारत का प्रभाव था। गोपीनाथ गंभीर व व्यापक अध्ययन में लगे रहते। रोमिया रोलां और मैक्सिम गोर्की उन्हें विशेष प्रिय और प्रभावित करते थे। वे उन दिनों साहित्यिक विधा रूप में नए नए प्रयोग किया करते और प्रचलित रूमानी अभिरुचियों का खुला विरोध करते थे। गोपीनाथ मोहंती ने 1936 में एकाग्र भाव से लिखना प्रारंभ किया और दो वर्ष उनके प्रथम उपन्यास मन गहिरर चाश को पूरा करने में लगे।
0: इनके द्वारा रचित एक उपन्यास अमृतर संतान के लिए उन्हें सन 1955 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार ओडिया से सम्मानित किया गया। इन्हें 1973 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको भारत सरकार द्वारा 1981 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गोपीनाथ मोहंती जी ने अपने 55 साल लंबे साहित्यिक कैरियर में 24 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 3 नाटक तथा 2 बायोग्राफी एवं कंध, गढ़ाबा, शौरा आदिवासियों की भाषाओं पर 5 पुस्तकें लिखने के साथ साथ लियो टॉलस्टॉय के उपन्यास वॉर एंड पीस तथा टैगोर के उपन्यास जोग जोग का ओडिया में अनुवाद किया। मोहंती केवल एक लेखक नहीं थे बल्कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह काम करते थे। सरकार द्वारा 1981 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।
1: आपके उपन्यास मन गहिरा चांस 1940, दादी बूढ़ा 1944, परजा 1945, दाना पानी 1958, हाई टाइड एब टाइड द एंस्टर के नाम से फेवर एंड फेवर यूके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, लॉर्क बुक्स इत्यादि से प्रकाशित हुए। और यहाँ कहानी संग्रह घासर फूल 1951, पोड़ा कपाल 1951, नववधु 1952, छाई अलव 1956, रणथंदोल 1963, गुप्त गंगा 1967, नाम मनिनाही 1968, उदंता खई 1977, मनल निया 1979, सात पाँच 1989, शरशैया 1991, तिनिकाल 1993, वघेई 1995, गोपीनाथ मोहंती के श्रेष्ठ गल्प 1996 इत्यादि। आपकी भाषा काव्यमयी होने के साथ स्वत स्फूर्त भी थी।
0: गोपी बाबू की तीन श्रेष्ठ रचनाओं ने सबसे अधिक ख्याति अर्जित की है, परजा, अमृतर संतान और माटी मटाल। परजा में कोरापुट जिले की एक छोटी सी निर्धन आदिवासी बस्ती का छवि अंकन किया गया है। पूरे कबीले का विवरण देने के लिए वहां के एक परिवार को माध्यम बनाया गया है, जिसे प्रतिकूल परिस्थितियों के भंवर जाल में घूम घूम कर तब तब घेरा जाता है जब तक वह विनिष्ट नहीं हो जाता। परजा जनजाति के शोषण और उनके भूमि से जुड़ाव की मार्मिक कहानी है। अमृतर संतान का दृश्य चित्र और अधिक व्यापक है, इसका गठन भी जटिल है, पर यहाँ भी एक ही परिवार को कथा केंद्र बनाया गया है और घटना स्थल भी एक गांव है। लेकिन आदिवासियों की जिस कोण जाति को यहाँ लिया गया है, वो चूंकि बहुत प्राचीन, जनसंख्या में भी बड़ी और अपनी एक नियत जीवन प्रणाली वाली है, इसलिए कथा सूत्र स्वभावतः चिंतन प्रधान हो गया है। कंद जनजाति के जीवन पर केंद्रित ये उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है।
1: माटी मटाल गोपीनाथ मोहंती का सबसे भव्य और महाकाव्यात्मक उपन्यास है। 1964 में प्रकाशित इस वृहद आकार उपन्यास के लिए उन्हें 1973 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 3,20,000 शब्दों का यह उपन्यास उड़िया भाषा का संभवतः सबसे पहला लंबा उपन्यास है, जिसे पूरा करने में लेखक को लगभग 10 वर्ष का समय लग गया। उड़िया ग्राम जीवन का इसे एक महाकाव्य माना जाता है। इतना विस्तृत और भाषा सौंदर्य युक्त कोई उपन्यास उड़िया में पहले नहीं लिखा गया। विचित्र बात यह है कि कथानक के नाम पर केवल एक बाह्य रेखाकृति दी गई है और जो दो प्रमुखतम चरित्र हैं, नायक और नायिका, उन्हें अद्भुत रूप से अल्पभाषी बनाकर प्रस्तुत किया गया है।
0: श्रोताओं, लगभग 1,000 से अधिक पन्नों का ये उपन्यास केवल कुछ पात्रों की कहानी नहीं है, बल्कि ये ओडिशा के पूरे ग्रामीण जीवन, उसके रीति रिवाज, त्योहारों, संघर्षों और मिट्टी से इंसानी जुड़ाव का जीवंत दस्तावेज है। मोहंती जी ने मिट्टी को केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीवनदायिनी माँ के रूप में दर्शाया है, जो इंसान को उसकी जड़ों से जोड़े रखती है। इसमें ग्रामीण ओडिशा की प्रामाणिक बोलचाल की भाषा, लोक संस्कृति और सामाजिक समस्याओं को बेहद स्वाभाविक रूप से उठाया गया है।
1: कहानी पर विनोबा भावे के भूदान आंदोलन और गांधीवादी विचारों का गहरा प्रभाव दिखता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे स्वार्थ और धन की होड़ के बीच भी कुछ लोग मिट्टी यानी जमीन से जुड़कर समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाते हैं। उपन्यास के केंद्र में रवि और छवि हैं। रवि एक आदर्शवादी और सेवाभावी युवक है, जो उच्च शिक्षा के बाद शहर की चकाचौंध को छोड़कर गांव के विकास और लोगों को एकजुट करने के काम में जुड़ जाता है। छवि उसकी प्रेमिका और वैचारिक संगनी है, जो उसके इस मिशन में उसे संबल देती है।
0: डॉक्टर गोपीनाथ मोहंती जी ने 4 दशकों से अधिक समय तक उड़िया साहित्य पर अपना प्रभुत्व जमाया और उन्हें भारत के महानतम गद्य लेखकों में से एक माना जाता है। उपन्यास स्वतंत्रता के बाद 1950 के दशक में ये उपन्यास लिखा गया था। उड़ीसा के ग्रामीण इलाके में आ रहे सामाजिक, आर्थिक और नैतिक बदलावों का विस्तृत चित्र खींचता है।
1: दादी बूढ़ा 1944, यह आदिवासियों के पारंपरिक जीवन पर आधुनिकता के प्रभावों को रेखांकित करता है। उनके उपन्यासों, विशेषकर परजा और दादी बूढ़ा में इस बात का गहराई से वर्णन है कि कैसे आधुनिकता, साहूकारी प्रथा और प्रशासनिक शोषण के कारण आदिवासियों की मासूम दुनिया और उनकी जमीन तबाह हो गई।
0: उड़ीसा के भूदृश्य, जीवन शैली, संस्कृति और विरासत के लगभग सभी पहलू, जिनमें आदिवासी क्षेत्र भी शामिल हैं, उनकी जादुई कलम से जीवंत हो उठे। वे हर मायने में पथ प्रदर्शक थे और उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी, चाहे वो उपन्यासों और लघु कथाओं में गद्य शैली हो या फिर पात्रों पर प्रकाश डालना हो।
1: गोपीनाथ मोहंती की भाषा उनके साहित्य की विशेष पहचान है। उनकी भाषा में ओडिशा की धरती की खुशबू महसूस होती है। उन्होंने स्थानीय जीवन, लोक भाषा और जनजीवन के अनुभवों को साहित्य में सम्मान दिया। उनका लेखन हमें यह याद दिलाता है कि साहित्य उस किसान का भी है जो मिट्टी में पसीना बहाता है, उस गरीब परिवार का भी है जो सीमित साधनों में अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखता है, और उस सामान्य इंसान का भी है जिसकी आवाज कई बार समाज में दब जाती है।
0: उन्होंने जिस नई गद्य शैली का परिचय दिया वो जीवंत और सशक्त है। इसमें ग्रामीणों की बोलचाल की भाषा से सावधानी पूर्वक चुने गए शब्दों का प्रयोग किया गया है और अमूर्त विचारों या कोमल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुशलता पूर्वक संयोजित किया गया है। उड़ीसा के आदिवासियों पर उनके अग्रणी कार्यों और लेखन को व्यापक मान्यता प्राप्त है और इसमें उन्हें अग्रणी मानव विज्ञानी के रूप में स्थापित किया है।
1: उड़िया साहित्य में फकीर मोहन सेनापति के बाद गोपीनाथ मोहंती, सुरेंद्र मोहंती और मनोज दास को आधुनिक उड़िया कथा साहित्य का मुख्य स्तंभ माना जाता है, जिन्होंने कहानियों में व्यक्तिगत चेतना को प्रमुखता दी। मोहंती ने पारंपरिक कठिन उड़िया भाषा की जगह आम ग्रामीणों और आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली जीवंत बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाया। उन्होंने अमेरिका के सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में मानव विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। साहित्य के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण 1981 में सम्मानित किया।
0: गोपीनाथ मोहंती जी एक असाधारण प्रतिभा के विद्वान थे। आप एक उत्साही पाठक भी थे। उनकी पढ़ने की रुचि भाषा और विषय वस्तु दोनों ही दृष्टियों में व्यापक थी। उन्होंने पुस्तकों और ताड़ के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों का एक विशाल और दुर्लभ संग्रह छोड़ा है। अगस्त 20, 1991 को गोपीनाथ मोहंती जी इस संसार से विदा हो गए। लेकिन महान साहित्यकार की मृत्यु नहीं होती, उनकी देह जाती है, उनकी आवाज नहीं। उनकी पीढ़ी समाप्त होती है, लेकिन उनकी रचनाएं नई पीढ़ियों से संवाद करती रहती हैं। और आज भी जब हम उड़ीसा के ग्रामीण जीवन, आदिवासी समाज, प्रकृति और मनुष्य के संघर्ष की बात करते हैं, तो गोपीनाथ मोहंती का साहित्य हमारे सामने एक महत्वपूर्ण संदर्भ बनकर उपस्थित होता है।
1: श्रोताओं, गोपीनाथ मोहंती की जीवन यात्रा हमें यह एहसास कराती है कि साहित्य केवल शब्दों का संसार नहीं, बल्कि इंसानी संवेदनाओं को समझने का माध्यम भी है। उन्होंने अपने आसपास के समाज को बेहद करीब से देखा, लोगों के जीवन को महसूस किया और उनके संघर्षों, उनके सपनों और उनकी उम्मीदों को अपनी रचनाओं में जगह दी। यही कारण है कि उनके साहित्य में हमें केवल कहानियां नहीं बल्कि जीवन की सच्ची धड़कन सुनाई देती है।
0: गोपीनाथ मोहंती जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शब्द आज भी जीवित हैं। उनकी रचनाएं हमें उस समाज से रूबरू कराती हैं जिसे समझने के लिए केवल आंखों से देखना नहीं बल्कि दिल से महसूस करना पड़ता है। तो आइए उनके साहित्य से यही सीख अपने साथ लेकर चलें कि मनुष्य को समझना ही साहित्य को समझना है और संवेदना ही इंसानियत की सबसे खूबसूरत पहचान है।
1: श्रोताओं, आज हमने जाना एक ऐसे साहित्यकार के बारे में जिसने कलम को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बनाया, उन्होंने कलम को समाज की आवाज बनाया। उन्होंने मिट्टी की खुशबू को शब्द दिए, उन्होंने जंगलों की खामोशी को आवाज दी, उन्होंने जनजातीय और ग्रामीण जीवन के संघर्षों को साहित्य का विशेष विषय बनाया। उन्होंने ये साबित किया कि महान साहित्य वही है जो मनुष्य को मनुष्य के और करीब ले आए।
0: गोपीनाथ मोहंती एक संवेदनशील दृष्टि और उड़िया साहित्य की अमूल्य धरोहर, उनकी स्मृति को नमन करते हुए आइए साहित्य के प्रति अपने प्रेम को बनाए रखें और उन रचनाकारों को पढ़ें जिन्होंने हमारे समाज को समझने की दृष्टि दी। इसी संदेश के साथ आज के इस विशेष साहित्यिक कार्यक्रम से अब अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और साहित्यकार की जीवन यात्रा, रचनाओं और विचारों के साथ।
1: शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे ओडिया साहित्य के महान साधक और कथा शिल्पी पद्मभूषण गोपीनाथ मोहंती जी के। इसी भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ हम आपसे अनुमति लेते हैं। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, वाचक स्वर विजयकांत नायक और
0: मनीषा चतुर्वेदी,
1: आलेख विनीता जैन का, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की। तो सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विदेश से कीर्ति एवं अनुभव अर्जित कर इन दोनों को स्वदेश की सेवा में लगने का संकल्प लिए हुए स्वामी जी कोलंबो में पदार्पण करने के साथ ही अपने लक्ष्य साधन में लग गए। स्वदेश की कल्याण कामना तथा उचित कार्य प्रणाली खोज निकालने का प्रयास वे पहले भी कर चुके थे, परंतु अब उनके व्यक्तित्व तथा भाव व्यक्त करने की क्षमता में एक ऐसा परिवर्तन आ चुका था जिसके फलस्वरूप लगता था सफलता तो उनकी मुट्ठी में। रामनाथ से चलकर परमकुड़ी, मानमदुरा, मदुरा, त्रिचनापल्ली व तंजोर आदि नगरों में अनेक प्रकार से अभिनंदित होकर स्वामी जी ने कुंभकोणम में पदार्पण किया। वहां के निवासी स्वामी जी को 2 अभिनंदन पत्र भी दिए। वहां भी उनके भाषण हुए और 3 दिन वहां विश्राम कर स्वामी जी मद्रास की ओर रवाना हो गए।
1: स्वामी जी मद्रास आ रहे हैं, ये समाचार पाकर मद्रास के निवासी उनकी सादर अभ्यर्थना के लिए पहले से ही तैयार हो गए। प्रत्येक भवन के शिखर पर रंग बिरंगे झंडे फहराने लगे। राजपथों को बड़े बड़े तोरणों से सुसज्जित किया गया तथा सारी मद्रास नगरी अपूर्व रूप से सुशोभित होकर स्वामी जी की सादर अभ्यर्थना के लिए साग्रह प्रतीक्षा करने लगी।
0: 6 फरवरी प्रातः काल ही नगर निवासी दल के दल रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आते ही सहस्र कंठों से निकली हुई जय ध्वनि ने आकाश को विदीर्ण कर दिया। स्वामी जी की जय, भारत माता की जय।
1: स्वामी जी के उतरते ही उन्हें पुष्प मालाओं से सज्जित कर दिया गया। उसके बाद उन्हें गाड़ी में बिठाकर कैसल करनान नामक विशाल भवन की ओर ले चले। कुछ दूर जाकर उत्साही युवकों ने गाड़ी से घोड़ों को अलग कर दिया और स्वयं खींच कर ले जाने लगे। फूलों की वर्षा हो रही थी, जय घोष हो रहे थे। महिलाएं सड़क पर ही पंच प्रदीप से उनकी आरती उतार रही थी। एक वृद्ध महिला सामने आकर स्वामी जी के दर्शन कर भाव विभोर उठी।
0: स्वामी जी के आगमन से सारा मद्रास शहर जिस तरह झूम उठा था, उसके संबंध में हिंदू संवाद पत्र ने लिखा था,
2: आज रेलवे स्टेशन पर स्वामी विवेकानंद की अभ्यर्थना के लिए उपस्थित विराट जनसमूह के उत्साह व धर्मानुराग का उचित रूप से वर्णन करना संभव है। मद्रास के प्रमुख व्यक्तियों ने उपस्थित होकर विश्वविख्यात सन्यासी का जो गौरवपूर्ण स्वागत किया है, इसमें इस महादेश की अंतर्निहित धार्मिक शक्ति स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई है। भारत में धर्म संस्कार को चिरकाल से ही इसी प्रकार की अभ्यर्थनाएं प्राप्त हुई हैं। कट्टरपंथी हिंदू जाति के चरित्र की विशेषता नहीं है और यह भी नहीं है कि वर्तमान आचार व्यवहारों का परिवर्तन अवांछनीय है। यदि किसी पुरानी प्रथा को दूर कर किसी नए नियम का प्रचार करना हो तो स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति को ही अधिकारी बनकर उसे संपन्न करना चाहिए। जब कोई धीर हृदय पवित्र आत्मा तथा सच्चा संस्कारक निष्काम होकर व्यक्तिगत उद्देश्य सिद्धि की इच्छा को छोड़कर जन कल्याण के उद्देश्य से दृढ़ता के साथ अग्रसर होता है तो आचार नियम शून्य में लुप्त हो जाते हैं। चिरकाल की धारणाएं व आदर्श आवश्यकता अनुसार दूर फेंक दिए जाते हैं तथा बद्ध मूल रूढ़ियां, राजनीति व मतवाद विलुप्त हो जाते हैं।
3: स्वामी जी के प्रचार कार्य की सफलता का यही एक रहस्य है। समुद्र लांग कर वे विदेशों में वेदांत का झंडा उठाकर ले गए थे, इसलिए हम चिराचरित प्रथा के अनुसार उनकी सादर अभ्यर्थना कर रहे हैं। उनके प्रति हमारी सादर श्रद्धा के साथ हमारा विश्वास है कि पाश्चात्य देशों में उनके द्वारा जिस प्रकार वहां की जनता का कल्याण हुआ है, उसी प्रकार उनके द्वारा इस देश में भी जन साधारण का विशेष कल्याण होगा।
1: दूसरे दिन मद्रास के विक्टोरिया हॉल में 5,000 श्रोताओं के सम्मुख उन्होंने मेरी समर नीति शीर्षक पर प्रसिद्ध भाषण दिया। इसके बाद क्रम से भारतीय जीवन में वेदांत का प्रयोग, भारतीय महापुरुषगण, हमारा वर्तमान कर्तव्य तथा भारत का भविष्य शीर्षक पर 4 भाषण दिए। इसी समय एक दिन एक बड़े विद्वान स्वामी जी के साथ वेदांत के संबंध में चर्चा करने के लिए आए। स्वामी जी का कथन सुनकर उन्होंने कहा,
2: स्वामी जी वेदांत के अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद आदि सभी प्रकार के मतवाद सत्य हैं तथा ये चरम उपलब्धि के पथ में भिन्न भिन्न सीढ़ियां हैं। ये बात तो पहले किसी भी आचार्य ने नहीं कही।

0: कार्य मेरे लिए ही नियत था, इसीलिए तो मैंने जन्म लिया है।
1: स्वामी जी जिस समय पाश्चात्य देशों में धर्म प्रचार के कार्य में नियुक्त थे, ठीक उसी समय मद्रास के भक्त युवकों ने नाना प्रकार की निंदा, व्यंग और विरोधिता को सुनकर भी अविचलित रहकर स्वामी जी द्वारा प्रदर्शित पद्धति से वेदांत के प्रचार कार्य में आत्मनियोग किया था। आज 4 वर्ष के बाद उनके आराध्य देव के स्वदेश लौटने के उपलक्ष में मद्रास नगरी 9 दिन के विराट महोत्सव का आयोजन कर रही है। ये देख उन युवकों के आनंद की सीमा न रही। शिष्यगण मद्रास में स्थायी रूप से एक प्रचार केंद्र की स्थापना करने की बात सोचने लगे। मद्रास के प्रतिष्ठित व्यक्ति जन साधारण द्वारा आग्रह के साथ यह प्रस्ताव अनुमोदित करने पर उन्होंने स्वामी जी के पास अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की और अनुरोध किया कि उस प्रचार केंद्र की स्थापना के लिए वे मद्रास में कुछ दिन और ठहरे।
2: प्रचार केंद्र की स्थापना के संकल्प का स्वामी जी ने बड़े आनंद के साथ अनुमोदन किया और वचन दिया कि इस कार्य के लिए वे शीघ्र ही एक सुयोग्य गुरु भाई को मद्रास भेज देंगे। तदनुसार थोड़े ही दिनों के बाद स्वामी रामकृष्णानंद ने आकर मद्रास का कार्यभार ग्रहण किया। इसी बीच इधर कलकत्ते से आग्रह पूर्वक आमंत्रण आने लगे। विशेष रूप से श्री रामकृष्ण देव का जन्मोत्सव भी निकट जानकर गुरु को चाहने वाले शिष्यों तथा स्वामी जी के मित्रों ने दुखी होकर उन्हें कलकत्ता जाने के लिए विदा दी।

0: लगभग 4 वर्षों तक अमेरिका यूरोप में रहने पर स्वामी जी को भारत के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई थी। वतन से दूर रहने पर उनका देश प्रेम और भी ज्यादा दृढ़ हुआ। भारत के निर्धन जनसाधारण के आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष को ऊपर उठाने का प्रण और भी स्पष्ट और बलशाली हो गया था। बहुत दिनों तक भारत के गांव-गांव तथा नगर-नगर में भ्रमण कर स्वामी जी ने जनसाधारण की सामाजिक व अर्थनैतिक दुर्गति का गंभीर सहानुभूति से निरीक्षण किया था। और जैसा हम पहले कह चुके हैं, स्वामी जी का विश्वास नष्ट हो चुका था कि उन्नति के लिए राजा, महाराजा, धनी व उच्च वंशियों द्वारा किसी प्रकार से स्थायी रूप में कोई सहायता नहीं मिल सकेगी। स्वामी जी को विश्वास था कि दाता के आसन पर बैठकर केवल दूर से ही पाश्चात्य लोकहित के आदर्श पर स्कूल, कॉलेज व अस्पतालों की स्थापना कर देने से ही जनसाधारण की उन्नति नहीं होगी, और दाता या उद्धारकर्ता के रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में अन्य वस्त्र, विद्या वो ज्ञान लेकर जन साधारण के बीच श्रद्धा के साथ कर्म करने के लिए दृढ़ हृदय कर्मियों की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रचारित सेवा धर्म की उत्पत्ति उन्हीं तत्वों से हुई है। इसी चिंतन से उन्होंने भारतवर्ष की सेवा के लिए चरित्रवान, हृदयवान वो बुद्धिवान युवकों का आह्वान किया।
1: भारत के निर्धन, भारत के पतित, भारत के पापियों की सहायता करने वाला कोई मित्र नहीं। राक्षस की तरह निर्दयी समाज उन पर लगातार आघात करता रहा है, परंतु वे बेचारे नहीं जानते कि कहां से वो आघात आ रहा है। वे ये भी भूल गए हैं कि वे मनुष्य हैं और इसका परिणाम है दासत्व व पशुत्व।
2: समाज की इसी हीन अवस्था के प्रतिकार के लिए वे चाहते थे।
1: लाखों नरनारी पवित्रता के अग्निमंत्र में दीक्षित होकर विश्वास रूपी कवच को धारण कर निर्धन, पतित व पद दलितों के प्रति सहानुभूति से उत्पन्न साहस के साथ कमर कसकर समस्त भारत का भ्रमण करें तथा मुक्ति, सेवा और समाज की उन्नति व समानता के संदेश को घर घर में प्रचार करें।
0: इस महान व्रत के लिए स्वामी जी ने जिन्हें बुलाया उन्हें विशेष रूप से ये याद रखने के लिए कहा।
1: प्रतिष्ठित उच्च पदस्थ अथवा धनियों पर कोई भरोसा ना रखो, भरोसा तुम्हारे ही ऊपर है। पद मर्यादा ही निर्धन किंतु विश्वासी तुम ही लोगों पर भरोसा है। मैं 12 वर्ष तक हृदय में इस भार को और मस्तिष्क में इस चिंता को लेकर घूमा हूं। मैं तथा कथित अनेक धनी व बड़े आदमियों के घर गया हूं, उन्होंने मुझे पाखंडी समझा है। लगभग 1 शताब्दी से हमारा देश समाज संस्कारकों तथा उनके तरह तरह के समाज संस्कार संबंधी प्रस्तावों से श्रस्त होता रहा है, परंतु साथ ही ये भी स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि 100 वर्ष के संस्कार आंदोलन द्वारा समग्र देश का कोई भी स्थायी कल्याण सिद्ध नहीं हुआ है। गत शताब्दी में जिन सब संस्कारों के लिए आंदोलन हुआ है उनमें से अधिकांश दिखावे के ही थे। संस्कार की वे चेष्टाएं केवल उच्च वर्णों से संबंधित थीं, अन्य वर्णों से नहीं। संस्कार करना हो तो ऊपर ऊपर देखने से काम ना बनेगा, भीतर प्रवेश करना होगा, जड़ तक जाना होगा। 10 वर्षों से भारतवर्ष के अनेक स्थानों में घूम फिरकर मैंने देखा कि समाज सुधार के लिए सभाओं तथा समितियों से देश छा गया है, परंतु असल में जिनका रक्त चूसकर भद्र कहलाने वाले व्यक्तिगण भद्र पुरुष बने बैठे हैं उन निर्धन सर्वहारा वर्ग के लोगों के लिए कोई सभा मैंने कहीं नहीं देखी।
0: स्वामी जी ने अपने पूर्ववर्ती समाज सुधारकों की दोष त्रुटियों को निर्भीकता के साथ दिखाते हुए इस सिद्धांत पर पहुंचने के लिए मजबूर हुए कि
1: सुधारकों का उद्देश्य व्यर्थ हुआ है, और इसका कारण यह है कि उनमें से बहुत कम व्यक्तियों ने अपने धर्म का भली भांति अध्ययन और चर्चा की है, और उनमें से एक भी व्यक्ति उस साधना के पथ पर नहीं गया है जो सभी धर्मों के उत्पत्ति स्थल को समझने के लिए आवश्यक है। ईश्वर की कृपा से मैं दावा करता हूं कि मैंने इस समस्या की मीमांसा की है।
2: पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता व संस्कृति के संपर्क में आकर भारत के नागरिक जीवन में जो चंचलता उपस्थित हुई थी, उसके परिणाम में दो चार प्रतिभाशाली व उदार हृदय संस्कारकों ने प्राचीन समाज के प्रति विद्रोह की घोषणा की थी, और इस विद्रोह से ही पाश्चात्य कार्य प्रणाली के अंध अनुकरण कर संस्कार युग का सूत्रपात हुआ।
0: इन सारी चेष्टा में यूरोपीय भाव की दास्ता को देख गंभीर दुख के साथ स्वामी जी ने इसका प्रतिवाद किया, क्योंकि इसके संबंध में स्वामी जी के विचार इस प्रकार थे।
1: पहली बात यह है कि संसार युग का कोई ऐतिहासिक बोध नहीं है। संस्कार युग इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रहा है कि हिंदू राष्ट्र कितनी बड़ी प्राचीन सभ्यता का वंशधर है। ये राष्ट्र कितने ही संस्कारों के बीच में से होकर युग युगांतर में कितने ही महापुरुषों को वक्ष पर धारण करता हुआ आज यहां आकर उपस्थित हुआ है, और इस राष्ट्र का वर्तमान व भविष्य इसके उसी प्राचीन इतिहास द्वारा विशेष रूप से नियंत्रित होगा। दूसरी बात के बारे में हमें समझना होगा कि संस्कार युग को जातीय विशेषत्व का कोई ज्ञान न था। संस्कार युग ने इस बात को सोचने की चिंता भी नहीं की कि प्रत्येक जाति की एक विशेषता होती है, स्वतंत्रता होती है, जिसके लिए वो जीवित रहने की मांग कर सकती है, जिसके अभाव में उसका विनाश या मृत्यु अनिवार्य है। भारतीयों की जातीय विशेषता क्या है ये वे भी नहीं समझे, और न इस विषय में आत्मरक्षा की किसी प्रकार चेष्टा ही उन्होंने की। अपने देश या अपनी जाति के नाम पर कोई सार्थक अभिमान भी सुधार युग में न था।
2: संस्कारकों की कार्य प्रणाली को स्वामी जी श्रद्धा की दृष्टि से देखने में असमर्थ रहे। उंगली पर गिने जाने योग्य कुछ अंग्रेजी शिक्षित नागरिक व उच्च वर्णों के बीच जो आंदोलन सीमित था, वो समाज के सभी स्तरों में अलग नहीं फैला। इसका कारण हमने पहले ही बताया है, जातीय जीवन से विजातीय तथा वैदेशिक भाव में अनुप्राणित संस्कारों को लक्ष्य कर स्वामी जी ने अपने निजी आदर्श की इस प्रकार घोषणा की।
1: संस्कारकों ने समाज को तोड़ मरोड़ कर जिस रूप में समाज संस्कार की प्रणाली प्रदर्शित की है, उसमें वे सफल ना हो सके। इन संस्कारकों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं उनसे बड़ा संस्कारक हूं। वे थोड़ा थोड़ा संस्कार चाहते हैं, पर मैं चाहता हूं जड़ से संस्कार। हमारा उनका भेद है केवल संस्कार की प्रणाली में। उनकी राह है तोड़ डालने की, और मेरी प्रणाली है संगठन की। मैं संस्कार में विश्वास नहीं करता, मैं स्वाभाविक उन्नति में विश्वासी हूं।
0: पाश्चात्य देश से लौटकर स्वामी जी ने केवल ध्वंस मूलक संस्कार आंदोलन से ही अपने को पृथक नहीं कर लिया, वरन दूसरी ओर यह भी कह दिया कि सब प्रकार की सामाजिक उन्नति के विरोधी, प्राचीन समाज के युक्तिहीन कुसंस्कारों के भी वे पक्षपाती नहीं है। वे ये भी नहीं मानते कि समाज में किसी विशेष भाग से कुछ आचार व्यवहार को उठा देने भर से अथवा कुछ नवीन आचार व्यवहार को प्रचलित कर देने से ही जाति की उन्नति होगी। उन्होंने हमें बार बार बताया कि
1: अपनी सब प्रकार की दुर्दशा, अवनति व दुख के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, और सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं। हमारे उच्च वंशीय पूर्वज भारतीय सर्वधारण जनता को पद दलित करते थे, क्रमशः वे असहाय हो गए। इस सतत अत्याचार से बेचारे निर्धन लोग धीरे धीरे ये भी भूल गए कि वे मनुष्य हैं। सदियों से उन्हें बाध्य होकर क्रीतदास की तरह केवल पानी भरा है और लकड़ी काटी है। उन्हें ऐसा विश्वास करने के लिए शिक्षा दी गई है कि गुलामी करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है, पानी पिलाने तथा बोझ ढोने के लिए ही वे पैदा हुए हैं। और यदि कोई उनके प्रति दया प्रकट कर उनसे सहानुभूति की दो एक बातें कहने जाए, तो हमारे दूसरी जाति के लोग सर्वहारा की उन्नति कराने से पीछे हट जाते हैं।
2: वंश परंपरा अथवा जन्मगत कुल संबंधी गुणों की दुहाई देकर जिस बर्बर व पाशविक मतवाद के द्वारा मनुष्य को हीन, अंत्यज आदि नाम दिए जाते हैं, उस मूर्ता पर स्वामी जी ने तीव्र भाषा में आक्रमण किया है, क्योंकि ये भावना भारत में कूट कूट कर भरी है। उन्होंने कहा कि सुधार की जरूरत यहीं पर है, बाहर से नहीं, भीतर से इस मानसिक श्रेष्ठत्व के अभिमान रूपी रोग को दूर करना होगा। इसी भ्रांत मतवाद पर आक्रमण करते हुए स्वामी जी ने कहा,
1: यदि वंश परंपरा के नियमानुसार ब्राह्मण विद्या सीखने के लिए अधिकतर योग्य है, तो ब्राह्मणों की शिक्षा के लिए धन व्यय न करके सर्वहारा की शिक्षा के लिए सारा धन लगा दो, दुर्बल की सहायता पहले करो। ब्राह्मण यदि बुद्धिमान होकर ही पैदा हुए हैं तो दूसरों की सहायता के बिना ही शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, पर जो लोग बुद्धिमान होकर जन्म ग्रहण नहीं करते, शिक्षकों की आवश्यकता उन्हीं के लिए है। मुझे तो यही न्याय व युक्ति संगत लगता है। अतः इन बेचारे दीन जनों को, भारत के इन पद दलित मनुष्यों को उनका वास्तविक स्वरूप समझाना होगा। जाति, वर्ण और सबलता व दुर्बलता के भेदभाव को छोड़कर सभी स्त्री पुरुषों एवं प्रत्येक बालक बालिका को सुना दो और सिखा दो कि सबल, दुर्बल, उच्च, नीच सभी के हृदय में अनंत आत्मा विद्यमान है। अतः सभी व्यक्ति महान बन सकते हैं।

0: जिस समय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अथवा हिंदू विश्वविद्यालय आदि की किसी ने कल्पना तक न की थी, उस समय स्वामी जी ने एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा संस्था स्थापित करने का संकल्प व्यक्त किया था जिस पर विदेशियों का किसी प्रकार का अधिकार न हो। लौकिक शिक्षा को जातीय आदर्श के अनुकूल बनाने के लिए उनकी इच्छा थी कि वे भारत के अनेक केंद्रों में अनेक शिक्षालयों की स्थापना करें।
1: उच्च वर्णों की शिक्षा व सदाचार, जिन पर उनका तेज व गौरव निर्भर है, निम्न जातीय गण भी बेरोक टोक प्राप्त कर सकें, यही नवीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता होगी।
0: कोलंबो से मद्रास तक स्वामी जी ने जितने भी व्याख्यान दिए उनमें समाज सुधार का मुद्दा वो जरूर ले आते थे। भारत माता के प्रति उनका प्रेम उनके इस प्रसिद्ध भाषण में दिखता है।
1: आगामी 50 वर्ष तक तुम लोग एकमात्र स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्मभूमि की आराधना करो। इन वर्षों में दूसरे देवताओं को भूल जाने में भी कोई हानि नहीं। दूसरे देवगण सो रहे हैं। इस समय तुम्हारा एकमात्र देवता है तुम्हारा राष्ट्र। सभी स्थानों में उसका हाथ है। उसके सतर्क कान भी सभी जगह मौजूद हैं। वो सभी स्थानों में व्याप्त है। तुम लोग किसी निष्फल देवता की खोज में दौड़ रहे हो और अपने सामने और चारों ओर जिस देवता को देख रहे हो उस विराट की उपासना नहीं कर रहे हो। ये सब मनुष्य और ये सब पशु ही तुम्हारे ईश्वर हैं और तुम्हारे स्वदेशवासी गण ही तुम्हारे प्रथम देवता हैं। मुझे खेद है कि जिन्हें बुलाया वे ना आए। अनेक सदियों के संस्कार, गतिहीन जीवन यात्रा का भार इतने अल्प समय में दूर नहीं हो सकता।
2: वे समाज को अखंड रूप से लेते थे। वे अंश को नहीं वरन समग्र को लेकर विचार करते थे। खंड खंड रूप से किसी विशेष प्रथा को उठा देने के लिए विगत सदी की इस व्यर्थ चेष्टा को न दोहराकर वे जाति के प्रत्येक अंग में स्वाभाविक स्वास्थ्य फिर से लौटा लाना चाहते थे। इस शरीर में यौवन के आगमन से जिस प्रकार सभी अंग पुष्ट वो विकसित हो उठते हैं, उसी प्रकार जाति यदि स्वस्थ बलशाली वो क्रियाशील है तो जहां पर जिस संस्कार की आवश्यकता होगी वो स्वयं ही सुसंपन्न हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, मैं संस्कार में विश्वास नहीं रखता, स्वाभाविक उन्नति का विश्वासी हूं।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अध्ययन भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल एक बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अभी आप सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक दीजिए अनुमति। जय हिंद।